सुप्रभात, हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम व्यू 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की दूसरी तिथि, तदनुसार तारीख 23 मई सन 2026। इस वक्त सवेरे के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग

0: पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहलिन कैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केन्द्र प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना, साथ ही विनिर्माण, नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस।

श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ करते हुए संत गुरु तथा देव समाज की वंदना के साथ गोस्वामी तुलसीदास ने उसी विनीत भाव से खल वंदना भी की है। उन्होंने दुष्टजन को विनम्र प्रणाम किया है जो बिना प्रयोजन ही हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, जिनको दूसरे के उजड़ने से हर्ष तथा बसने से विषाद होता है। दुष्टों की ये रीति है कि वे शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर ईर्ष्या की आग में चल उठते हैं, किंतु संतों और दुष्टजन में एक लक्षण समान होता है। जहां संतजन का विछोह प्राण हर लेने वाला होता है, वहां असज्जन का मिलना दारुण दुख देने वाला होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने खल वंदना तो की है, किंतु अत्यंत प्यार से पाले जाने पर भी क्या कौवे मांस खाना छोड़ देते हैं?

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस, स्वर सुरेश वाडकर और साथियों के थे, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। आज आपने सुना इस कार्यक्रम का चौथा अंक, मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। सुविचार।

गौतम बुद्ध ने कहा था, हजार योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने आप पर विजय पाता है वही सच्चा विजेता है। सुविचार के बाद लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

0: ईश्वर शोर में नहीं मिलता, वो तो अक्सर खामोशियों की तेह में बैठा इंतजार करता है।
1: खुले रे।
0: वंदन कार्यक्रम में अगली आवाज अनूप जलोटा की।

ईश्वर तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता ये है कि हम किसी टूटे हुए को, किसी निराश व्यक्ति को, किसी

इस भजन के साथ ही कार्यक्रम वंदन को यहीं विराम देते हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

भूतनाथ रिटर्न्स, ऋतुराज की आवाज, मुन्ना धीमान का लिखा हुआ गीत था, राम संपत की धुन।

हिंदी मीडियम फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत के इस अंक को यहीं पर विराम देते हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

नमस्कार आदाब, स्वागत है आपका कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। नाचीज़ को नैमी चंद कहते हैं और इस खूबसूरत शनिवार की सुबह में, जब सूरज की पहली किरणें मेहरानगढ़ के झरोखों से छन कर शहर आफ्ताब जोधपुर की फिजाओं में घुल रही है, आकाशवाणी जोधपुर के जानिब से हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं।

कुछ बातें कुछ गीत इस रूहानी सफर पर आप हैं नैमी के साथ। और मौसम में थोड़ी तपिश जरूर है, लेकिन जोधपुर तो अपनायत के लिए, इश्क के लिए, मोहब्बत के लिए मशहूर है, तो उनके लिए हर मौसम बहार होता है। और जब हमारे जहनों में, दिलों में सुकून होता है, तो मई की ये धूप भी किसी गुनगुनी याद सी लगती है। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो लफ्जों के मोहताज नहीं होते, बस आंखों ही आंखों में मुकम्मल हो जाते हैं। उन्हीं अनकहे जज्बातों का मिला जुला स्वरूप है हमारा अगला तराना। आजा नच ले, आज की सुबह हम यही प्रण करें और देखें कि दुनिया में कितनी रूहानियत है, कितना संगीत है, कितनी धुनें हैं, कितने लय हैं। और उस पर राहत फतेह अली खान की ये मखमली आवाज़।

बिल्कुल यकीनन मुराद फतेह अली खान साहब की जो आवाज है उसमें वो कशिश है कि वो सीधे दिल पर दस्तक देती है। और अक्सर हम अपनी उलझी हुई जिंदगी में उन लोगों को वक्त देना भूल जाते हैं जो हमारे लिए किसी ईश्वर की या खुदा की नेमत से कम नहीं है। आज शनिवार है और काम की भागदौड़ से थोड़ा ठहर कर उस शख्स के लिए हम वक्त निकालें और उससे कहें कि उसके होने से जो जिंदगी है वो कितनी सुकून भरी है। उससे कहें कि सबसे ऊंची मेरी उड़ान हो क्या, आसमानों का इम्तिहान हो क्या, और तुझमें सब कुछ जो मुझको दिखता है, तुम मुकम्मल मेरा जहान हो क्या।

और जब बात चाहने वालों की हो तो पहली नजर का जादू ही कुछ और होता है। जैसे जब हमारी जोधपुर की इमारतों पर सूरज की पहली किरणें पड़ती हैं तो उसकी लालिमा ऐसी लगती है कि बस देखते ही जाए, नजर हटाए ही नहीं। किसी की आंखों में वो एक पल के लिए खो जाना और फिर पूरी उम्र इसी शहर की तरह उसके मोहब्बत में रह जाना, यही नजाकत लिए हमारा अगला गीत है, अगला गाना है। फिल्म दबंग से हमने इसे लिया है।

बिल्कुल, और मोहब्बत का दस्तूर यही है कि वो बिना बताए आती है और रूह का हिस्सा बन जाती है। जैसे कि हमारे शहर आफ्ताब जोधपुर की मिट्टी में इश्क घुला हुआ है, मोहब्बत घुली हुई है, प्रेम घुला हुआ है। चाहे ढोला मारू हो या महेंद्र मोमल हो, यहाँ की हवाओं में सिर्फ प्रेम ही तो है, अपनायत ही तो है। वो एक अनजाना सा राबता जो हमें किसी भी अजनबी से जोड़ देता है। आइए उसी राबते को महसूस करें अरिजीत सिंह की आवाज में।

क्या ही खूबसूरत तरीके से अरिजीत सिंह ने शब्दों को एक लयकारी दी है, नए अर्थ दिए हैं। और वक्त जैसे इन दोनों के साथ बहता जा रहा है और हम कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम के मध्य में पहुंच चुके हैं। और कार्यक्रम के इस पड़ाव पर एक बार फिर से राहत फतेह अली खान।

बिल्कुल। और इस तरह का रंग अगर आप पे चढ़ा हुआ है जो जिंदगी के कारवां में आपको कहीं मिले और अपना बनाकर आपको साथ में लेकर उस राह पर आगे बढ़ गए। और होता भी है, जिंदगी के सफर में हमें ऐसे कई लोग मिलते हैं जो बस एक पल में हमें अपना बना लेते हैं। उनके चेहरे की एक मुस्कान के लिए आप अपना जीवन खपा देते हैं और उस एक मुस्कान से आपके पूरे दिन की थकान मिट जाती है। और शायद आज सुबह जब आप घर से निकले तो जहन में वही मुस्कान हो, उसी मुस्कान की छवि हो। अगर ऐसा कोई अजीज आपकी जिंदगी में है तो आप बेहद खुशनसीब हैं, उसे संभाल के रखिए। और अगर नहीं है तो ईश्वर पर यकीन रखिए, कोई ना कोई ज़रूर आपके भी राह में मुस्कान फूलों की बिखेरता हुआ टकराएगा ज़रूर।

चाय की चुस्की लेते हुए आप सोच रहे होंगे कि हमारे जो ख्वाब होते हैं वो किसी बंजारे की तरह होते हैं। उन्हें बस एक पनाह की, एक आशियाने की तलाश होती है, और फिर जिंदगी के किसी मोड़ पर कोई ऐसा शख्स हमारी दुनिया में दस्तक देता है, कोई ऐसा काम हमारे जहन पर खटखटाता है जिसके आते ही हमारी अधूरी नींदों को मुकम्मल ताबीर मिल जाती है। ऐसा लगता है कि धड़कनों को उनका घर मिल गया हो। हमारा अगला गीत ऐसा ही है। सोनू निगम और नीति मोहन की आवाज जब हमारे कानों तक पहुंचती है तो एक रूहानी सुकून और एक मीठेपन का एहसास होता है। ठीक वैसा ही मीठापन जैसा हमारी मावे की कचौरी में है, गुलाब जामुन में है, चूंटिया चक्की में है। आइए उसी मिठास को महसूस करते हैं इस नगमे में।

बिल्कुल, अरिजीत सिंह की आवाज और ये अल्फाज दोनों ही जैसे कोई जादू कर देते हैं। जब हम पूरी तरह से किसी के हवाले हो जाते हैं तो सारी दुनिया की फिक्र पीछे छूट जाती है। जैसे हमारे शहर आफ्ताब में सवेरे सवेरे आसमान में उड़ते हुए परिंदे, जिन्हें सिर्फ अपनी उड़ान से इश्क होता है। अपने आप को किसी ऐसे एहसास के हवाले कर दीजिए, देखिए बड़ा सुकून मिलेगा।

0: बिल्कुल, और इस खूबसूरत नगमे की तरह ही वक्त भी फिसलता चला गया है। और इस शनिवार को अपने करीबियों के साथ गुजारिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी की हर धुन पर हौले हौले रक्स करते रहिए। इसी के साथ कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। यह आकाशवाणी जोधपुर है, समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: बारे में सुना है,
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
5: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री

0: की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
3: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारे जानसी पर की मित्रता आपसे सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में यह तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
1: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
2: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन

0: आर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी आईएएस अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है, जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का बयान दिया है, नीट यूजी की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे शत प्रतिशत त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्विषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, प्रतिशोध की भावना से काम न करें WFI। लोकसत्ता की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। एनसीईआरटी की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रूपये के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू डिस्ट्रीब्यूट ओवर 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स टू न्यू रिक्रूट्स इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टुडे। RBI proves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden 4-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbh today. Indian Army Officer Major Abhilasha Barak honored with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, hosts Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality.
3: Rozgar Mela is a step towards fulfillment of the Prime Minister's commitment to accord highest priority to employment generation. The Rozgar Mela is playing a significant role in providing meaningful opportunities to the youth for their empowerment and participation in nation building. Since its inception, around 12 lakh recruitment letters have been issued through 18 Rozgar Melas organized across the country. The 19th Rozgar Mela will be held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates select elected from across the country will be joining various ministries and departments, including ministries of railways, home

0: જય હો, શુભ હો માય ડિયર રેડિયો લવર્સ, શુભ વાણી, લાભ વાણી, મધુર વાણી, આપ સબ કી ફેવરેટ વાણી આકાશવાણી જોધપુર પર શરૂ હો ચલા હૈ મોર્નિંગ ઇન્ફોર્મેશન પ્રોગ્રામ. નમસ્કાર. रेडियो प्रेमियों, सबको जीवन में थोड़ा या फिर थोड़ा बड़ा बदलाव जरूर पसंद होता है और बदलाव का रास्ता जो होता है वो थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है, पर अगर आप अपनी कोशिशें जारी रखें और खुद पर थोड़ा सा भरोसा रखें तो आपका आगे बढ़ना और संवरना तय है. क्योंकि मिट्टी के नीचे दबा हुआ जो बीज होता है ना, शायद यही सोचता होगा कि वो कहीं ना कहीं दब गया है, पर असल में वो वहीं से पनप रहा होता है.
1: तो दोस्तों, आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र से आप जुड़ चुके हैं अपने पसंदीदा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार के साथ, और नमस्कार की पूरी टीम हाजिर है लेकर आज का अंक खास आपके लिए.

ट्रांसमीटर पर है कैलाश चंद्र सोलंकी और नरेंद्र सिंह राठौड़। कंट्रोल रूम से तकनीकी सहयोग दे रहे हैं सुनील जयपाल।

हमारी आवाज को आप तक पहुंचा रहे हैं अनाउंसर ऑन ड्यूटी प्राइमरी चैनल से नेमी और एफएम से हमारा साथ दे रही हैं विजेता वैष्णव।

0: संयोजन है राजेश लामरोड का और प्रोग्राम की परिकल्पना तैयार की है संजय व्यास ने। और पूरी टीम के साथ अंदाज एहसास और जज्बात के साथ आपके दो साथी मैं अर्चना चौहान
1: और न्यू नूतन सोनी।
0: तो नमस्कार, कार्यक्रम में ढेर सारी जानकारियां और सूचनाओं और प्यारे प्यारे गीतों के साथ आप बने रहिए हमारे साथ। और पहला गीत खास आपके

दोस्तों, ये एनर्जेटिक सॉन्ग सुन के आप भी एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे और एनर्जी होनी भी चाहिए लाइफ में, लेकिन इस एनर्जी के साथ साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठहराव भी जरूरी है। और वो क्यों जरूरी है, ये सुनने में बहुत ही साधारण शब्द लगता है कि ठहराव, लेकिन ये ठहराव कहीं ना कहीं जीवन को भीतर से बदलने की ताकत रखता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं खुद से बात करना। जब आप थोड़ा सा ठहरेंगे तभी आप खुद तक पहुंचेंगे, खुद से बात कर पाएंगे।

रेलवे की बात हम ज़रूर करते हैं, क्योंकि जो रेल की यात्राएं होती है ना केवल हमें याद रहती है, बल्कि उससे जुड़ी हुई कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो ताउम्र हमारे साथ जुड़ जाती है। और ख़ास बात में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेल की बात, क्योंकि जोधपुर को मिली है रेलवे की एक नई सौगात। कल यानी 22 मई को मारवाड़ से तीन बड़ी सौगातें मिली है, जो जोधपुर में आयोजित एक प्रोग्राम में माननीय केंद्रीय रेल और सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। और इन्होंने साथ ही इनके पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी थे, जिन्होंने जोधपुर से दिल्ली कैंट वंदे भारत ट्रेन के डब्बों की संख्या 8 से बढ़ाकर 20 कर दी है। और इस वजह से जो हम यात्रा करेंगे वो थोड़ी सी सहज और सुलभ हो जाएगी। इस नए स्वरूप में साबरमती जोधपुर ट्रेन का विस्तार भी किया गया है, जो कि जैसलमेर तक जाएगा। और इसके अलावा जालौर से भुज दिल्ली के बीच एक नई ट्रेन को भी शुरू किया गया है और उसे हरी झंडी दिखाई गई है। इन नई ट्रेनों के शुरू होने से ना केवल पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ शिक्षा और चिकित्सा के लिए भी आवागमन आसान होगा। तो आज की खास बात में जोधपुर की ये नई सौगात।

दूरक दूरक नमम मम करते हुए हम भी प्लान कर रहे हैं। छुट्टियां हो चुकी है, कहीं घूमने का प्लान करना चाह रहे हैं सब लोग। और आजकल जो है, कहीं घूमने जाना हो तो हम लोग डिपेंड हो गए हैं दोस्तों टूर ऑपरेटर्स पे, कि वो हमारा टूर अच्छे से प्लान करे और हमारा जो ट्रिप है वो बहुत ही बिना तकलीफ के अच्छे से स्मूथली चले, और बहुत सी जो नई नई जगह है उनको एक्सप्लोर करें, और हमारा टूर जो है सेटिस्फेक्शन वाला हो, जब हम घूम के आए तो लगे कि हाँ मजा आया। तो ऐसा करने के लिए हम लोग तलाश करते हैं टूर ऑपरेटर की, और उसको सेलेक्ट करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक अच्छा और भरोसेमंद टूर ऑपरेटर फाइनल करते समय ये जरूर देखें कि उनकी ठीक से हम जांच पड़ताल करें, रिव्यू चेक करें, और हिडन चार्ज या कैंसिलेशन पॉलिसी को क्लियर से अच्छे से समझें, और सफर को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए इन बातों का जरूर ध्यान रखें, जैसे कि लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए हमेशा सर्टिफाइड टूर ऑपरेटर ही चुनें। भारत में रजिस्टर्ड ऑपरेटर के लिए के पास जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का अप्रूव्ड और रिकॉग्नाइज्ड टैग जरूर होता है। इसी के साथ ही यात्रा का जो पूरा एक कार्यक्रम होता है उसको पहले से क्लियरली समझना चाहिए कि ये कौन कौन सी जगह ले जा रहे हैं और हमें इस जगह जाना है भी या नहीं जाना है, और देखें कि ट्रैवल और साइट सीइंग और होटल चेक इन चेकआउट के लिए कितना टाइम वो दे रहा है। इसी के साथ ही फैसिलिटीज की भी पूरी तरह से इंक्वायरी करें, जांच कर लें कि पैकेज में क्या क्या शामिल है, जैसे मील्स है, एंट्री टिकट्स है। मील्स हो गया तो आप उसमें चेक करें कि वो ओनली ब्रेकफास्ट दे रहा है, डिनर दे रहा है या नहीं दे रहा है, लंच दे रहा है या नहीं दे रहा है। अलग अलग पॉलिसीज होती है, कुछ टूर ऑपरेटर जो है ओनली ब्रंच देते हैं, तो कुछ लोग जो है डिनर को स्किप कर जाते हैं, और वो इसलिए स्किप करते हैं कि शाम को अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहां का आप जो है लोकल फूड ट्राई कर सके। अगर आपको ये बात पसंद आती है तो आप उस टूर ऑपरेटर को फाइनल करें, अदरवाइज आप दूसरे की

तलाश करें, इसकी जो पूरी लिस्ट लिखी हुई होती है उसको चेक करें और एयरपोर्ट ट्रांसफर करने का चार्ज वो देगा या हम देंगे ये भी फाइनल जरूर करें। और भी बातें ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों।

0: लगी, भूख लगी, भूख लगी, जोरों की भूख लगी।
1: भूख लगी। इसके बाद जो है हमने बात की कि जो मील्स पे ध्यान दें, और उसके बाद जो बहुत जरूरी बात है वो है हिडन कॉस्ट, जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं, लाइक टैक्स, टिपिंग, या फिर किसी खास जगह की जो एंट्री फीस है वो अलग से हमें देनी होगी या टूर ऑपरेटर्स की तरफ से होगा। इसको भी अच्छे से क्लियरली उससे पूछें। और बात होती है कैंसिलेशन या फिर रिफंड पॉलिसी की, जैसे कि इमरजेंसी में हमें ट्रिप कैंसिल करना पड़े जो हम नहीं करना चाहते हैं, फिर भी अगर करना पड़े तो उनके रूल्स और रिफंड मिलेंगे या नहीं, ये रूल्स जरूर पढ़ें, इसकी जानकारी लें। और पेमेंट टर्म्स भी उस पर भी ध्यान दें कि एडवांस कितना देना होगा या बचा हुआ अमाउंट जो है कितने टाइम बाद देना होगा, कब चुकाना होगा, और उसकी आपको जो है रिसिप्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। और सेफ्टी और सपोर्ट पर भी ध्यान देना जरूरी है दोस्तों। ट्रिप के दौरान उनका लोकल सपोर्ट या इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर क्या है, इसकी भी जरूर आप लोग जानकारी लें। इसी के साथ जब आप किसी खास टूर ऑपरेटर को फाइनल करें तो ये जरूर चेक करें कि उनका लोकल ग्राउंड सपोर्ट कितना मजबूत है, उसी से हमको पता चलता है कि वो कितना अच्छे से हमारी ट्रिप जो है ऑर्गेनाइज करता है, हमको कितना मजा आने वाला है। अगर आपको लोकल ट्रेवल गाइडेंस या रूल्स देखने हैं तो आप मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की जो ऑफिशियल वेबसाइट है tourism.gov.in पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों काम की बात। हम ऐसा सोचते हैं कि ये आपको जरूर जो है काम आने वाली है, क्योंकि छुट्टियां चल रही है और आप कहीं ना कहीं जरूर जाएंगे रिलैक्स होने के लिए। जरूर पढ़ें, इसकी जानकारी लें। और पेमेंट टर्म्स भी उस पर भी ध्यान दें कि एडवांस कितना देना होगा या बचा हुआ अमाउंट जो है कितने टाइम बाद देना होगा, कब चुकाना होगा, और उसकी आपको जो है रिसिप्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। और सेफ्टी और सपोर्ट पर भी ध्यान देना जरूरी है दोस्तों। ट्रिप के दौरान उनका लोकल सपोर्ट या इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर क्या है, इसकी भी जरूर आप लोग जानकारी लें। इसी के साथ जब आप किसी खास टूर ऑपरेटर को फाइनल करें तो जरूर चेक करें कि उनका लोकल ग्राउंड सपोर्ट कितना मजबूत है, उसी से हमको पता चलता है कि वो कितना अच्छे से हमारी ट्रिप जो है ऑर्गेनाइज करता है, हमको कितना मजा आने वाला है। अगर आपको लोकल ट्रेवल गाइडेंस या रूल्स देखने हैं तो आप मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की जो ऑफिशियल वेबसाइट है tourism.gov.in पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों काम की बात। हम ऐसा सोचते हैं कि ये आपको जरूर जो है काम आने वाली है, क्योंकि छुट्टियां चल रही है और आप कहीं ना कहीं जरूर जाएंगे रिलैक्स होने के लिए।

मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी और एफएम सनसिटी चैनल है। हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

मुख्य समाचार। 19वें रोजगार मेले का आज देश में 47 स्थानों पर आयोजन। 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, राजस्थान में 76,800 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य प्रगति पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। और प्रदेश के 4 शहरों में दिन का पारा 44 और 25 स्थानों पर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। और अब समाचार विस्तार से। देश में आज 19वें रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। 47 स्थानों पर लगने वाले इन मेलों के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों के नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। इधर प्रदेश में जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। इनमें 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत

0: जोधपुर में, कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी अजमेर में और बीकानेर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। गौरतलब है कि देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से करीब 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान में 76,800 करोड़ रुपए से अधिक के रेल विकास कार्य प्रगति पर हैं। वहीं अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 85 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। श्री वैष्णव कल पाली में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड काल के बाद राजस्थान के लिए 46 नई रेल सेवाओं की शुरुआत की गई है।
1: बहुत सारी नई गाड़ियां चालू हो पाएगी, साथ ही साथ 85 स्टेशनों का नव निर्माण राजस्थान में हो रहा है, जिसमें करीब 15 स्टेशन का काम कंप्लीट हो गया है। बाकी सब जगह बहुत अच्छे तरीके से तेजी से काम चल रहा है और देश भर में 1,300 स्टेशनों का नव निर्माण चल रहा है। आने वाले समय में रेलवे की और कई नई सुविधाएं देश को मिलेंगी।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि राज्य में मोबाइल मेडिकल सेवाओं और निशुल्क जांच शिविरों के जरिए गांव-गांव तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंच रही है। श्री बिरला कल कोटा के रामगंज मंडी में जिला अस्पताल के शिलान्यास समारोह के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 200 बेड के इस आधुनिक अस्पताल के बनने से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा सुलभ हो सकेगी।
2: बहुत दिनों से मांग थी कि यहाँ जिला अस्पताल हो। 62 करोड़ की लागत से बनने वाला जिला चिकित्सालय का शिलान्यास हुआ है। ये सारा इलाका जहाँ मजदूर बड़ी संख्या में रहते हैं, यहाँ के लोगों को कोटा या झालावाड़ इलाज के लिए जाना पड़ता था, आने वाले समय में सभी का इलाज यहाँ पर होगा। तो रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, पीने का पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, अस्पताल हो, दो दो महाविद्यालय हो, टेक्निकल महाविद्यालय हो, तमाम चीजें जो एक आवश्यकताएं थी जो रामगंज मंडी में बरसों तक अभाव थे उनको पूरा करने का काम किया।
0: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी की गई है। इन पर प्रति लीटर 91 पैसे बढ़ाए गए हैं। पिछले 10 दिन में तेल के दाम तीसरी बार बढ़ाए गए हैं। 15 मई को 3 रुपए, 19 मई को 90 पैसे बढ़ाने के बाद अब ईंधन की कीमतें फिर बढ़ने से हाल के दिनों में अब तक लगभग 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच ये निर्णय लिया गया। सीबीआई ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक और आरोपी को पुणे से गिरफ्तार किया है। मनीषा संजय हवलदार नाम की महिला परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी। इसे एनटीए ने विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इस प्रकरण में सीबीआई ने देशभर में जयपुर सहित कई स्थानों पर छापेमारी कर अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी लेने की आखिरी तारीख एक दिन और बढ़ाकर 24 मई कर दी है। बोर्ड की वेबसाइट पर आवेदक के अत्यधिक और तकनीकी व्यवधान को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। इससे विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के वास्ते 2 दिन का समय मिल सकेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट बैठक में विकसित राजस्थान के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी का अनुमोदन किया गया। साथ ही ऊर्जा उत्पादन में बढ़ोतरी, पेंशनर्स कल्याण के बारे में भी फैसले लिए गए। वहीं मंत्रिपरिषद की बैठक में वंदे गंगा जल संरक्षण, जन अभियान, मुख्यमंत्री विकसित ग्राम शहरी वार्ड अभियान तथा पीने के पानी और बिजली आपूर्ति सहित कई विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने पत्रकार वार्ता में बताया कि राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक उत्पादन, अक्षय ऊर्जा और सर्कुलर इकोनॉमी को प्रोत्साहन दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने सिविल

0: सेवा पेंशन नियम 1996 में 3 संशोधनों को मंजूरी दी है। उद्योग मंत्री ने बताया कि अब पेंशनर्स फेस स्कैन तकनीक से घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र दे सकेंगे।
1: जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए अभी तक हर 3 साल के अंदर विकलांगता का प्रमाण पत्र जारी करना पड़ता था, ऐसी बाध्यता थी, लेकिन अभी कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि ऐसे विशेष योग्यजन जो बच्चे हैं उनको केवल एक बार ही प्रमाण पत्र जारी करना होगा। दूसरा, पेंशनर्स को अब मोबाइल ऐप द्वारा अपना फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। पहले इसमें आपको ई मित्र के पास जाना पड़ता था या एसएसओ आईडी से साइन इन करना पड़ता था, अब अपने मोबाइल से भी अपना जीवन प्रमाण।
0: बैठक में राजपत्रित अधिकारियों के साथ ही अराजपत्रित अधिकारियों को भी एसएसओ आईडी से जीवन प्रमाण पत्र जारी किए जाने के लिए अधिकृत किया गया है। बैठक में जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जिलों में अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए जमीन आवंटन की मंजूरी भी दी गई। कांग्रेस पार्टी का चिंतन और प्रशिक्षण शिविर आज से पुष्कर में शुरू हो रहा है। 10 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में संगठन की मजबूती, आगामी चुनावी रणनीति और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी सहित कई अन्य नेता इसमें शामिल होंगे। प्रदेश के 4 शहरों में कल दिन का पारा 44 डिग्री के पार रहा। 44.2 डिग्री सेल्सियस के साथ चित्तौड़गढ़ सबसे गर्म रहा। वहीं 25 स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में मामूली गिरावट आई है। हालांकि भीषण गर्मी और तपिश का असर बना हुआ है। मौसम विभाग ने कल से तापमान में फिर से बढ़ोतरी होने और हीटवेव की संभावना जताई है। कुछ हिस्सों में आज तेज रफ्तार धूल भरी हवाएं चल सकती है। इस बीच बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली की प्रसूति और स्त्री रोग विभाग की डॉक्टर के अर्पणा शर्मा ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
2: प्रेगनेंसी के दौरान काफी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में 2 चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज इम्पोर्टेंटली बहुत ज्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए, और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए, तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए। या
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 19वें रोजगार मेले का आज देश में 47 स्थानों पर आयोजन। 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, राजस्थान में 76,800 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य प्रगति पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। और प्रदेश के 4 शहरों में दिन का पारा 44 और 25 स्थानों पर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: नमस्कार कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब नमस्कार कार्यक्रम में हम आपको लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, वहां से रिले करेंगे आकाशवाणी की पॉडकास्ट सीरीज पीपल्स पद्मा ऑफ ऑन आकाशवाणी की 30वीं कड़ी, और इसके अंतर्गत आज हम सुनेंगे सुश्री एन राजम, जिन्हें कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है, और इस कार्यक्रम का प्रसारण।
4: और पद्म विभूषण डॉक्टर एन राजम जी, मैं आपको अम्मा जी कहूंगा। अम्मा जी, आपको पाकर हम अभिभूत हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि पद्म पुरस्कारों में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है पद्म विभूषण, इससे आपको सम्मानित किया गया है, और इसके लिए बारंबार अभिनंदन आपका। निसंदेह ये आपकी तपस्या का प्रतिफल है। इसका श्रेय आप किसे देंगी? ग्रेटिट्यूड जिसे कहते हैं, वो आप किसके प्रति व्यक्त करना चाहें?
5: ये सम्मान घोषित हुआ, बड़ा आनंद हुआ, खुशी हुई। सबसे पहले मेरे मन में जिनकी याद आई, जिनकी छवि मेरे सामने आई, वो थी मेरे गुरुजनों का, मेरे माता पिता का। हमारा परिवार जो है एक संगीतकारों का परिवार है, कई पीढ़ियों से संगीत चला आ रहा है, और मुझे सबसे पहले श्री गणेश मेरे पिताजी ने किया।

0: व्हेन आई वाज केवल 3 साल की थी, तो तब से मैं बजाती हूँ, सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी रियाज करती हूँ, सिलसिला जारी है।
1: आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आकाशवाणी से आपका रिश्ता कैसा रहा है?
0: उन दिनों जब मैं छोटी थी, मेरी आयु रही होगी 9 साल की, उन दिनों ये नियम नहीं था कि ऑडिशन के लिए 15 साल की जरूरत है, तो मैंने ऑडिशन दिया, उसके बाद उसका रिजल्ट आया कुछ समय बाद, तो मेरे घर में मेरे पिताजी और बड़े भाई लोगों की एक आदत रही कि बच्चों को चिढ़ाना है और उससे वो आनंदित होते हैं, तो कहने लगे मेरे एक भाई, और कोई बात नहीं, इस साल इस बार नहीं हुआ, आगे हो जाएगा, कोई बात। जैसे उन्होंने कहा, उसको मैंने सही समझा, तो लगी रोने, 9 साल की उम्र में और क्या हो सकता है, तो काफी देर चिढ़ाने के बाद पिताजी भी उसमें शामिल थे, तो अब फिर कहा चने रो मत, तुमको मिल गया है। और इस तरह रेडियो से मेरा संबंध जो है उस समय से है जबकि मैं 9 साल की थी, और चिट्ठी भी जो है कि ऑडिशन में मैं पास हो गई करके जो पत्र आया था वो अंग्रेजी में लिखा हुआ था, उस समय अंग्रेजी विशेष नहीं आती थी, बिल्कुल ही नहीं आती थी, विशेष क्या, तो मैं पढ़ नहीं पाई थी स्वयं, तो उसके पहले ये ड्रामा हुआ घर में, उसके बाद।
1: वाह, इतनी नाजुक उम्र में आपने शुरुआत की, और आप बहुत छोटी थी जब आपका पहला प्रेजेंटेशन हुआ था स्टेज पर, तो उस वक्त सुर डर पे हावी थे या डर सुर पे हावी था?
0: डर,
1: हाँ, मन में डर जो होता है,
0: डर ऐसे कोई चीज होती है वो पता ही नहीं चला,
1: क्या बात है।
0: वायलिन हाथ में ले लेते हैं और रियाज करते हैं तो अगर कहीं बजाने, हाँ, हमारे घर में ये भी लोग बाग आते रहे क्योंकि संगीतकार का परिवार है, तो कई लोग आते जाते रहे, तो कोई भी आते हैं तो पिताजी उससे तुरंत कहते हैं कि आ जाओ अंकल के लिए एक गाना बजा दो, तो आकर के भाग जाती रही, तो इस तरह का एटमोसफियर था, तो डर की कोई बात नहीं थी,
1: वो आपके स्वभाव में आ गया था बड़े सहज रूप से,
0: बिल्कुल सहज,
1: क्या बात। बहुत जल्दी आपने अम्मा जी कर्नाटक शैली से हिंदुस्तानी शैली की ओर जो है यात्रा शुरू कर दी, ये कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि आपके पिताजी का तो कहना था कि कर्नाटक शैली में ही वायलिन बज सकता है, हिंदुस्तान में तो बजेगा ही नहीं शायद।
0: हाँ, शुरुआत तो मेरा कर्नाटक म्यूजिक से था, 3 साल की उम्र में पिताजी ने शुरू किया था, फिर जैसे ही 9 साल की हुई रेडियो का ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन हो गया वगैरह वगैरह, तो जब मैंने SSLC पास किया, 10th कही 11th कही,
1: जी जी,
0: तो पास हो गई थी, पर आगे की पढ़ाई के लिए यानी कॉलेज एडमिशन के लिए वो संभव नहीं था, क्योंकि उस समय मैं 14 साल और 3 महीने की थी, जबकि कॉलेज एडमिशन के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो था 14 साल और 6 महीने, तो मेरे पिताजी बड़े, ही वॉज ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, तो उन्होंने कहा कि 1 साल तक घर पे बच्चों को रखना नहीं ठीक है, आलसी बन जाएंगे, तो उन्होंने कहा तुम प्राइवेटली कहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा दे दो, और उन्होंने पता भी लगाया कि कहाँ इस तरह की सुविधा मिलती है, तो पता चला उनको कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और ये सुविधा है कि प्राइवेट गर्ल वो भी केवल लड़कियों के लिए ये सुविधा दी जाती थी।
1: अच्छा।
0: तो पिताजी ने कहा तुम 8 सब्जेक्ट सोच लो और परीक्षा देख के हो, तो उन्होंने कहा संगीत एक सब्जेक्ट ले लो, संगीत भी एक सब्जेक्ट था
1: जी।
0: तो तब तक मेरा 12 साल के समय का कर्नाटक म्यूजिक का प्रैक्टिस रहा, 12 साल मैं बजा चुका, और रेडियो में तो 9 साल के बाद बराबर बजाती भी थी, और रेडियो के साथ उतना पुराना संबंध था मेरा, तो पिताजी ने कह तो दिया कि हिंदुस्तानी संगीत ले लो, और उम्र कम थी ना, तो इसीलिए मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ये सब चिंता इन्हें पिताजी ने कह दिया, तो फादर्स वर्ड वॉज लास्ट, तो ले लिया मैंने, और उसके बाद बातें ऐसी होती गई तो मुझे उसमें रुचि भी आ गई और मैं सीख पाई, और पंडित ओमकार नाथ जी जैसे महान गुरु का शिष्य होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।
1: बस मैं उन्हीं के बारे में भी आपसे पूछने वाला था कि गायकी अंग से वादन जो है आपका है, जो आपके वादन की विशेषता है, ये सोच कहाँ से आई, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
0: जितने भी वाद्य थे, वीणा कहिए या वायलिन कहिए या फ्लूट कहिए, सभी में वोकल म्यूजिक जिस तरह गाया जाता है उसी तरह बजाने की प्रथा वहाँ थी।
1: अच्छा।
0: सेपरेट स्टाइल नहीं था इंस्ट्रूमेंट्स के लिए
1: जी।
0: तो ये बात मेरे मन में आई कि यहाँ भी, जबकि उत्तर भारत में

0: राज्यों के लिए खास शैली थी गतकारी।
1: हाँ।
0: तो मेरे मन में आया ये विचार, मेरे पिताजी का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा। हिंदुस्तानी संगीत को गायकी स्टाइल से, यानी जिस तरह कंठ से आवाज आती है, उस तरह एक अनोखा काम हो भी जाएगा, उन्होंने कहा। तो उस तरह, और चूंकि मुझे 10-12 साल का अभ्यास था कर्नाटक म्यूजिक में, और उसके कारण मुझ में ये एबिलिटी थी ये कि कोई भी कुछ भी फ्रेज गाए तो उसको मैं तुरंत रिप्रोड्यूस करने की शक्ति थी मुझे। तो इस तरह शुरू हो गया।
1: और पंडित ओंकार नाथ जी के बारे में कुछ?
0: और मेरा परम सौभाग्य रहा कि उन इतने महान कलाकार से, संगीत साधक से संगीत सीखने के, हिंदुस्तानी संगीत सीखने का अवसर मिला। मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए कि कितनी खुशी हुई, कितना आनंद हुआ, और उसके बाद सिलसिला चल पड़ी।
1: जी जी जी। आपके वादन के बारे में एक और प्रश्न है कि बनारस घराने की जो गायकी है उसे आपने वॉयलिन में कैसे उतारा, उसमें जो ठहराव होता है खासतौर से?
0: नहीं, बनारस घराने की बात नहीं उठती है
1: जी।
0: कैसे मैं गायकी स्टाइल मैंने आत्मसात किया?
1: हाँ जी।
0: मैंने गुरुजी एक राग, मान लीजिए कोई भी राग को लेते थे तो वो एक दो फ्रेज गाते हैं, मैं तुरंत बजा तो लेती थी। पर इससे ये नहीं कह सकती हूँ कि हिंदुस्तानी म्यूजिक आ गया हो गया। वो सिखाते थे, मैं बजाने लगी, और उसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक की आत्मा जो है
1: जी जी,
0: उसकी बू जो है, उसको कैसे ले आना है। तो मुझे कई साल परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी। इसमें मेरे गुरुजी, मेरे पिताजी सभी ने मेरे साथ काम किया, और एक एक करके हो गई बात।
1: निश्चित रूप से किसी भी कला के साधक को निरंतर अभ्यास और प्रैक्टिस, ये उसकी साधना की आत्मा होते हैं। तो रियाज अब भी आपका जारी है? कभी ऐसा होता होगा रियाज छूट गया, नहीं हो पाया?
0: नहीं, खाना छूट जाता है पर रियाज नहीं, किसी कारण से एक दिन नहीं, ऐसा होता नहीं था। हाँ। फिर भी अगर हुआ तो चैन नहीं होता था
1: जी जी,
0: कि आज कुछ मिस किया मैंने, ऐसी भावना आती थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और मुझे संगीत के अलावा मेरी दुनिया में और कोई भी बात नहीं थी।
1: किसी भी साधक के जीवन में इससे बढ़कर और क्या होता होगा? एक आपका चूंकि संगीतकारों का, कलाकारों का परिवार रहा है, तो आपके भाई साहब टीएन कृष्णन साहब भी बहुत बड़े कर्नाटक शैली के वायलिन वादक रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ये सवाल ऐसा है,
0: हम सभी लोग बजाते हैं, यानी हम रहे 5 बच्चे।
1: अच्छा।
0: मेरे पेरेंट्स के, तो सभी को, बच्चा जिस दिन 3 साल का हो जाता है, चाहे लड़की हो या लड़का, पिताजी भेंट में दे देते हैं वो एक वायलिन, और वो तब से शुरू हो जाता है। तो आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक।
1: जब कृष्ण साहब थे तो बचपन से लेके जब भी कभी पारिवारिक सम्मेलन होता होगा त्योहारों के मौके पे, या राखी के समय, भाई दूज के समय, तो आपकी नोकझोंक, किसी तरह का छुहलका फुलका झगड़ा किस बात पे होता था? वो मिठाई को लेके होता था या वायलिन को लेके?
0: नहीं, मेरे बड़े भाई की जो बात है उनको हम सभी लोग, बाकी बच्चे बड़े रेस्पेक्ट से उनके साथ रहते हैं
1: जी जी।
0: तो इसीलिए उनका, वो हम सब लोगों को वो खुद मार्गदर्शन देते थे, उनका स्थान इतना था।
1: बहुत से कलाकारों को हम देखते हैं कि अपने साज में वो अपने मुताबिक बदलाव करते हैं, आपने वॉयलिन में कुछ चेंजेस किए हैं?
0: वॉयलिन में, इंस्ट्रूमेंट में, जब मुझे इंस्ट्रूमेंट में कोई चेंज करने की सूझ नहीं आई, और जरूरत भी नहीं थी, इट्स अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट।
1: क्या बात। अम्मा जी, वॉयलिन पर उपशास्त्रीय संगीत जब बजता है उसका अलग ही मजा है, उसका आनंद ही कुछ और है, तो उसके बारे में हमें बताइए। जैसे ठुमरी या टप्पा का जो नखरा होता है वो जिस तरह से प्रदर्शित होता है वॉयलिन पर, जिस तरह बजाया जाता है, उसका आनंद जो आता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
0: एक बार अच्छी टेक्निक हाथ में मिल जाता है
1: जी,
0: तो उसके बाद क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो, या लाइट हो, सब कुछ आसानी से बजाया जा सकता है। इतना ही है कि आपके पास सही टेक्निक होना चाहिए।
1: कलाकारों को तारीफें भी मिलती है और ताने भी सुनने पड़ते हैं। आपने अपने परफॉर्मेंसेस शुरू किए 1950 में, और उस वक्त सिनेरियो कुछ ऐसा था कि बहुत से जो कलाकार थे, बड़े बड़े कॉन्सर्ट जिनके होते थे, उनमें मेल आर्टिस्ट ज्यादा थे, पुरुष कलाकार ज्यादा थे, महिलाएं उनके बनिस्बत कम थी। तो कैसा अनुभव था आपका? किसी बड़े कलाकार की तारीफ आपको अब तक याद हो, किसी ने कोई बात कही हो?
0: मुझे किसी से कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई, बड़े

0: बड़े कलाकारों का स्नेह वात्सल्य मुझे हमेशा प्राप्त हुआ। निसार हुसैन खान साहब, एक का नाम नहीं ले रही हूँ, बहुत से लोगों का, बड़े गुलाम अली खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, तो वो मेरा बजाना वगैरह सुनकर के खुश होते थे।
1: अब मंच पर जब जब आपने जुगलबंदी का प्रस्तुतिकरण दिया है उसकी बात करते हैं मजी, आपकी शहनाई पर बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ जो जुगलबंदी वो बहुत ही पॉपुलर हुई।
0: उनका बड़प्पन है मेरे साथ, उन्होंने बजाया और मुझे प्रोत्साहित किया, खूब उन्होंने प्रोत्साहन दिया।
1: और जो कौन कौन से कलाकार जिनके साथ आपने जुगलबंदी,
0: बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ, वो भी बनारस के थे।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: वो भी गायकी बजाते थे, जो भी बजाते हैं वो गायन शैली की। तो कहाँ शहनाई खत्म होता है और वायलिन कहाँ शुरू होता है, और कहाँ वायलिन खत्म होता है वो फिर शहनाई शुरू होती है, मुश्किल से समझ में आता
1: था। बिल्कुल सही कहा
0: लोगों को
1: जी।
0: तो बड़ा अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझसे काफी सीनियर थे। हाँ। तो ये जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, उनका बड़ापन पिता तुल्य थे मेरे लिए वो।
1: और किसी कलाकार को आप याद करना चाहें जिनके,
0: मेरे भाई के साथ भी कई जुगलबंदियां हुई है, तो वो कर्नाटक म्यूजिक बजाते थे, मैं हिंदुस्तानी बजाती थी। अब कई कॉमन रैग्स रहते हैं दोनों में, तो कॉमन जैसे कि यमन है, तोड़ी है, इस तरह बहुत सी, तो उसको लेकर के एक ही मंच से एट द सेम टाइम लोगों को दोनों का क्या फर्क है, हिंदुस्तानी की विशेषताएं क्या है, कर्नाटक की विशेषताएं क्या है, मींड गमक इत्यादि सब प्रस्तुत करने के लिए मौका मिलता था हम लोगों को, और एक ही मन से वो समझ पाते थे दोनों में क्या फर्क है, क्या समानता है।
1: सृजनात्मकता कलाकार की आत्मा होती है, कुछ नया क्रिएशन। तो आपका क्योंकि फंडामेंटल्स आपने कर्नाटक शैली में सीखे और बाद में आप हिंदुस्तानी शैली की ओर बढ़ी, तो इन दोनों शैलियों में जो संप्राकृतिक राग है, एक जैसे राग है, उनको लेकर के कुछ रागों का मिश्रण या कोई नया राग उत्पन्न हुआ हो मन में, ऐसा कुछ कभी हुआ?
0: नया राग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना भरा पड़ा है, इतना गहरा समुद्र है
1: जी, जी।
0: फिर भी लोग बनाते हैं तो उससे मुझे संतोष ही मिलता है, आनंद ही मिलता है, पर मैंने कुछ ऐसा नया राग बनाने की चेष्टा नहीं की। जो है ऑलरेडी हजारों की संख्या में, उनमें से थोड़े बहुत भी हम ले सकें और आत्मसात कर सकें, वही बड़ी बात है। तो नया कुछ मैंने नहीं बना।
1: वाह, आपने पहले ही बताया कि बहुत छोटी उम्र में बीएचयू से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपका संबंध रहा है, तो 40 साल आपने पढ़ाया है बीएचयू में, तो गुरु शिष्य परंपरा में सबसे खूबसूरत पल कौन सा था और सबसे कठिन हिस्सा कौन सा था?
0: गुरु के सानिध्य में सीखने का जो मौका मिलता है उसका बहुत फायदे हैं। हाँ, एक घटना बता दी इस संबंध में
1: जी। बिल्कुल,
0: बनारस में मेरे गुरुजी रहते थे, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर।
1: हाँ जी।
0: एक बार मुझे हमारे कॉलेज में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जयंती मनाते थे हफ्ते भर के लिए, तो मेरा कार्य, हम टीचर्स के भी कार्यक्रम होते थे और जो सीनियर स्टूडेंट्स है जो गा बजाते हैं ठीक से उनके भी कार्यक्रम होते थे, तो मेरा कार्यक्रम था, यानी आज यानी कार्यक्रम के एक दिन पहले गुरुजी से मुलाकात हुई थी और मैंने कहा कि मैं देश बजाना चाहती हूँ, मेरे पास कोई ठीक से कॉम्पोजिशन नहीं है, ख्याल नहीं है, मुझे बता दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कब बजाना है, मैंने कहा कल शाम को, तो पूछा इतने में करोगी, तो मैं कोशिश करूंगी। उसके बाद उन्होंने बड़ा ख्याल का दो सिखा दिया, बड़ा ख्याल स्थाई अंतरा। उसके बाद मैं उसके बाद कल वहां से चली गई और दूसरे दिन शाम को कार्यक्रम था, हॉल खचाखच भरा हुआ था, मैं शुरू कर ही रही थी, शुरू पहला फ्रेज शुरू किया तो एंट्रेंस में, जैसे एंट्रेंस है ना, तो वहां हलचल हुई, थोड़ा कंफ्यूजन जैसे हो रहा था, आवाजें हो रही थी लोग बाहर, तो उसके बाद मैंने सिर उठा के देखा तो, अरे उसके पहले मैंने उस दिन पहले दिन ही उनसे सीखने के बाद कहा आप तो नहीं आएंगे ना प्रोग्राम में, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा, तो जो हलचल जो हो रहा था, तो मैंने कहा वो देख रही हूँ कि वो छड़ी ले हुए आ रहे हैं धीरे धीरे, तो मेरा सप्त नाड़ी जो है समाप्त हो गए थे, और मैंने उनको कहा अब मैं निश्चिंत थी यही कहाँ आने वाले हैं प्रोग्राम में, मैं बच्चों का प्रोग्राम, तो छड़ी ले करके वहां वो उनको लोग बाग जो है जगह दे रहे थे आगे जाने के लिए, तो आके बैठ गए फ्रंट रो में। हाँ चल, उनको देख करके मैं रोक दिया था मैंने, और उसके बाद वो आके बैठे, जब आए तो हाँ चल बजा, तो मैंने सोचा

0: आज मुझे डांट पड़ेगी जरूर। तो उसके बाद मैंने 45 मिनट रात देश बचाया। तो उन्होंने क्या किया, उठ के खड़े हुए और पूरा एक लंबा चौड़ा भाषण दिया। बहुत सुंदर बोलते थे, चाहे हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, सब अच्छी तरह बोलते थे। तो उन्होंने कहा, आप लोग एकलव्य जानते हैं, नाम सुना है उनका एकलव्य का? तो लोग कहाँ कर, तो ये वैसा ही एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है। एक लड़की कल आई थी मुझसे और मुझसे सी करके आज बजा दिया। तो उसके बाद खूब तारीफ की मेरे बारे में और मैंने सोचा कि बच गई किसी तरह।
1: अम्मा जी, 90 के दशक में संगीत का एक नया रूप हमारे सामने आया जिसे हम सब फ्यूजन म्यूजिक के नाम से जानते हैं। तो आप ये जो स्टाइल है फ्यूजन म्यूजिक का, इसमें क्लासिकल को और सेमी क्लासिकल को और लाइट म्यूजिक को मिला करके कुछ नया बनाने की कोशिश होती है, कई बार फोक म्यूजिक भी इसमें मिलाया जाता है, इसे किस तरह से देखती है, कैसा एक्सपेरिमेंट लगता है?
0: मेरा दृष्टिकोण ये है कि लोग करते हैं, उसके मैं खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी
1: जी,
0: पर मैं यही सोचती हूँ, हमें ये इतना बड़ा समुद्र है, इसमें एक डुबकी भी अब तक नहीं हो पाया है, तो हम कहाँ चले गए कि उसको इसको मिलाओ और एक नई बात बनाओ, उसमें मुझे रुचि नहीं है। और जो लोग करते हैं उनके प्रति मेरा कोई विरोध भी नहीं है, अलग अलग पर्सनैलिटी है।
1: आज के इस सब कुछ इंस्टेंट और फास्ट फटाफट वाला जमाना है, तो इस दौर में आप अपने शिष्यों को ठहराव का जो महत्व है वो कैसे समझाती हैं?
0: अन्य क्षेत्रों में हो सकता है कि जल्दी का जमाना है तो जल्दी फटाफट कर लो, पर जहाँ तक शास्त्रीय संगीत है, वेदर वो कर्नाटक शैली का संगीत हो या हिंदुस्तानी हो, बिल्कुल पूरा अपने को अर्पित करना है और खूब रियाज करना है, उससे बच नहीं सकते हैं।
1: बहुत छोटी उम्र में आपने पहला प्रेजेंटेशन दिया था, वो 9 साल की नन्ही राजम अभी आपके सामने आ जाए तो आप उसे कैसे आशीर्वाद देंगी?
0: यही है, अच्छा किया, इसी तरह हर जन्म में करते रहो।
1: थैंक यू सो मच अम्मा जी, आपसे बात करके, आपके अनुभव सुन करके हम बहुत अभिभूत हुए हैं। आकाशवाणी मुंबई की ओर से और यहाँ उपस्थित सभी प्रेक्षकों की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच, मुझे भी आपके साथ बातचीत करते हुए बड़ा आनंद आया और श्रोताओं के सामने कुछ बातें कहने का अवसर मिला, वो भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच,
1: धन्यवाद। डॉक्टर एन राजम जी अब प्रस्तुत कर रही हैं एक धुन।

0: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजन के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे थे जयंत पाथरीकर। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
1: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

0: श्रोताओं, आप आकाशवाणी की पॉडकास्ट सीरीज पीपल्स पद्मा और आकाशवाणी की 30वीं कड़ी के अंतर्गत सुश्री एन राजम कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण सम्मान कार्यक्रम का प्रसारण सुन रहे थे, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया गया था।
1: दोस्तों, अब लिए चलते हैं आपको इतिहास के पन्नों में, क्योंकि आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार का, और नमस्कार में ढेर सारी जानकारियाँ हर दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं। और इसी कड़ी में इतिहास के पन्नों से कुछ नई जानकारियाँ जो कि इतिहास में घटित हुई और आज के दिन को जिसने महत्वपूर्ण बनाया। तो चलते हैं आज के इतिहास की तरफ।

दोस्तों बात करें 23 मई 1915 की, तो इस दिन प्रथम विश्व युद्ध के समय इटली ने ऑस्ट्रिया, हंगरी तथा जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी।

0: वहीं 23 मई 1929 दुनिया के सबसे मशहूर कार्टून मिकी माउस का पहला बोलने वाला कार्टून द कार्निवल किड रिलीज किया गया था।
1: वही 1949 में पश्चिम जर्मनी संविधान को अंगीकार करने के बाद औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया। और बात करें 1977 की, तो बेनिन ने संविधान को अंगीकार किया था दोस्तों।
0: मई 1984 वह दिन था जब भारत की पहली पर्वतारोही बचिंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर

0: तिरंगा फहराया और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी।
1: तेईस मई 2008 का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण था श्रोताओं, क्योंकि भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया था।
0: वहीं आज ही के दिन सन 2010 में मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता में भारत के उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय खंडपीठ के बिना विवाह किए महिला और पुरुष के एक साथ रहने के अपराध को मानने से इनकार कर दिया था।
1: बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 2016 की, तो भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से पूरी तरह से भारत में बने स्पेस शटल RLV-TD को लॉन्च किया था।
0: इसी के साथ अब आपको लिए चलते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओं, बात करते हैं महत्वपूर्ण दिवस यानी कि प्रसूति फिस्टुला उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये दिवस जो है हर साल आज ही के दिन यानी कि 23 मई को मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो ये होता है श्रोताओं के

0: श्रोताओं, बात करते हैं महत्वपूर्ण दिवस यानी कि प्रसूति फिस्टुला उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये दिवस जो है हर साल आज ही के दिन यानी कि 23 मई को मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो ये होता है श्रोताओं की प्रसूति फिस्टुला यानी कि प्रसव के दौरान होने वाली गंभीर चोट के बारे में जागरूकता बढ़ाना, इसके पीड़ित को समर्थन देना और विश्व स्तर पर इस बीमारी को समाप्त करने की दिशा में तेजी से कदम उठाना है श्रोताओं।
1: जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि एक महिला का माँ बनना सबसे महत्वपूर्ण एक भाग होता है, और कहा जाता है कि जब एक माँ बनती है औरत तो उसका दूसरा जन्म होता है, और जब प्रसव पीड़ा होती है तो उसे 20 हड्डियों के दर्द, टूटने का दर्द महसूस होता है, ऐसा कहा जाता है। प्रसूति फिस्टुला एक गंभीर प्रसव संबंधी चोट है जिसमें मूत्राशय या मलाशय के बीच एक छेद होता है जो बिना चिकित्सक सहायता के लंबे समय तक प्रसव पीड़ा यानी लेबर पेन के कारण होता है, और इसके परिणाम स्वरूप महिलाओं में मल या मूत्र की अनैच्छिक रिसाव होता रहता है और यह एक गंभीर रूप ले लेता है।
0: तो इसके लिए जागरूकता बहुत ही जरूरी है श्रोताओं। ये दिन विनाशकारी चोट के बारे में लोगों को जागरूक करने और फिस्टुला से पीड़ित महिलाओं के समर्थन के लिए मनाया जाता है।
1: जी हाँ, और इसके इलाज को बढ़ावा देने के लिए फिस्टुला का इलाज सर्जरी द्वारा संभव होता है। महिलाओं के पास इतना पैसा नहीं होता है तो इस इलाज के लिए धन जुटाने का काम यह संस्था करती है।
0: बिल्कुल श्रोताओं, और ये दिन सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समान मातृ स्वास्थ्य देखभाल के महत्व पर प्रकाश डालता है।
1: इस दिन की शुरुआत हुई थी सन 2013 में। आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रूप में इसे बनाया जाना स्वीकार किया गया था।
0: और बात करें इसके रोकथाम की तो ये पूरी तरह से रोकी जा सकने वाली बीमारी है श्रोताओं। गुणवत्तापूर्ण प्रसूति देखभाल, सिजेरियन सुविधा तक पहुंच और बाल विवाह, किशोरावस्था में गर्भधारण को रोक कर इससे हम बच सकते हैं।
1: जी हाँ, और इसके प्रभाव के कारण फिस्टुला 90% जो गर्भावस्थाएं होती है उसमें मृत बच्चे यानी जो बच्चे नहीं जन्म ले पाते हैं उन इस वजह से हो जाता है और समाप्त हो जाती है। महिलाओं का जो सामाजिक बहिष्कार भी इस कारण किया जाता है, क्योंकि जब ये रोग होता है तो उसके बाद में उन्हें वापस माँ बनने में बहुत तकलीफ आती है। तो यह बहुत गंभीर रोग है, लेकिन इसके उन्मूलन के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है, और ये जानकारी हम अपने आसपास के लोगों को दें, और जो भी महिलाएं इससे संबंधित हैं वो डॉक्टर के पास जाकर इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकती है। Thank you.

0: श्रोताओं, आज है विश्व कछुआ दिवस। विश्व कछुआ दिवस की शुरुआत जो है वो 23 मई सन 2000 को की गई थी, और विश्व भर में कछुओं की धरती पर जो संख्या है उसको देखते हुए, वो संख्या काफी कम है श्रोताओं, आप भी जानते हैं, तो उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना इस दिन का उद्देश्य है।
1: जी हाँ, जहाँ तक कि कछुओं की बात की जाए तो विश्व की सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक जीवित प्रजाति है कछुआ, जो लगभग 600 मिलियन पुरानी है। और चिड़ियों, सर्पों, छिपकलियों से भी पहले इनका अस्तित्व धरती पर रहा है।
0: और इनकी खासियत इनके शरीर पर पाए जाने वाला कवच है दोस्तों, जो इन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। इनकी आयु 150 वर्षों से अधिक मानी जाती है, और सबसे बड़ी आयु हनाको कछुए की थी जो लगभग 225 साल तक जीवित रहा था।
1: जहाँ तक कि भारत की बात की जाए तो भारत में कुछ लोग कछुए को शुभ मानते हैं और इसके चलते उन्हें घर पर पालना पसंद करते हैं, और इसी कारण से इन्हें भी तस्करी का खतरा बहुत मंडरा रहा है। दक्षिण एशियाई देशों में कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर इनके अंडों के व्यंजन बनाए जाते हैं, और इस वजह से इनकी जो तादाद है वो लगातार घटती जा रही है।
0: बिल्कुल दोस्तों, ये प्रजाति जो है अभी संकट में है, तो लगातार दूषित होते जलाशय, समुद्र, नदियाँ और तस्करी ने इनके जीवन को संकट में डाल दिया है। साथ ही प्रदूषण से भी इनकी संख्या में लगातार कमी आ रही है।
1: तो इनकी कमी को सुधारने के लिए आज का दिन मनाया जाता है, और कहा जाता है कि जब तक कछुए हमारे समुद्रों, तालाबों, नदियों में रहेंगे तब तक हमारी प्रकृति सुरक्षित रहेगी। तो इस प्राचीन और महत्वपूर्ण जीव को बचाने के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए वो बिल्कुल होने चाहिए, ताकि हमारा पर्यावरण संतुलन बना रहे।

0: दोस्तों, अब आपको लिए चलते हैं शनिवार की रेसिपी की तरफ। जी हाँ, और आज की रेसिपी में हम लाए हैं आपके लिए फलों का राजा आम, लेकिन कच्चा आम का छुंदा। गर्मियाँ आते ही हर घर में आम की नई नई रेसिपी तैयार की जाती है और इसे बहुत तरीके से खाया जाता है। कुछ लोग इसे रस बनाकर खाते हैं तो कुछ लोग इसके पापड़ भी बनाते हैं, लेकिन हम आज आपके लिए लेकर आए हैं कच्चे आम, जिसे हम कैरी कहते हैं, और उससे बनी जो छुंदा है उसकी रेसिपी। और उसके लिए आपको चाहिए कुछ सामग्री, तो लेने हैं आपको आधा किलो कच्चे आम, साथ ही साथ गुड़ बारीक कद्दूकस किया हुआ 500 ग्राम, नमक एक छोटा चम्मच या स्वादानुसार, काला नमक आधा छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर एक छोटा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च एक से दो बड़े चम्मच, भुना जीरा पाउडर एक बड़ा चम्मच, गरम मसाला जिसमें साबुत लौंग और दालचीनी के टुकड़े। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि कच्चे आमों को अच्छी तरह धोकर साफ कपड़े से पोंछ लीजिए और इन्हें कद्दूकस करके रख लीजिए। एक भारी तले वाला पैन लीजिए, पैन या आप कढ़ाई भी ले सकते हैं, और इसमें गुड़ और सादा नमक मिलाकर उसे अच्छे से हिलाना है।
1: और अब पैन को धीमी आंच पर रखें और मिश्रण को लगातार चलाते रहें, जिससे गुड़ पिघल जाएगा श्रोताओं, और कैरी उसमें अच्छे से मिल जाएगी। और लगभग 5 मिनट बाद इसमें मसाले ऐड कीजिए, जैसे हल्दी, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर और साबुत मसाले। मिश्रण मध्यम धीमी आंच पर तब तक पकाएं श्रोताओं, जब तक इसकी चाशनी हल्की गाढ़ी न हो जाए। एक तार की चाशनी होने पर गैस बंद कर दें, और छुंदा ठंडा होने पर और गाढ़ा होता है, इसलिए चाशनी ज्यादा गाढ़ी न बनाएं। जब यह पूरी तरह ठंडा हो जाए तो एक सूखे एयरटाइट कांच के जार में भर लें। इसे आप धूप में रख भर भी बना सकते हैं श्रोताओं, उसमें समय ज्यादा लगेगा। इस छुंदे को आप साल भर स्टोर करके रख सकते हैं। ये स्वादिष्ट तो होता ही है, साथ ही सुपाच्य भी होता है और आम गुड़ के गुणों से भरपूर होता है। तो इसे बनाइए, खाइए और दूसरों को भी खिलाइए।

0: दोस्तों इसी के साथ नमस्कार का आज का अंक बस यहीं तक। अब अपनी दोस्त अर्चना चौहान
1: और नूतन सोनी को
0: दीजिए इजाजत और स्वीकार कीजिए
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार, मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। लीजिए हाजिर है कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत कार्यक्रम में पहली आवाज अनुराधा पौडवाल की।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: लोक संगीत कार्यक्रम में अब भंवरलाल राव की ये रचना।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

साजन फूल गुलाबरो में फूलारी वास, साजन म्हारो काल जो मीठा में साजन रो सास।

इसके साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत को यहीं विराम देते हैं। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत।

चंदन दास की ये एक रचना आप तक पहुंची कार्यक्रम सुगम संगीत में, और अगली आवाज आप तक जो पहुंचने वाली है वो है गुलाम अली की।

गुलजार साहब लिखते हैं कि खुशबू जैसे लोग मिले अफसाने में, एक पुराना खत खोला अनजाने में, और रात गुजरते शायद थोड़ा वक्त लगे, धूप उड़े लो थोड़ी सी पैमाने में, और जाने किसका जिक्र है इस अफसाने में, दर्द मजे लेता है जो दोहराने

श्रोताओं, अभी आपने सुना सुगम संगीत मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सुबह के 11 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आइए अगला गीत सुनते हैं फिल्म डंकी से अरिजीत सिंह की आवाज में। बोल हैं इरशाद कामिल के और संगीत है प्रीतम का।

आइए अगला गीत सुनते हैं फिल्म भूल भुलैया 2 से अरिजीत सिंह तुलसी कुमार की आवाज़ों में। बोल है अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत है प्रीतम का।

0: हम सिर्फ अपने कारण नहीं पहुंचते, सिर्फ अपने परिवार के कारण नहीं पहुंचते।
1: जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है, सुनिए दिल्ली केंद्र से विशेष कार्यक्रम।
0: और इसलिए हमारा दायित्व खुद के प्रति, खुद के परिवार प्रति, वैसे ही संपूर्ण समाज के प्रति भी रहता है। और मुझे विश्वास है कि इन सभी कामों के लिए आप अपने आप को और अधिक योग्य बनाएंगे। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको पता है अभी दो दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई, और हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है। दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। इस यात्रा के दौरान अब जैसे नीदरलैंड की मैं बात करूं तो नीदरलैंड्स के साथ सेमीकंडक्टर्स, वाटर, एग्रीकल्चर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा हुई। स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डिजिटल इनोवेशन, उस पर सहयोग की बहुत सारी बातें हुई। नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात आगे बढ़ी है। UAE के साथ स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर महत्वपूर्ण समझौते हुए। इटली के साथ डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पार्टनरशिप्स पर एग्रीमेंट हुए। साथियों, इन सारे एग्रीमेंट्स का सीधा लाभ भारत के युवाओं को मिलने वाला है। और आपने देखा होगा कि सारे विषय एक उज्जवल समर्थ भारत के भविष्य की गारंटी लेकर के आते हैं, क्योंकि हर नया निवेश, हर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भारत के युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज तो लेकर के आता ही है, लेकिन अनगिनत नए अवसर तैयार करता है। मेरे नौजवान साथियों, हमें याद रखना है ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें आने वाला इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप आने वाले 3-4 दशक की ग्लोबल ग्रोथ को ये शेप करने वाली इंडस्ट्री तैयार करेगी। और निश्चित तौर पर

भारत के युवाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, भारत किस तरह दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर कंपनी, आप में से बहुत लोग इस नाम से परिचित होंगे, एएसएमएल, एएसएमएल के साथ भारत की टाटा कंपनी का एग्रीमेंट है। भारत दुनिया के कुछ ही देशों में से एक है जिसके साथ इस कंपनी ने समझौता किया है। एएसएमएल टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच ये अकेला समझौता ही भारत में रोजगार के अनगिनत नए मौके बनाएगा और भारत को एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश द्वार खोल देगा। ऐसे ही स्वीडन के साथ टेक्नोलॉजी और एआई पार्टनरशिप्स, यूएई का साथ सुपर कंप्यूटिंग कोऑपरेशन भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता को बहुत मजबूत करने वाले हैं। इन एग्रीमेंट से युवाओं के लिए नए अवसर तो होंगे ही होंगे। साथियों, आज क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इनसे जुड़ी पार्टनरशिप एक नई इकोनॉमी के न्यू अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल रही है। स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। ये भारत को क्लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फ्यूचर इंडस्ट्रीज में मजबूत करेगा। इसके अलावा भारत ने पोर्ट्स, शिपिंग और मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एग्रीमेंट पर तेजी से काम किया है। यूएई और नॉर्वे के साथ पार्टनरशिप से भारत का शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा। और आप तो जानते हैं, शिप बिल्डिंग यानी स्किल मैन पावर की बहुत जरूरत पड़ती है। यानी भारत के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और स्किल वर्कर्स के लिए इतनी मांग बढ़ने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितने अवसर तैयार होंगे। साथियों, हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ के नए मौके भी मिलेंगे। आज दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो इनोवेट करते हैं, जो बिल्ड करते हैं और जो बड़े स्तर पर डिलीवरी कर सकते हैं। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा

मैं भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूं। साथियों, आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है। आने वाले समय में भारत की 10 बड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट्स दुनिया में अपना परचम लहराएगी। इनमें बड़ी संख्या में भारत के नौजवानों का सामर्थ्य होगा, भारत के नौजवानों की बुद्धि प्रतिभा होगी, भारत के नौजवानों का कमिटमेंट होगा और स्वाभाविक है, रोजगार तो है ही है। भारत आज शिप बिल्डिंग से लेकर शिप रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग का भी इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। इसके लिए करीब 75,000 करोड़ रुपए 75,000 करोड़ रुपीज का निवेश किया जा रहा है। इसी तरह भारत में ही हम पूरा एमआरओ इकोसिस्टम यानी मेंटेनेंस, ओवरहॉल और रिपेयर फैसिलिटीज तैयार कर रहे हैं। इससे देश के एविएशन सेक्टर को बहुत मदद मिलने वाली है और भारत के युवाओं के लिए रोजगार का नया सेक्टर तो खुलना ही खुलना है। साथियों, भारत आज एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है और हम इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंप्लीट वैल्यू चेन भारत में ही बना रहे हैं। इसके लिए जो पीएलआई स्कीम चल रही है उससे देश में रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हो रहा है और युवाओं को लाखों की संख्या में जॉब्स भी मिल रही है। साथियों, ऐसे अनेकों अभियानों पर भारत का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। ये निवेश देश के युवाओं को देश में ही जॉब्स दे रहा है, उनके सपने पूरे कर रहा है। एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते, जो कि आज नियुक्ति पत्र के भरने के बाद आपकी पहचान बनने वाली कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो उस नाते आपको भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देश की कितनी बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसमें ये मानी हुई बात है, आप भी जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब गांव, छोटे शहर और दूर दराज के इलाके विकास से जुड़ते हैं, तभी देश की प्रगति का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। पिछले 12 वर्षों में रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट,
लो।

लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कल्पना भर का तेज गति से विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, हर स्तर पर काम हुआ है। आज आप अपने क्षेत्र में किसी की भी दिशा में 100 किलोमीटर अगर जाएंगे तो भारत सरकार द्वारा कोई न कोई काम चलता हुआ नजर आएगा आपको। आज गांवों में भी बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ने से किसानों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खुले हैं। आज करोड़ों परिवारों को

जाएंगे तो भारत सरकार द्वारा कोई न कोई काम चलता हुआ नजर आएगा आपको। आज गांवों में भी बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ने से किसानों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खुले हैं। आज करोड़ों परिवारों को पक्का घर मिला है। यानी दुनिया के कई देश हैं जिनके पास टोटल घर होते हैं उससे अनेक गुना घर हम नए बनाते हैं। इतना ही नहीं, जो मेरा स्वच्छता का अभियान है उसको तो मैं कभी भी भूलने नहीं देता हूं लोगों को, और नहीं मैं भी भूलता हूं। उसमें शौचालय की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, हम उस पर भी बल दे रहे हैं। करोड़ों घरों तक आज बिजली पहुंची है। रूफटॉप सोलर एनर्जी, कितने नए नए वेंडर्स मैदान में आए हैं। अब देखिए, जल जीवन मिशन से नल से जल पहुंचाना, मैं अभी देख रहा था कि मैं चाहता था कि शहरों में पीएनजी के कनेक्शन बढ़े, तो मुझे प्लम्बर नहीं मिल रहे थे, कमी पड़ रही थी, क्योंकि जल जीवन के मिशन में कई सारी बड़ी संख्या में प्लम्बर वहां लगे हुए थे। अब इस दिन मुझे एनर्जी के लिए बड़े शहरों में पीएनजी के कनेक्शन तेजी से बढ़ा रहे थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी कभी तो लोगों की जरूरत पड़े तो लोग कम पड़ जाते हैं। साथियों, इन बदलावों का असर सिर्फ सामान्य नागरिकों की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहता। गांव तक सड़क पहुंची तो मार्केट तक आना जाना आसान हुआ, बिजली की सुविधा बेहतर हुई तो छोटे उद्योग धंधे आगे बढ़ने लगे, गांव में भी एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन होने लगा। पहले अगर वो लाल मिर्ची बेचते थे, अब बिजली आई तो लाल मिर्ची का पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना करके पैकेज बनाते हैं, पैकेज बना करके बेचते हैं। तो गांव में भी छोटे छोटे छोटे छोटे उद्योग इसके कारण बढ़ते जाते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ी तो गांव के लोग भी पूरे विश्व के साथ जुड़ रहे हैं, आधुनिकता से जुड़ रहे हैं। शहर और गांव का फर्क मिटता चला जा रहा है और इससे अर्थव्यवस्था की गति तेज हुई है। और इन सब का पॉजिटिव प्रभाव देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी बन जाता है। रोजगार तो निर्माण होते ही होते हैं, लेकिन राष्ट्र भी एक नए स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ जाता है, लाखों लोगों को नए मौके भी मिल जाते हैं। साथियों, आज भारत के युवा के पास जिस तरह से आगे बढ़ने के, अपने सपने पूरा करने के मौके हैं, ऐसा अवसर पहले नहीं मिला है। मैं किसी का दोष नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत है कि आज बहुत तेज गति से सब हो रहा है, विशाल फलक पे हो रहा है, विविधताओं से भरा हो रहा है। आज मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, डिजिटल सर्विसेज, रेलवे, डिफेंस, इतना ही नहीं स्पेस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में अनगिनत अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा युवा नए अवसरों का लाभ उठा सके और देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिले। इसलिए स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री लिंक एजुकेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दिया जा रहा है। आईआईटी को मॉडर्न बनाया जा रहा है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मजबूत किया जा रहा है, पीएम सेतु जैसे अभियान
इसी

दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में 2,30,000 से ज्यादा, ये आंकड़ा याद रखिए, 2,30,000 से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं और उसमें भी दो चार नौजवान भी जुड़े हुए होते हैं। अहम बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है और मुझे इसका सबसे ज्यादा आनंद है। आजकल तो टियर 2 और टियर 3 शहरों के युवा भी बहुत बड़ी संख्या में स्टार्टअप और इनोवेशन की दुनिया में अपना ताकत दिखा रहे हैं, उनके सामर्थ्य की नोट लेनी पड़ रही है। ये परिवर्तन अब देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बदलाव में हमारी नारी शक्ति की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। आज बड़ी संख्या में विमेन लेड स्टार्टअप्स, ये जब सुनते हैं ना मन गर्व से भर जाता है। मैं जब दुनिया के लोगों को बताता हूं कि हमारे यहां स्टार्टअप में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ रही है, बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आगे आ रही है, मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं ने भी लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। आज गांवों में, छोटे शहरों में पहले से ज्यादा महिलाएं अपने दम पर नए काम शुरू कर रही हैं। साथियों, नीतियां और निर्णयों के इस अभियान के बीच आपको एक और बात याद रखनी है। किसी भी व्यवस्था की असली ताकत उसके लोग होते हैं, जनता जनार्दन की शक्ति होती है, जनशक्ति होती है और जनशक्ति ही तो राष्ट्र शक्ति बनती है। आप सभी जिस व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध करोड़ों करोड़ों देशवासियों के जीवन से है, करोड़ों करोड़ों देशवासियों की आशा आकांक्षाओं से है। सरकारी नौकरी लोगों के जीवन को आसान बनाने का माध्यम ही होती है। आप जिस भी विभाग में काम करेंगे वहां आपके व्यवहार, संवेदनशीलता और काम करने के तरीके का बहुत महत्व होगा। देश ने आप पर भरोसा किया है, अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने काम से, अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से उस भरोसे को और मजबूती देंगे। देशवासियों के हृदय में एक नया विश्वास भर जाएगा, आपको मिलते ही वो नई आशा के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए हर युवा कर्मयोगी अपने काम को जिम्मेदारी की तरह देखें और मेरे लिए तो आप बहुत कुछ हैं। पहले जमाने में हम सुनते थे ना, सहस्त्र बाहु वाले फलाने, सहस्त्र बाहु वाले ढींकने, आज सरकार के बाहु आप ही हैं, सरकार का सामर्थ्य आप ही हैं, जो पहले से सरकार में है वो भी हैं,

0: जो नए आ रहे हैं वो भी है। आज भारत के लोगों की आकांक्षाएं बहुत बढ़ रही हैं और मैं इसे विकास की पॉजिटिव साइन मानता हूं। हमें अपने देश के लोगों के एस्पिरेशंस को समझना भी है और उसके हिसाब से उतनी ही तेज गति से काम भी करना है। ऐसे में पब्लिक सर्विस में आने वाले युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। आपको लगातार सीखते रहना होगा, खुद को नई टेक्नोलॉजी, नई सिस्टम और नई जरूरतों के हिसाब से तैयार करना होगा। इसमें आपको आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से बहुत मदद मिलेगी। कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। साथियों, आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं, जन सेवा का माध्यम मानते हैं। और हमारे तो यहां तो कहा, जन सेवा ही प्रभु सेवा। मुझे पूरा विश्वास है आज नियुक्ति पत्र पाने वाले हमारे युवा साथी भारत के विकास यात्रा को नई गति देंगे। आपके काम, आपके फैसलों से विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि होगी। और आपको वो मंत्र कभी भूलना नहीं है। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव, नागरिक देवो भव। नागरिक का कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। मैं एक बार फिर आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को आगे के जीवन के लिए, देश सेवा के इस अवसर को निभाने के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: देखतुल, अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देशभर के 47 स्थानों पर आयोजित 19 रोजगार मेले के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार पत्र वितरित करने के अवसर पर आयोजित समारोह और माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन सुन रहे थे।

श्रोताओं, अभी आपने सुना आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित विशेष कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। दोपहर के 12 बज चुके हैं। आइए अब सुनते हैं लोक संगीत। लोक संगीत में हम सबसे पहले आपको सुनवाने वाले हैं शमसुद्दीन की आवाज़ में ये लोक रचना।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आइए अगली लोक रचना सुनते हैं कालूराम प्रजापति की आवाज में।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आइए अगली लोक रचना सुनते हैं शमसुद्दीन की आवाज में।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना लोक संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। दिन के 12:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में हम पहली गजल आपको सुनवा रहे हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में।

जगजीत सिंह की इसी गज़ल के साथ सुगम संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। दोपहर के 1 बजने को है, लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत बनाने की जिम्मेदारी युवा पीढ़ी पर है और उन्हें इस संकल्प के लिए भागीदारी निभानी होगी। देश में 47 स्थानों पर आयोजित 19वें रोजगार मेले में आज प्रधानमंत्री ने 51,000 युवाओं को वर्चुअल माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों के नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने अपनी हाल की 5 देशों की यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर के देश भारत की

0: विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे, साथ साथ ग्लोबल एक्सपोज।
0: प्रदेश में जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में रोजगार मेले आयोजित किए गए। इनमें 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में शिरकत की। इस मौके पर श्री वैष्णव ने कहा कि रेलवे में 1,60,000 से अधिक भर्तियों पर काम चल रहा है, जिसके लिए 4 करोड़ से अधिक अभ्यर्थी कोशिश कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि पहले भर्ती प्रक्रियाएं वर्षों तक चलती थी, किंतु अब वार्षिक कैलेंडर व्यवस्था लागू होने से भर्ती प्रक्रियाओं को तय समय में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। रेल मंत्री ने युवाओं से राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना से काम करने का आह्वान किया।
2: आप जब भी कोई फैसला लें, तब उस कागज को कागज न मान के, उस फाइल को फाइल न मान के, उसके पीछे लाइफ क्या है, उसके पीछे व्यक्ति कौन है, उसके पीछे किसका जीवन जुड़ा है, उसके पीछे किस परिवार की उम्मीदें जुड़ी है, वो जरूर ध्यान में रखना। दूसरा, जो भी आप फैसला करो, ये याद रखना, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। हमें हर कर्तव्य को देश के लिए ही करना है और यही वो पीढ़ी है जो विकसित।
0: इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और पेट्रोल तथा डीजल की आपूर्ति स्थिर है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने से अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले कुछ दुकानों तक ही सीमित हैं। 1 मई से 22 मई के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। पेट्रोल बिक्री में 14%, वहीं डीजल बिक्री में करीब 18% की बढ़ोतरी हुई है। इस बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी की गई है। इन पर प्रति लीटर करीब 91 पैसे बढ़ाए गए हैं। पिछले 10 दिन में तेल के दाम तीसरी बार बढ़ाए गए हैं। हाल के दिनों में इन पर अब तक लगभग 5 रूपये प्रति लीटर बढ़ गए हैं। रेलवे बोर्ड ने कोटा में एक नए इलेक्ट्रिक लोको शेड खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे बिजली के इंजनों के रखरखाव और दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर यात्री गाड़ियों और मालगाड़ियों का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। कोटा में इस लोको शेड के बनने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। अजमेर में आधुनिक कन्वेंशन सेंटर और सभागार बनाया जाएगा। इस पर 28 करोड़ रूपये से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने आज इसका शिलान्यास किया। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र में अवैध रेत, बजरी खनन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ चलाई जा रही कार्रवाई में 392 से अधिक मामले दर्ज किए। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से पिछले महीने जारी निर्देशों की पालना में इस अभियान को और अधिक व्यापक बनाया गया है। धौलपुर और करौली जिला पुलिस की ओर से चंबल नदी के प्रभावित तटीय क्षेत्रों में रेत कारोबारियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। और अब बात क्रिकेट की। आईपीएल में आज शाम लखनऊ सुपर जॉइंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। यह मैच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। दोपहर के 1:05 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं कृषक भाइयों के लिए कार्यक्रम कृषि जगत।

खास बात आ है कि बढ़िया मिट्टी अपने खेत में वे है, खाद बीज भी देनी पड़े और पानी की समुचित व्यवस्था वे जदीज ओ काम काज जी को है आप सफल कर सका। और अपन ठाई जाए भाई हरो जी को चारो है इनका फायदा भी बहुत हुआ करे, जो हरे चारे में प्रोटीन वे चूनो वे फॉस्फोरस है ए तत्व उचित मात्रा में रिया करे। और जिन सो कहीं वे पशुओं जो को दूध है उन उत्पादन है उन महीने भी वृद्धि हुए, प्रोटीन की मात्राओं फसल महीने पुष्प जी का आवे बाद में कम हो जाया करे तो रेसा की मात्रा बढ़ जाया करे। इन वास्ते हरे चारे वास्ते जिकी भी फसल आप उगावा उनकी कटाई सही टाइम माते पुष्प आवे या तुरंत उन बाद में अपन करनी चाहिए। इनके साथ साथ हरो चारो खिलाया बाद में पशुओं की जिकी पाचन क्रिया है खासतौर से वह बहुत ठीक रहे। हरो चारो पशु ने 15-20 किलो प्रतिदिन 3-4 दाना अपन खिलाने चाहिए। हरे चारे रे हाथे हाथे 6-7 किलो सुखो चारो भी प्रतिदिन पशुओं ने अपने देना चाहिए। चारे में विटामिन ए री प्रचुरता सु पशु जो है उनमें बीमारियां कम आवे तो उन मतलब वो है कि पशुओं जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहे। और दाना मुकाबले मैंने हरो चारो पौष्टिक तत्व कम खर्चा मैंने उपलब्ध हो जा, हरे चारे मैंने साइलेज या हेरे रूप में मैंने संरक्षित रख सका। अच्छी किस्म रो हरो चारो है उनकी एक बत्ती कटाई भी आप ले सका। हरे चारे मैंने पानी जी की मात्रा है आ हली हुए जिनसु पशु मैंने पानी जी की कमी है आ गर्मिया रे दिनार मैंने नीरिया करे तो ए तो होगा हरे चारो फायदा अपने पशुओं ने कहीं कहीं वह सके। जी हमें फसल लो नाम अपा के बाजरो बावनी चवा तो उन्नत किस्म की आप बात करा किसान पाया राजको L74K599L72 राज बाजरा और चरी। और टाइम जो को है वो किसान भाई जुलाई ताई बीच महीने बाजरो बा सके। बीज दर की आप बात करा तो 10-12 किलो बीज जो को है वो प्रति हेक्टर होना चाहिए। बाजरे ने हरे चारे रूप में आप खेती ला तो खाद और उर्वरकों भी अपने ध्यान रखना पड़े। गोबर या कम्पोस्ट खाद है वह 8-10 टन नत्रजन 60 किलोग्राम दोतियाई बहुत टाइम और बचोड़ी अपने एक महीने बाजरे महीने अपन देता 30 किलो नत्रजन प्रति कटाई रे वास्ते अतिरिक्त आप दे सका। इंडे हाथे हाथे फॉस्फोरस 1 या 2 कटाई रे वास्ते 30 किलोग्राम और 3-4 कटाई आप लेनी चाहो तो 50 किलोग्राम बहुत ही टाइम अपने देना चाहिए। इन तरह से किसान भैया आप जवार रो बावणो करा हरे चारे रूप में महीने तो इंडी जी की उन्नत किस्म है MP चरी SSG गुणसार 3 PC 9 PC 23 ए किस्म है। और बोरी जो वक्त है वो मार्च लेर जुलाई तई किसान भाई जवारी फसल चारे रूप में ले सके। बीज को है वो 40-50 किलोग्राम प्रति हेक्टर जरूरत पड़े और गोबरी खाद है नत्रजन है फॉस्फोरस है वो अपने टेमो टेम अपने देना पड़े। इन तरह से किसान भाई मक्को जी को है वो भी चारे रूप में मैंने बा सके। पानी की व्यवस्था थोड़ी बढ़िया होनी चाहिए अपने कने। मक्के रे वास्ते उन्नत किस्म की बात करा अफ्रीकन टाल है गंगा 5 है। इनो जी को समय अवधि है बवन वो मार्च लेर सितंबर महीने तक आप बा सका। और बीज की मात्रा जी की 50-60 किलो प्रति हेक्टर होनी चाहिए। साथ ही खाद और उर्वरक की बात करें आप तो गोबर और कंपोस्ट जी को है 12-15 टन नत्रजन 75 किलोग्राम दो तेई बहुत ही टाइम और बचियोड़ो जी को है वो आप शेष जी की मात्रा है वह 40-45 दिन में आप दे सका। और खास बात है गर्मी के महीने मको उगावा तो बहुत ही बढ़िया फसल मानी जा करे और बरसात के टाइम में भी खेतों में पानी बिरोड़ो इन फसल वास्ते नहीं होना चाहिए। हलो पानी नुकसान पहुंचा दिया करे पर सिंचाई जी की है समुचित रूप में टेमो टेम अपने देवनी पड़े। तो किसान भैया आ ही जानकारी के भाई अपा जाइद और खरीफ महीने जी को हरो चारो है फसल उत्पादन वो आप किन तरह से ले सका। कृषि जगत प्रोग्राम रो बगत पोरो वेरियो है दिनेश राणेजा ने सीख दिराओ राम राम।

ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर सूर्यनगरी चैनल एवं एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर एफएम सन सिटी चैनल। दोपहर के 1:15 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं महिलाओं के लिए कार्यक्रम नारी वाटिका।

0: तो हजारों कहानियां।
1: हर चुप्पी में दिल की दास्तां होती है। नारी वाटिका सुनने वाली सभी सखियों को अपनी सखी मधु बनर्जी और
0: नेहा का प्यार भरा
1: नमस्कार। सखियों, खामोशियां सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं होती, बल्कि दिल के उन एहसासों की आवाज होती हैं, जिन्हें शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता। कभी ये सुकून देती हैं, तो कभी भीतर छुपे दर्द को गहरा कर जाती हैं।
0: आज नारी वाटिका में हम बात करेंगे ऐसी ही खामोशियों की, उन अनकहे जज्बातों की जो अक्सर हमारी मुस्कुराहट के पीछे छुप जाते हैं, उन चुप्पियों की जो बहुत कुछ कहना चाहती है लेकिन शब्दों का सहारा ले लेती हैं।
1: तो सखियों, कुछ पल अपने लिए निकालिए और जुड़ जाइए हमारे साथ दिल की उन्हीं खामोश आवाजों को महसूस करने। सखियों, सभी कुछ कह देने से ही बातें अधूरी रह जाती हैं, और कभी कभी बिना कुछ बोले दिल जो है ना, वो पूरी कहानी सुना देता है।
0: ये जो खामोशी होती है ना, ये सिर्फ आवाजों का रुक जाना नहीं बल्कि एहसासों का वो गहरा समंदर होती है जिसकी लहरें बाहर नहीं अंदर ही अंदर उठती रहती हैं।
1: कभी ये किसी की नाराजगी बन जाती है, कभी किसी के इंतजार की लंबी रात, और कभी टूटे हुए भरोसे की वो चुभन जो मुस्कुराहट के पीछे साफ दिखाई देती है।
0: कई बार इंसान बोलना चाहता है, बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्द उसका साथ छोड़ देते हैं।
1: और तब उसकी खामोशी जो होती है ना नेहा, वही तो उसकी आवाज बन जाती है। और इस चुप्पी में छुपे होते हैं अधूरे सपने, अनकहे जज्बात, बीते हुए लम्हों की कसक, और वो सवाल जिनका जवाब शायद वक्त के पास भी नहीं होता।
0: बिल्कुल, आज बात होगी उसी खामोशी की जो बाहर से शांत दिखाई देती है और अंदर हजारों तूफान लेकर बैठी होती है, जो कभी सुकून बन जाती है तो कभी इंसान को भीतर ही भीतर तोड़ देती है।
1: अगर आपके आसपास भी कोई खामोश है तो सिर्फ उसकी आवाज मत सुनिए, उसकी खामोशी को समझने की कोशिश कीजिए।
0: क्योंकि कभी कभी सबसे ज्यादा शोर इंसान की चुप्पी ही करती है।

0: खामोशी जो जुबां से नहीं दिल से बोलती है, और कई बार ये खामोशी शब्दों से ज्यादा असर छोड़ जाती है।
1: हाँ नेहा, कभी कभी किसी का चुप रह जाना जो है ना, वो सबसे बड़ा जवाब होता है। वो जवाब जो ना गुस्सा होता है ना शिकायत, बस एक थकी हुई सी चुप्पी होती है, जो हम चुप रह जाते हैं और सामने वाले को जवाब मिल जाता है।
0: बिल्कुल मधु, और उसी चुप्पी में छुपी होती है हजारों बातें, कभी टूटे हुए सपने, कभी अधूरी उम्मीदें, और कभी बहुत गहरा दर्द।
1: हम अक्सर सोचते हैं कि जो बोलता नहीं है ना, उसके पास कहने को कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा सच नहीं है। नेहा, पता है, सबसे ज्यादा बातें वही लोग छुपा कर रखते हैं जो सबसे ज्यादा गहराई से महसूस करते हैं।
0: बिल्कुल मधु, और यही वजह है कि खामोशी कभी खाली नहीं होती, वो भरी होती है यादों से, अनुभवों से, और उन लम्हों से जिन्हें शब्द नहीं मिल पाते हैं।
1: खामोशी भी कह जाती है बहुत कुछ, बस सुनने वाला दिल तो होना चाहिए।
0: और आज की भागती दुनिया में सबसे बड़ी कमी यही है कि हम सुनते कम हैं और समझते तो और भी कम हैं।
1: बिल्कुल सही कह रही हो। कभी किसी अपने की खामोशी को महसूस करके देखिए, शायद वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन डर हो कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे समझा ना जाए।
0: या फिर उसे ये उम्मीद ही ना हो कि कोई उसे समझेगा, और यहीं से खामोशी और गहरी होती जाती है।
1: बिल्कुल, खामोशी सिर्फ आवाज की कमी नहीं होती, ये एक पूरा संसार होती है जहां शब्द नहीं होते लेकिन एहसास जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं।
0: और अगर कभी आप किसी की खामोशी को समझ पाएं, तो यकीन मानिए, आप सिर्फ एक इंसान को नहीं, एक पूरी कहानी को पढ़ रहे होते हैं।
1: इसलिए सखियों, अगली बार जब कोई चुप हो जाए ना, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए।
0: थोड़ा ठहरिए, थोड़ा महसूस कीजिए, क्योंकि शायद उस चुप्पी में ही वो बात छुपी हो जो शब्द कभी नहीं कह पाए।
1: क्योंकि कभी कभी सबसे गहरी बातें बिना बोले ही समझी जाती हैं एकदम चुपके से।

0: सखियों, हम आजीवन रिश्तों और अपनों के बीच ही जीते रहते हैं, रिश्तों को निभाते हुए और लोगों को अपना बनाते हुए। ये जो रिश्ते हैं ना, ये समझ से चलते हैं।
1: बिल्कुल, रिश्ते शब्दों से नहीं समझ से चलते हैं। अब अगर हम ये देखें कि शब्दों से हम बस बातें बातें करते रहें और समझे ही ना एक दूसरे को, तो क्या हमारे रिश्ते अच्छे चल सकेंगे? नहीं। लेकिन सब जब समझ कम और खामोशी कुछ ज़्यादा ही हो जाती है ना, तो रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगती
0: हाँ,
1: हैं।
0: रिश्तों में बात करना बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी हम सोचते हैं कि बात बिगड़ रही है तो हम चुप हो जाते हैं। और

0: लेकिन जब चुप हो जाते हैं ना, तो वो चुप्पी सुकून नहीं देती नेहा। कुछ चुप्पियां ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे दीवार बन जाती हैं।
1: हाँ मधु, और फिर वही दीवार दो दिलों के बीच फासला बना देती है। जो कभी बहुत करीब थे, वो सिर्फ अनकहे सवालों में खो जाते हैं।
0: रिश्तों में सबसे खतरनाक चीज जिसे बोलते हैं ना सखियों, यही है। न झगड़ा न नाराजगी, बल्कि वो खामोशी, गहरी खामोशी जिसमें कोई कुछ कहता ही नहीं।
1: क्योंकि जब बातें खत्म हो जाती हैं तो गलतफहमियां शुरू हो जाती हैं, और गलतफहमियां रिश्तों को धीरे धीरे तोड़ देती हैं।
0: जो कहा नहीं जाता ना नेहा, वही अक्सर सबसे ज्यादा दर्द देता है। जो हमारे मन में छुपा रहता है, वो पीड़ा हम निकाल ही नहीं पाते।
1: कई बार हम अपनों से नाराज होकर चुप हो जाते हैं ना मधु, सोचते हैं कि वो खुद समझ लेंगे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है।
0: हाँ, और वहीं से तो रिश्तों की जो दरार है ना, वो शुरू होती है। एक छोटा सा अनकहा शब्द, एक छोटी सी खामोशी, एक बड़ा सा फासला बना लेती है।
1: लेकिन रिश्तों को बचाया भी जा सकता है अगर खामोशी को समय रहते तोड़ दिया जाए, और ये समझ लिया जाए कि हमें जहाँ जरूरत है वहाँ अपनी दिल की बात शब्दों में बयां करनी होगी।
0: दिल की बात कहना बहुत जरूरी है। यदि हम किसी से रिश्ता रख रहे हैं, तो अपने मन की बात कहनी चाहिए। और यदि हमारा जो जिससे रिश्ता है वो चुप हो रहा है, खामोश हो रहा है, तो उसकी चुप्पी को नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार वो चुप्पी मदद की पुकार भी हो सकती है।
1: और अगर आप किसी से दूर हो रहे हैं तो सिर्फ दूरी मत बढ़ाइए, एक बार बात करके देखिए। कम्युनिकेशन गैप दूर करना जरूरी है।
0: हाँ, क्योंकि कई रिश्ते जो है ना, आवाज मांगते हैं, खामोशी नहीं।
1: बिल्कुल। और जब हम देखते हैं ना कि टूटते हुए पल वो भी जुड़ने लगते हैं जब हम बात करने लगते हैं।
0: हाँ, बात करना बहुत जरूरी है। कई बार जब बात नहीं करते हैं, तो खामोशी बढ़ने लगती है, और खामोशी रिश्ते के बीच में यदि आती है, तो रिश्ता खराब होने लगता है। लेकिन यही खामोशी जब प्यार में होती है ना सखियो, तो कुछ अलग ही रूप देती है।

0: सखियों, जब रिश्ता नया नया होता है ना तो हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, लेकिन जब रिश्ता पुराना होने लगता है तो कई बार हम ये सोचना भूल जाते हैं कि कब क्या बोलना है और कब खामोश रहना है। लेकिन ये जो संतुलन है ना, ये जो बैलेंस है नेहा, ये ज़िंदगी में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर रिश्ते की नींव यही होता है।
1: बिल्कुल, यही समझ जिंदगी को आसान भी बनाती है और मुश्किल भी, क्योंकि कभी-कभी इसी से रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं।
0: बिल्कुल, कभी बोलना ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ बातें कह देने से मन हल्का होता है और रिश्ता गहरा, और कुछ रिश्ते बात करने से बच जाते हैं।
1: और कभी चुप रहना समझदारी होती है, क्योंकि हर बात पर प्रतिक्रिया देना इतना जरूरी भी नहीं होता है। कभी-कभी खामोशी ही सबसे बेहतर जवाब बन जाती
0: बिल्कुल,
1: है।
0: लेकिन समस्या तब शुरू होती है ना जब हम सही समय नहीं पहचान पाते, ना हम बोलते हैं जब बोलना चाहिए, ना हम चुप रहते हैं जब हमें चुप रहना चाहिए।
1: अपन कभी कभी ये बातें सुनते हैं ना, जैसा कि बच्चा 2 साल से बड़ा हो जाता है, 20 साल तक, और या फिर शायद ताउम्र। शुरू में हम उसको थोड़ा बहुत बोलना सिखाते हैं, और बोलना वो शायद लगभग 2 साल से 3 साल से शुरू हो जाता है,
0: बिल्कुल
1: लेकिन क्या बोलना है ये उसको सीखने में पूरी जिंदगी निकल
0: बिल्कुल
1: जाती है।
0: बिल्कुल सही कह रही हो। और यदि ये बोलना और कब बोलना है और कैसे बोलना है और कब खामोश रहना है, यदि ये बोलना हम नहीं सीख पाए ना, तो हम जुबान का असली मतलब ही नहीं सीख पाए।
1: और फिर नतीजा तो ये हो जाता है ना कि गलतफहमियां, दूरियां, टूटते रिश्ते ये बढ़ने लग जाते हैं।
0: तो ये संतुलन जो है ना, वो बनाए रखना ज़रूरी है। इसी पे डिपेंड करता है कि हमारा रिश्ता सामने वाले से कमज़ोर होगा या मजबूत होगा। कभी किसी से बात करके देखिए, शायद वो आपकी एक बात का इंतज़ार कर
1: और
0: रहा
1: कभी-कभी सिर्फ एक ही समय की
0: हो।
1: खामोशी किसी बड़े झगड़े को रोक सकती है।
0: बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है ना कि दोस्त हैं लेकिन झगड़ा होने वाला है, या परिवार है बात बिगड़ रही है, तो वहां छोटी सी बात पर झगड़ा होने लगता है, संभावना होती है कि अभी बात बिगड़ जाएगी,
1: हाँ,
0: वहां थोड़ी सी चुप्पी रख लेनी चाहिए। और कहते भी हैं जब एक गुस्से में हो तो दूसरे को शांत रहना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं बस यही बोलने वाली थी कि दो जने जब लड़ रहे होते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि तुम तो चुप रहो, तुम तो समझदार हो।
0: बिल्कुल, जिंदगी जो है ना, वो हमें रोज सिखाती है सखियों कि शब्दों की भी अपनी ताकत होती है और चुप्पी की भी एक गहराई होती है। फर्क इतना है कि इसे कब इस्तेमाल करना है, ये हमें सीखना होगा। ये संतुलन यदि हम सीख जाएं तो रिश्ते भी बन जाएंगे और हम अपने दिल की बात भी सुन सकेंगे।

0: सखियो, दिल सुनता है और तब भी सुनता है जब हम कुछ नहीं बोल रहे होते, जब हम खामोश होते हैं और लफ्ज नहीं होते, और आंखें और चेहरा बोलता है।
1: खामोशी के इशारे, वो इशारे जो जुबां कभी नहीं कह पाती, लेकिन आंखें और चेहरा सब कुछ बता देते हैं।
0: बिल्कुल, जब जुबान खामोश होती है ना नेहा, तो आंखें बोलने लगती हैं। झुकी हुई नजर, थमी हुई पलकों की हरकत और आंखों की जो नमी

0: है ना, ये सब मिलकर वो कहानी कहते हैं जो शब्द कभी बयां नहीं कर सकते।
1: हाँ, कभी कभी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है जिसे देखकर लगता है कुछ खुशी है, लेकिन उसके पीछे कोई दर्द भी छुपा है, ऐसा भी तो हो सकता है।
0: बिल्कुल सही कह रही हूँ, और सच यही है। आंखें जो है ना, वो कभी झूठ नहीं बोलती, वो बस उस सच को दिखा देती हैं जिसे इंसान छुपाने की कोशिश कर रहा हो। जब हम दर्द में होते हैं तो आंखें भर आती हैं, और जब हम खुश होते हैं तो आंखें मुस्कुरा उठती हैं।
1: और मधु, सिर्फ आंखें ही नहीं, चेहरा भी तो एक दर्पण होता है,
0: बिल्कुल
1: मन का। कभी हल्की सी मुस्कान, लेकिन उसमें सुकून नहीं, कभी माथे पर सुकड़न जो बिना बोले ही बता देती है कि अंदर क्या चल रहा है। कभी
0: बिल्कुल
1: सुना है ना,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: चेहरा बता रहा
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब माथे पे सिकुड़न जो आती है ना सले, उसे
1: है।
0: पता पड़ता है कि हम तनाव में हैं।

0: उनके माथे पे सिकुड़न जो आती है ना सले, उससे
1: बिल्कुल
0: पता पड़ता है कि हम तनाव में हैं, हम टेंशन में हैं। जैसे आज जब स्टूडियो में आई थी तो आते ही तुमने मुझसे पूछा था कि आज क्या हो।
1: बिल्कुल
0: इन्हें ही कहते हैं कि माइक्रो एक्सप्रेशंस, मतलब छोटे छोटे से जो एक्सप्रेशंस है ना, ये भाव एक पल में इंसान की पूरी सच्चाई सामने ले आते हैं, हम कितना भी छुपाने की कोशिश करें।
1: कभी किसी के चेहरे पर ध्यान देंगे ना, हम ध्यान से दिखेंगे, वो जितना शांत दिखता है उतना ही ज्यादा कुछ कह रहा होता है।
0: चेहरा किताब है भाई, जिसे पढ़ना हर किसी को नहीं आता।
1: और जब हम इन इशारों को समझने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा खुश नहीं होता और हर खामोश आंखें खाली नहीं होती।
0: खामोशी के इशारे जो हैं वो हमें सिखाते हैं कि सुनना सिर्फ कानों से नहीं होता, कभी कभी दिल से भी सुनना पड़ता है। और अगर हम सच में किसी को समझना चाहें तो उसके शब्दों से नहीं, उसकी आंखों, उसके चेहरे से शुरुआत कर सकते हैं, उसकी झुकी हुई नजरों को पढ़ सकते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि उसकी नजरों में कितनी मोहब्बत है।

0: हाँ तो सखियों, जब हम कुछ नहीं कहते हैं और चुप रहते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला हमें समझ लेगा, पर कई बार नहीं समझता, तो वो एक अकेलापन जो है ना, वो हमारे भीतर घर करने लगता है। और ये जो अकेलापन है ना, ये हमारे अंदर की एक ऐसी जगह होती है जहाँ इंसान खुद से भी बात करना छोड़ देता है।
1: हाँ, और तब खामोशी सिर्फ आवाज़ का ना होना नहीं रहती, वो एक आदत बन जाती है, हर सवाल से बचने की, हर एहसास को दबाने की।
0: सबसे अजीब बात जानती हूँ नेहा क्या है, इंसान इस आदत के बाद धीरे धीरे बोलना बंद नहीं करता, वो सही जगह पर बोलना बंद कर देता है, अपने लिए आवाज़ उठाना भी बंद कर देता है, अपने मन की बात कहना बंद कर देता है।
1: और फिर मधु, वो अपने विचारों को भी धीरे धीरे साइलेंट मोड पे डाल देता है, न किसी को बताना, न किसी से उम्मीद रखना।
0: हाँ, लेकिन ये स्थिति जो है सखियों, ये कभी अचानक नहीं आती, छोटे छोटे अनुभवों से ये स्थिति बनती है, जहाँ हर बार हम कहने की कोशिश करते हैं लेकिन समझा नहीं जाता, फिर हर बार जब ऐसा होता है तो एक परत जो है उसमें जुड़ती जाती है, और परत दर परत जब हमारे मन में बनती रहती है, तब आखिर ऐसा होता है कि हम अपने मन की बात कहना ही छोड़ देते हैं और खामोश हो जाते हैं।
1: और फिर एक दिन इंसान भीड़ में होकर भी किसी को जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे लगता है जवाब देने से भी क्या ही बदल जाएगा।
0: कभी कभी खामोशी बचाव होती है, दुनिया से नहीं खुद का टूटने से। लेकिन इसी खामोशी में एक और चीज छुपी होती है, एक छोटी सी उम्मीद कि शायद कोई बिना पूछे मुझे समझ लेगा।
1: अकेलापन हमेशा लोगों की कमी नहीं बताता, कभी-कभी ये भी बताता है कि इंसान खुद से थोड़ा दूर हो गया है। और यही वो मोड़ होता है जहाँ सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक ऐसे कम्युनिकेशन की जो औपचारिक ना हो,
0: हाँ
1: बस
0: बिल्कुल
1: इंसानी हो।
0: बिल्कुल सही कह रही हो कि यदि हम कम्युनिकेट कर लेते हैं तो हम इस खामोशी से बच सकते हैं और इस टूटन और इस अलगाव से भी बच सकते हैं, क्योंकि हर खामोश इंसान को सलानी चाहिए होती है, कभी कभी ऐसा बस मौजूदगी आपकी काफी होती है।
1: कोई जो ये ना पूछे क्या हुआ, बल्कि बस पास बैठ जाए
0: हाँ, हमारे
1: बिना
0: साथ
1: वजह।
0: बिल्कुल, चाय की दो प्याली पी ले और बोले कि चलो एक कप चाय पीते हैं, या बोले कि चलो कॉफी बना दें, या इधर उधर की कुछ बातें हो जाएं।
1: या किसी के कंधे पर सिर रखकर बस 2 मिनट हम आराम से गुनगुना लें।
0: तो कभी कभी समाधान जो है ना, वो शब्द नहीं होते, सिर्फ आपकी मौजूदगी काफी होती है।

0: जब खामोश बैठते हैं तो बहुत सी बातें मन में आती हैं। खामोशी को अक्सर लोग सुकून समझ लेते हैं, लेकिन हर खामोशी सुकून नहीं होती ना मधु। कुछ खामोशियां अंदर ही अंदर तोड़ती रहती हैं।
1: हाँ, कभी कभी इंसान जो है वो हंसता हुआ दिखता है, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ बिखरा हुआ होता है। और वो बिखराव जो है वो आवाज नहीं करता नेहा, एकदम चुपचाप बिखर जाता है।
0: सबसे मुश्किल दर्द वही होता है जो किसी को बताया ना जा सके, ना रोककर हल्का हो सके, ना बोलकर कम हो सके। कभी-कभी तो ऐसा दिखा होगा ना तुमने कि कोई ऐसा है जो चुप-चुप के रोता है, दिखा भी नहीं सकता। रात को तकिए रख के,
1: हाँ
0: तकिए पे उसके आंसू गिरते रहते
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: अक्सर ऐसा होता है। और हम महिलाओं की तो आदत होती है कि अपने दर्द को वैसे भी हम छुपाती हैं, और क्या ही करे, इंसान जब चुप हो जाता है तो धीरे धीरे अपनी दुनिया में खो जाता है। और ऐसे में जो तन्हाई में जो तुम बोल रही हो, तकिए पर आंसू बहाना, ये भी एक सहारा होता है।
0: बिल्कुल, वो अपने दिल को हल्का करने का एक जरिया होता है, लेकिन ये चुप्पी राहत नहीं देती। ये चुप्पी धीरे धीरे

0: अंदर से तोड़ देती है, और यही है खामोशी का दर्द।
1: कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज नहीं करते, बस इंसान को अंदर से खाली कर देते हैं।
0: कभी सुना है मधु तुमने उस इंसान को जो हर किसी के बीच होते हुए भी अकेला महसूस करता रहता है? वो बोलता नहीं है लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कहती है। कभी ऐसा किसी को देखा है तुमने?
1: हाँ, देखा है। और एक चीज़ और होती है कि हम जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उसकी मुस्कान जो होती है ना, उसे देखकर लगता है कि बहुत खुश है, बहुत सुकून की ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन वो अंदर से रोज़ थोड़ा टूट रहा होता है। यदि उसको हम थोड़ी गंभीरता, गहराई से देखें, उसके चेहरे, उसकी आंखों को देखें, तो हम उस टूटन को महसूस कर सकते
0: ये तुम
1: हैं।
0: मुस्कुराने की बात कर रही हो ना, मुझे याद आ रहा है तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम
1: बिल्कुल
0: है छुपा
1: बिल्कुल।
0: रहे हो ना।
1: हाँ, ये जो लाइनें हैं ये बिल्कुल ज़िंदगी की हकीकत को बयां करती हैं।
0: बिल्कुल।
1: कभी कभी हम मदद मांगना तक भूल जाते हैं क्योंकि लगता है कि कोई समझेगा तो है ही नहीं।
0: लेकिन सच्चाई ये है कि हर खामोशी के पीछे एक उम्मीद होती है कि शायद कोई तो पूछेगा क्या हुआ।
1: लेकिन वही तो पूछा नहीं जाता, और जब वो पूछा नहीं जाता है तो हम अंदर से थके हुए, टूटे हुए महसूस करते हैं।
0: वैसे मधु, एक चीज मैंने नोटिस की है कि आजकल वैसे भी कोई बात करता है ना, तो सबसे पहले देखता है कि हाँ तुम क्या कर रहे हो, अच्छा तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है, ये सब। लेकिन कोई सच में नहीं पूछता क्या तुम सच में ठीक हो।
1: हाँ, और नेहा, हाँ, देखो ना, फोन पे जब हम बात करते हैं हमारे रिश्तेदारों से या हमारे दोस्तों से भी जो दूसरे शहरों में रहते हैं, कई बार हम बात करते हैं, कोई भी हमसे पूछता है कैसे हो, हम क्या कहते हैं, हम ठीक हैं। लेकिन जो हमारे अंदर, यही तो खामोशी है, हमारे अंदर की जो चीज़ है, हम कई लड़ाइयाँ लड़ रहे होते हैं लेकिन हम वो उन्हें बता ही नहीं सकते। सोचते
0: बिल्कुल।
1: हैं कि दूर बैठे हैं, इन्हें क्यों हम परेशान करें। तो ये जो खामोशी है ना, ये हमारी कमजोरी नहीं है, इसको ओढ़े रखने की हमें ज़रूरत भी नहीं है।
0: बिल्कुल। कभी किसी अपने से बात करके देखिए, शायद दर्द कम हो जाए लेकिन हल्का जरूर हो जाएगा ना।
1: क्योंकि दर्द तो बांटने से कम होता है और खामोशी समझे जाने से टूटती है। याद रखिए, हर खामोशी खाली नहीं होती, खामोशी के पीछे बहुत कुछ छुपा होता है।

0: क्यों खामोशी को अक्सर कमजोरी समझा जाता है? ऐसा माना जाता है कि जो खामोश है वो बोलने की हिम्मत नहीं रखता, साहस नहीं रखता, शायद इसलिए वो कमजोर है।
1: लेकिन सच तो ये है मधु, हर खामोशी कमजोरी नहीं होती, कभी-कभी ये सबसे बड़ी ताकत भी बन जाती है।
0: जब इंसान बहुत कुछ महसूस कर रहा होता है लेकिन शब्द साथ नहीं देते ना, उस समय खामोशी से टूटने से बचा लेती है।
1: कई बार हम जवाब देना चाहते हैं, बहस करना चाहते हैं, अपनी बात साबित करना चाहते हैं, लेकिन हर बार बोलना जरूरी नहीं होता है।
0: हाँ, क्योंकि जब सामने वाला समझने को तैयार ही नहीं है नेहा, तो शब्द तो सिर्फ शोर बनकर रह जाते हैं, और ऐसे में खामोशी मजबूत सहारा बन जाती है।
1: और यही वह पल होता है जहाँ इंसान खुद को संभालता है, चुप होकर अपने अंदर की हलचल को शांत करता है।
0: जब हालात भारी हो जाएं तो खामोशी को सहारा बना लेना चाहिए, और ये जो है ये इंसान को गिरने नहीं देती है।
1: और सबसे खास बात यह है कि खामोशी आपको कमजोर नहीं बनाती, बल्कि आपको सोचने का वक्त देती है, खुद को समझने का भी वक्त देती है।
0: कभी किसी ऐसे इंसान को देखिए जो ज्यादा नहीं बोलता। जरूरी नहीं कि उसके पास कहने को कुछ ना हो, उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा होगा लेकिन वो बोलता नहीं है, और जो अपनी जो है फीलिंग्स हैं उनको बचा कर रखता है। लेकिन जब वो कभी कभार बोलता है ना नेहा, तो उसकी बात सुनी जाती
1: हाँ, तो
0: है।
1: कुछ लोगों को हम देखते हैं ना कि ऐसा, हम तो सोच रहे थे कि बिल्कुल आप चुप ही रहते हैं, लेकिन जब बोलने लगे तो भाई आपने तो सबको पीछे छोड़ दिया। और उसने बोलने की जगह अगर चुप रहने को चुना है ना, तो वो जानता है हर बात हर किसी को समझ में नहीं आती।
0: ये जो समझ है ना, यही खामोशी की ताकत बनती है।
1: कई बार जिंदगी हमें ऐसी जगह लाके खड़ा कर देती है जहां जवाब देना नहीं, खुद को संभालना ज्यादा जरूरी होता है।
0: और उस वक्त जो इंसान चुप रहकर खुद को संभाल लेता है सखियों, वो असल में मजबूत होता है।
1: चुप रहना भी एक कला है और हर कोई इसे समझ नहीं सकता।
0: यही कला जो है इंसान को भीड़ में सबसे अलग बनाती है।
1: चुप रहने के लिए धैर्य चाहिए होता है।
0: हाँ, उसे सिखाती है कि हर लड़ाई शब्दों से नहीं जीती जाती, कई बार चुप्पी से भी हम जीत जाते हैं। जैसे देखो ना, कभी होता है कि पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो रही है, बहस हो रही है, तो सामने वाला बहस कर रहा है और हम चुप हो जाते हैं, जवाब ही नहीं दे रहे, तो परेशान हो जाते हैं कि ये तो कुछ बोल ही नहीं रही, अब लड़ाई कैसे
1: वैसे तुम
0: हो।
1: चुप होती हो कि तुम्हारे
0: नहीं, चुप
1: हस्बैंड?
0: तो होना पड़ता है, सबको ही कभी कभी चुप होना
1: हाँ,
0: पड़ता है, मैं
1: अच्छा।
0: भी होती हूँ। तो कुछ लड़ाइयाँ जो है चुप रह कर भी लड़ी जाती हैं,
1: बिल्कुल।
0: और जब सब चीजें खिलाफ हो गई हो सखियों, तो बोलने से समस्या हल नहीं हो रही हो, तो कुछ देर शांत हो जाइए, खामोश हो जाइए।

0: क्यों, जैसा हमने बताया, खामोशी कमजोरी नहीं होती, क्योंकि अक्सर वही लोग चुप होते हैं जिन्होंने बहुत कुछ सहा होता है और वो जानते हैं।
1: हर खामोशी के पीछे एक कहानी होती है, कुछ अधूरे सपने, कुछ अनकहे जज्बात और कुछ ऐसे दर्द जो शब्दों में बयां नहीं हो पाते।
0: आपके आसपास कोई खामोश है तो सिर्फ उसकी आवाज मत सुनिए, उसकी खामोशी को भी समझने की कोशिश कीजिए।
1: क्योंकि कभी-कभी सबसे ज्यादा शोर इंसान की चुप्पी ही करती है।
0: क्यों, कार्यक्रम का जो समय है ना वो अब समाप्त होने को है और जरूरी है कि अगली मुलाकात तक के लिए हम भी खामोश हो जाएं। तो चलते चलते आपको बता दें कि आज कंसोल पर उंगलियां थिरकाते हुए आपको मधुर मधुर गीत सुनाए और हमारी आवाज को आप तक पहुंचाया मेघा गॉड ने। ट्रांसमीटर पर हमारे साथी रहे राय सिंह राव, प्रेम किशोर सेन, और कंट्रोल रूम से हमारा साथ दिया फारूक अहमद शेख ने, और एफएम पर रहे प्रकाश। तो जल्द मिलने के वादे के साथ अपनी सखी मधु बनर्जी और
1: नेहा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम नारी वाटिका। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। दिन के 2:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल तक की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें।

0: श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
0: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉ सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
2: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आईगॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
0: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरल में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी।

0: बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। सीबीएसई ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। सीबीएसई ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
0: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देशभर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में यह तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रूपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रूपये हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेनियो कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद के

0: स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंदीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थ या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। यह मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंदीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म आशिकी से कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में ये गीत, जिसमें बोल दिए हैं समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का।

आइए अगला गीत सुनते हैं फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी से कुमार सानू और अलका याग्निक की युगल आवाजों में, बोल हैं रानी मलिक के।

फिल्म संगीत की आखिरी पेशकश आपके लिए फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से ये गीत। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और कुमार सानू की, बोल आनंद बख्शी के और संगीत जतिन ललित का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म संगीत मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। दिन के 3 बज चुके हैं। आज की हमारी यह सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजे हैं। हमारी आज की ये दूसरी सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार, सत श्री अकाल। और जी, क्या है आपके हाल चाल? और उम्मीद करता हूँ कि एकदम बढ़िया होंगे। और बढ़िया क्यों भी नहीं हो, वैसे भी गर्मी इतनी तेज़ है, उसके बाद में जब शाम होती है तो फाइनली ऐसा लगता है कि थोड़ी सी ठंडक जो है हमें मिलने वाली है। और ऐसी ठंडक देने के लिए फिर से आपने ट्यून किया एकदम सही जगह पर, और आप सुन रहे हो पसंद कार्यक्रम युवाणी। और आज गीतों से बड़ी ठंडक आपको हम देंगे, बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करेंगे। और आज आपके साथ जुड़ा हूँ क्योंकि मैं हूँ आपके साथ, आपका रेडियो रागे रोहित, और आज मेरे साथ है
1: आपके रेडियो साथी प्रज्ञा अग्रवाल। तो दोस्तों, आज के इस खुश नमाजी शाम को शुरू करते हैं हमारे पहले म्यूजिकल ट्रैक के साथ।

0: भैया पॉइंट पे सीधा आते हुए ये है कि अभी ऐसा मौसम चल रहा है ना कि जब सुबह होती है और सुबह होने से कब धूप होती है और कब गर्म हवाएं लू के थपेड़े और वो बढ़ता तापमान हमें दिखता है, कब दिन हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: गर्मी का जो मौसम है वो सुबह से ही मुझे लगता है कि अपने पीक पर रहता है, इतनी गर्म हवाएं चलती है। लेकिन यही इस मौसम को खास बनाती है प्रज्ञा, और इसके साथ साथ ना ये बहुत सारे रंग भी लेके आता है, जैसे कि आम, तरबूज, खरबूजा, ऐसे रसीले फल लेके आता है, गर्मियों की छुट्टियां लेके आता है, और कई बार ना जैसे नानी दादी के घर जाने वाली जो याद होती है वो भी ये मौसम हमें दिखाता है। तो ये मौसम साथ साथ ये एक और चीज़ सिखा देता है कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है और पेड़ पौधे लगाना कितना इंपॉर्टेंट है।
1: बिल्कुल सही रोहित। गर्मी इतनी बढ़ गई है और जब भी हम फ्रिज का गेट खोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग का गेट खुल
0: बिल्कुल
1: गया। इतनी ठंडी हवा जो हमें मिलती है इतनी प्यारी लगती है। वहीं नहाने के बाद जैसे बाथरूम से रूम तक का सफ़र तय करो, पसीने में ऐसे भीग जाते हैं कि जैसे मैराथन भाग के आए है कि
0: बिल्कुल,
1: नहीं।
0: ये गर्मी ऐसा है कि नहाओ चाहे नहीं नहाओ आपको ऐसा लगता है कि पसीना आप पे हमेशा ही है, और लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पसीना आपको आ रहा है तो उसके लिए भी प्रज्ञा एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि अभी हमें देखने को मिल रहा है कि स्किन इन्फेक्शन जो है वो
1: बिल्कुल
0: बहुत आम हो गए हैं, हर एक जने में कहीं ना कहीं स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो हो रही है, तो इसका भी आप खास ध्यान रख सकते हैं। मैंने एक डर्मेटोलॉजिस्ट से बात की थी तो उन्होंने मुझे बताया था, जो डॉक्टर है उन्होंने मुझे बताया था कि जब भी आप नहाते हो या जब भी आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो या बाहर से घर पे आ रहे हो और बहुत ज़्यादा पसीना आपको हो गया है या फिर आपकी बॉडी में कोई भी ऐसा पार्ट जो कि बहुत ज़्यादा गीला है, तो सबसे पहले जो चीज़ है वो आपको उसे साफ़ करना है और थोड़ा जो पार्ट है उसे सुखाना है, मतलब जैसे कि अगर आप पसीने से हो भरे हुए,
1: बेस्ट है आप एक बाथ ले लो,
0: बिल्कुल आप नहा लो, और अगर आप
1: शावर ले
0: नहा
1: लो।
0: के आए हो
1: हाँ
0: तो आपको सूखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि गर्मी है तो सूखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फंगस की जो इन्फेक्शन वाली जो प्रॉब्लम है वो बहुत कॉमनली देखते हैं कि अगर पानी या स्किन गीली रहती है तो फंगल इन्फेक्शन जो है वो हो सकते हैं।
1: और ज़्यादा ही आपको कुछ इन्फेक्शन हो रहा है तो हमारा सजेशन यही है कि आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अपने हिसाब से कुछ यूज़ करने से अच्छा है आप एक एक्सपर्ट की सलाह लें और फिर ही उस क्रीम को या लोशन को यूज़ करें।
0: बिल्कुल, हमारी सलाह एक और है कि गर्मी बढ़ रही है तो जितना ज़्यादा हो सके उतना पानी पिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, अपना ध्यान रखें, अपने आसपास वालों का ध्यान रखें, और अपने घर के बाहर एक पानी का बर्तन या एक ऐसा जो कुंडी जिसे हम बोलते हैं है ना, वो आप भर के रख सकते हैं, ताकि जो आवारा पशु या जो बेजुबान जानवर है आपके आसपास वाले वो अच्छे से पानी पी सके, उनको भी जो है पानी प्रॉपर मिल सके।
1: बिल्कुल। और आप चाहे तो जो पेड़ है अपने घर के बाहर उस पे भी एक छोटा सा कुंड बना सकते हैं जिसके लिए आप पक्षियों के लिए दाना या पानी भी दे सकें, ताकि जो हमारा पर्यावरण है वो हमसे और हम पर्यावरण से। तो दोस्तों इन सब के साथ हमें ग्रो करना है। तो आइए सुनवाते हैं आपको ये इस शाम का ये अगला ट्रैक।

0: दोस्तों, हम अक्सर ये सुनते हैं कि शब्दों में ऐसी ताकत होती है, वो हमें बना भी सकते हैं और हमारी हमारी ज़िंदगी को बिगाड़ भी सकते हैं। जी हाँ, शब्द ही वो ऐसे हैं जो हमें आसमान तक पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों, कई बार ऐसी चीज़ होती है कि हम खुद से बात करना ही भूल जाते हैं। हमारे पास दुनिया में बात करने के लिए बहुत से लोग हैं, पर हम खुद से बात करते ही नहीं है। तभी तो एक कॉन्सेप्ट आता है सेल्फ टॉक, यानी कि दिन भर में आपके लिए क्या क्या चल रहा है आपके दिमाग में, उस पर फोकस मार के अपने आप से बातें करना और हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाना।
1: बिल्कुल, और उसी को कहते हैं प्रज्ञा मी टाइम, जो कि है अगर हम बॉस के साथ सुनते हैं, ऑफिस में रहते हैं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लोग यही सोचते हैं कि मी टाइम का मतलब है अपने लिए जीना, हम गेम खेल सकते हैं, अपनी फेवरेट सीरीज वॉच कर सकते हैं या ये सब कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है मी टाइम एक वो भी इम्पॉर्टेंट है जब आपका दिमाग कुछ नहीं सोच रहा हो, एकदम शांत आप बैठे हो, या तो फिर आप अपनी बॉडी या फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, माइंड को रिफ्रेश करने के लिए जो
0: बिल्कुल
1: चीज़ें आप करते हो ना, वो मी टाइम होता है। कई बारी आप बैठ करके सिर्फ प्लानिंग करते हो कि आज दिन में मैंने क्या क्या किया था, बस उसको सिर्फ नोट डाउन करना भी जो है मी टाइम के अंदर ही आता है। और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 से 15 मिनट भी अगर आप रोज़ अपने आप को देने लग जाओगे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा जो ग्रोथ वाला जो ऑप्शन होता है ना,
0: बिल्कुल
1: वो
0: बिल्कुल
1: आपके लिए अनलॉक हो जाएगा। और क्योंकि और इस स्पेशली ना प्रज्ञा, इस बीच में हमें स्क्रीन से दूर रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि मी टाइम मतलब गेम खेल लेते हैं या फिर कोई सीरीज़ देख लेते हैं या फिर ऐसा कुछ कर लेते हैं। लेकिन अगर हम मोबाइल स्क्रीन, टीवी स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन से दूर होकर के अगर कोई भी फिजिकल

0: एक्टिविटी करेंगे, तो वो मी टाइम जो है ज़्यादा अच्छा आपके लिए साबित होने वाला है आने
1: रोहित,
0: वाले
1: मुझे
0: टाइम
1: यहाँ
0: में।
1: पे ऐसा भी लगता है ना कि मी टाइम का मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं कि हम हमारे दिमाग में फोकस ला रहे हैं कि हमें प्रेजेंट में क्या करना है।
0: बिल्कुल
1: जैसे कि मैंने कोई स्किन केयर पिक किया, तो स्किन केयर के जो 7-8 रूटीन के स्टेप्स हैं, अगर मैं उसमें अपना दिमाग लगा रही हूँ तो वो मेरा प्रेजेंट में रहना मी टाइम कहलाएगा।
0: बिल्कुल
1: फ़ोन नहीं यूज़ करके, स्क्रीन नहीं यूज़ करके, मूवी या सीरीज़ नहीं देख के हम हमारी फिजिकल एक्टिविटी, ब्रेन को कैसे ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, ये सब मी टाइम में आएगा।
0: मतलब मोटा मोटी ये चीज़ है कि अगर हम प्रोडक्टिव सोच रहे हैं अपने आप को लेकर के, अपने बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में, तो वो मी टाइम होता है। दूसरों के लिए तो हम करते ही हैं, लेकिन अगर अपने लिए भी करने लग जाए तो मुझे लगता है जो लाइफ है, जो सब कुछ है ना, बहुत ईजी हो जाएगा।
1: बिल्कुल दोस्तों, दिमाग के क्लटर को साइड करते हुए अपनी तरफ ध्यान दीजिए और सेल्फ टॉक और मी टाइम के बीच अपने आप को पाइए।

0: श्रोताओं, आज है विश्व फिस्टुला दिवस। ये दिवस हर साल 23 मई को मनाया जाता है ताकि महिलाओं में होने वाली फिस्टुला जैसी गंभीर समस्या का समाधान मिल सके और इसके प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। फिस्टुला एक ऐसी मेडिकल स्थिति है जिसमें शरीर के दो अंगों के बीच असामान्य रास्ता बन जाता है, जो अक्सर कठिन प्रसव या सर्जरी के कारण होता है। आइए इसी संदर्भ में आपको एक भेंटवार्ता सुनाते हैं डॉक्टर विष्णुदत्त शर्मा से कल्याण विश्नोई की बातचीत।
1: श्रोताओं, आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर विष्णुदत्त शर्मा। आप MS PhD हैं आयुर्वेद में। इसके अलावा शल्य तंत्र विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर एवं उपाध्यक्ष हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय कड़वड़ जोधपुर में। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज वर्ल्ड फिस्टुला डे है, तो क्या है फिस्टुला और इसके उपचार में कौन सी तकनीक अपनाई जाती है व इससे बचाव के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आकाशवाणी जोधपुर में डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: मैं आकाशवाणी जोधपुर और आकाशवाणी जोधपुर के समस्त श्रोता जो इस प्रोग्राम को सुनेंगे उन सभी को एवं साथ में कल्याण विष्णु जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे इस अवसर पर मुझे यहां बुलाया और मेरे विचार जाने।
1: जी डॉक्टर साहब, रेडियो सुन रहे आम लोगों को आसान भाषा में समझाएं कि फिस्टुला असल में क्या होता है और यह बवासीर से कैसे अलग होता है।
2: फिस्टुला को आसान भाषा में अगर अपने मारवाड़ी के अंदर देखें तो इसको खील गड़िया नासूर नाम से इसको बोला जाता है
1: जी।
2: गुदा जो एनल एरिया है उसके आसपास में कोई फुंसी, कोई फोड़ा या कोई एब्सेस गांठ बनती है उसको ही मारवाड़ी में अपन फिस्टुला कहते हैं और इसको आयुर्वेदिक में इसको कहते हैं बगंदर। बगंदर क्या होता है कि एक ये जब पहले पकता नहीं है जब तक तो ये अपक्व रहता है, ये पीड़िका कहलाती है और ये फूट जाता है तब इसको हम कहते हैं बगंदर या फिस्टुला
1: जी।
2: फिस्टुला का मतलब हुआ अनहेल्दी एक ट्रैक बन जाता है जिसका एक मुंह होता है रिंग के अंदर एनल कैनल के अंदर और एक जो मुंह है उसका गुदा के बाहर खुलता है, मतलब एक एबनॉर्मल ट्रैक बन जाता है
1: जी
2: जो नेचुरल नहीं होता है और उसके अंदर खाली वो पस का जो मवाद रस्सी जो पस होती है ना वो अंदर से बाहर निकलता रहता है और वो पेशेंट्स में काफी शर्म फील करता है कि उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं बार बार उसमें से वो पकता है फूटता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि फुंसी जो होती है वो ठीक हो जाती है फिर 15-20 दिन बाद महीने दो महीने बाद वो वापस से सेम कंडीशन ये चलती रहती है। इसलिए इसको आयुर्वेद में 8 महान गद बताई गई, 8 डिजीज ऐसी हैं, 8 डिजीज जो डिफिकल्टली क्योर होती है उसमें फिस्टुला का नाम डाला है
1: जी।
2: और आधुनिक सर्जरी में देखें तो इसके लिए उन्होंने देखो फिस्टुलोटोमी, उसके बाद में फिस्टुलेक्टोमी, फिर बाद में लिप्ट वाप्ट करके नई नई टेक्निक लाए जा रहे हैं तो आज भी इसका कोई इलाज इसका परमानेंट ठीक नहीं है। रिकरेंस रेट जो इसकी है बहुत हाई है।
1: अच्छा।
2: मतलब मॉडर्न में आज भी 10-60% तक इसकी रिकरेंस रेट है।
1: अच्छा, मतलब इतने मरीजों को ये वापस से हो जाता है
2: जी, 10-60% तक ये रिकरेंस हो जाता है, वापस हो जाता है
1: जी।
2: और इसमें एक समस्या क्या आती है, ये जितना बड़ा वो एब्सेस होगा गढ़ होगा उतने ही दूर तक उसमें वो काट के उसको निकाल देते हैं पार्ट को
1: जी।
2: तो वो काट के निकाल देंगे तो वो इतना प्रॉब्लमेटिक है कि पेशेंट एक दो महीने तक वो उल्टा ही लेटा रहता है और फिर उसमें जो जितना बड़ा केविटी होगी उतना ही उसमें रोज गोज पीस डाल के उसको अंदर पैक करेंगे
1: जी।
2: तो पेशेंट के लिए काफी पेनफुल है,
1: उसको भरने में भी टाइम लगेगा और उसका मूवमेंट तब तक लॉक रहेगा,
2: मूवमेंट लॉक रहेगा
1: जी,
2: काफी टाइम लगेगा भरने में उसको।
1: इसको अगर बवासीर से कंपेयर करें तो ये उससे कैसे अलग है?
2: तो बवासीर के अंदर सर आता है जो पाइल्स अर्स जो है हेमराइड्स वो बवासीर के अंदर आता है। फीसर को हम बवासीर, फीसर और पाइल्स जो है उसको हम बवासीर कह सकते हैं। बवासीर के अंदर क्या होता है, गुदा के अंदर एक उभार फील होता है, बल्ज कोई गांठ जैसा संरचना बाहर आती है और वो या तो अपने आप चल जाती है अंदर या फिर उसको हाथ से पुश करना पड़ता है, वो बवासीर है। उसके अंदर क्या होता है, पेन बिल्कुल नहीं होता, बवासीर के अंदर पेन बिल्कुल

0: नहीं होता, उसके अंदर तो खाली ब्लीडिंग होती है बहुत ज्यादा, ब्लीडिंग भी ऐसे एक दो बूंद नहीं, जैसे पिचकारी चलती है उस
1: जी
0: टाइप से इसके अंदर बवासीर के अंदर खून निकलता है।
1: जी
0: और जबकि भगंदर जो फिस्टुला है उसमें खून बहुत ही कम आता है, इसमें तो पस या रस्सी जो होती है ना वो
1: जी
0: बाहर निकलती रहती है।
1: अक्सर लोग शर्म या संकोच की वजह से इस बीमारी को छिपाते हैं, तो आप हमें ये बताएं कि ऐसे कौन से शुरुआती लक्षण हैं जिनको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए?
0: इसमें तो यही है कि सोच के टाइम में अगर आपको पेन हो रहा है या कोई उभार कोई स्वेलिंग वहां फील हो रही है तो वो चीज अपने को छुपानी नहीं चाहिए, तुरंत उसमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।
1: जी
0: मतलब अगर बहुत देर तक इस टूल में टाइम लग रहा है
1: जी
0: तो वो कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन से ही ये आगे ये डिजीज ग्रो करती है।
1: अच्छा, मतलब शुरुआती लक्षणों में कॉन्स्टिपेशन के साथ अगर पेन फील होता है तो
0: हाँ,
1: डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट किया
0: तुरंत
1: जाना चाहिए।
0: कंसल्ट करें।
1: जी डॉक्टर साहब, आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि फिस्टुला होने के मुख्य कारण क्या है, और आज की भागदौड़ की जो लाइफस्टाइल है इसमें जो गलत खान पान जिसको माना जाता है, क्या वो भी उसका कारण है?
0: बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आज की जो लाइफ स्टाइल जो दिनचर्या है उसी से सबसे ज्यादा ये फिस्टुला या बवासीर जो गुदरोग, दोनों ही गुदरोग हैं,
1: जी
0: अपने आप में अलग हैं पर दोनों डिजीज अपने आप में गुदरोग ही हैं।
1: जी
0: तो दोनों ही का सबसे ज्यादा जो कारण है वो आज की लाइफ स्टाइल है, क्योंकि आज क्या है फाइबर वाली डाइट तो कोई लेता नहीं है,
1: जी
0: जंक फूड खा रहे हैं,
1: जी
0: कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो ज्यादा यूज कर रहे हैं, उस वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। वो स्टूल के लिए वो बहुत देर तक बैठा रहता है। आजकल क्या युवाओं के अंदर क्या हो रहा है कि वो फोन लेके जा रहे हैं उसके अंदर
1: जी
0: और आधा घंटा तक वो उसके अंदर बैठ रहे हैं, जबकि स्टूल के लिए केवल 5 से 7 मिनट का टाइम पर्याप्त है।
1: पर्याप्त
0: अगर नहीं आ रहा है प्रेशर तो 5-7 मिनट रुक के आप उठ सकते हैं, जब
1: जी
0: दोबारा प्रेशर बने तभी उसके लिए जाना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद ने कहा है रोगा सर्वपि जायन्ते वेगो उदीरण धारणे, वेग जो नेचुरल अर्ग्स हैं चाहे वो यूरिन का हो चाहे वो फ्रेश होने के लिए टॉयलेट का हो, उसको रोकना नहीं चाहिए। अगर आ रहा है तो उसको रोके नहीं, और नहीं आ रहा है तो उसको बलात् प्रेरित नहीं करें,
1: जी
0: क्योंकि बलात् प्रेरित करने से क्या कुंठन करेंगे, उसको बोलेंगे स्टेनिंग।
1: जी
0: स्टेनिंग करने से जो वहां की जो वेन्स होती है गुद एरिया की, एनल एरिया की, वो फूलती हैं और वो ग्रेजुअली पाइल्स के रूप में डेवलप हो जाती हैं, और ज्यादा जोर लगाएंगे तो स्टूल हार्ड हो जाएगा,
1: जी
0: हार्ड होने से वहां कट लग जाएगा, कट लगेगा तो संक्रमण का खतरा रहेगा। वो जो धीरे धीरे करके जो गुद ग्रंथियां होती हैं, एनल ग्लैंड्स होती हैं, जो कि म्यूकस का सीक्रेट करती है स्टूल को सॉफ्ट बना के बाहर निकालने के लिए,
1: जी
0: मलत्याग को आसान करने के लिए कुछ गुद ग्रंथियां होती हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन होगा उससे ये फिस्टुला डेवलप होता है,
1: जी मतलब ज्यादा देर बैठना इसका एक
0: बहुत बड़ा
1: मुख्य कारण है।
0: मुख्य कारण है।
1: जी आयुर्वेद के नजरिए से देखें तो किन दोषों से, यानी वात पित्त और कफ में से किसके बिगड़ने से ये समस्या पैदा होती है?
0: ये जो बीमारी फिस्टुला है त्रिदोषज है, वात पित्त कफ तीनों ही दोष जब मिलते हैं तो ये बीमारी होती है। वात ठीक है, वात दोष का बगंदर हमारे जो फिस्टुला अलग है, पित्त दोष का अलग है और कफ दोष से अलग है, और जो सारे दोष मिलके वो अलग है, और साथ में कुछ एक्सटर्नल कारण है ट्रोमेटिक, जैसे कहीं बाहर से कोई चोट लगी गुद के एरिया में तो भी फिस्टुला बन सकता है, उसको हमारे अलग से बोला है। तो ये पांच भेद किए हैं, सारे दोष से मिलके बनता है, जो
1: इसमें कोई एक कारण जिम्मेदार
0: एक
1: नहीं है।
0: कारण जिम्मेदार नहीं, सारे दोष ही
1: जी
0: कुपित होके ही बगंदर रोग की या फिस्टुला रोग की उत्पत्ति करते हैं।
1: जब कोई मरीज पहली बार आपके पास में आता है तो आयुर्वेद में इसकी जांच का तरीका यानी आधुनिक विज्ञान से वो किस तरह से अलग है?
0: देखो आयुर्वेद हो चाहे आधुनिक विज्ञान हो मॉडर्न हो, सब में ही जांच का तकनीक अलग हो जाती है। बाकी रोग की जांच करने के लिए तीन उपाय बताए हैं, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न, मतलब
1: जी
0: एक बार देख के
1: जी
0: उसको फील करके
1: जी
0: और क्वेश्चन करके, तो
1: जी
0: यही चीजें हैं। तो दर्शन में हमारे पास दर्शन करने के लिए आंखों से देखेंगे, लेटेस्ट में आज के टाइम में क्या हो गया एमआरआई हो गई फिस्टुला के लिए,
1: जी
0: फिस्टुलोग्राफी हो गई, सोनोग्राफी भी है उस एरिया की, वो सोनोग्राफी करा सकते हैं, बाकी हम भी उनको यूज लेते हैं, बाकी देखना तो वो आंखों से होगा।
1: मतलब आधुनिक विज्ञान के तरीकों पर आप भी कहीं ना कहीं डिपेंड
0: बिल्कुल
1: हैं
0: हम
1: थोड़ा।
0: पूरे डिपेंड हैं उनसे,
1: जी
0: क्योंकि जैसे कोई चीज है कोई फिस्टुला अगर भगंदर छोटा है,
1: जी
0: फिस्टुला बहुत इजी है जो फील हो रहा है, अगर इंटरनल ओपनिंग उसके हम पीआर करेंगे पर रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें फील हो जाएगा, तो हमें उसमें नीड नहीं है एमआरआई कराने की।
1: जी
0: लेकिन यदि फिस्टुला कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा फिस्टुला है, कॉम्प्लेक्स है, तो हम उसमें बिल्कुल एमआरआई कराते हैं और करवानी चाहिए,
1: ताकि इलाज में रिस्क परसेंटेज घट जाए।
0: रिस्क परसेंट गिर जाए और पेशेंट जल्दी ठीक हो जाए।
1: जी फिस्टुला के इलाज में आयुर्वेद की शार्क सूत्र जो चिकित्सा है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि औषधीय धागा यानी जिसको शार्क सूत्र कहते हैं, यह बिना किसी बड़ी सर्जरी के कैसे काम करता है?
0: जी आपने बहुत सही क्वेश्चन किया है। क्षार सूत्र हमारे आचार्यों ने बहुत पहले इसके बताया था, भावितम रजनी चूर्णे स्नोई छिरे पुनः पुनः बदनियात सुदृढ़ सूत्रम भिन्नति अर्थो बगंद्रम, अर्थात हरिद्रा चूर्ण और स्नोई छीर लेटेक्स ऑफ यूफोरिया और जो हल्दी है कुरकुमा लौंगा

0: उसका पाउडर बना के पाउडर से हम एक थ्रेड है उस थ्रेड को कोटिंग करते हैं और उस थ्रेड को हम दे देते हैं छारसूत्र नाम मेडिकेटेड थ्रेड
1: जी।
0: वो थ्रेड क्या है, छार हमारे कोई भी जो गलावा जो खराब टिश्यू है उसको वो धीरे धीरे काटता है और काट के वो वापस से उसको हील कराता है बीमारी को
1: जी।
0: जैसे हमने छार सूत्र अप्लाई किया तो हम पूरा उस जो मान लो बगन फिस्टुला जो है उस एरिया उस पूरे एरिया को हम कटिंग नहीं करते एलोपैथिक तरह फिस्टुलेक्टोमी नहीं करके हम जो बाहर ओपनिंग है उस ओपनिंग से वो छार सूत्र अंदर प्रोब की हेल्प से डाल देते हैं और इंटरनल ओपनिंग से निकाल लेते हैं तो छार सूत्र अंदर रहेगा तो छार अपना वहां लेखन कर्म करता हुआ जो वो बीमारी है जो एनल ग्लैंड जहां इन्फेक्शन हुआ है उसको वो धीरे धीरे करके ठीक कर देगा और जब अंदर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा ठीक हो जाएगा तो बाहर जो चैनल है वो अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: लोगों के मन में सर्जरी को लेकर के बहुत सारे डर होते हैं, क्या छार सूत्र प्रक्रिया में मरीज को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है या उसको कितने दर्द से गुजरना पड़ता है?
0: ठीक बात है सर, छार सूत्र है वो हॉस्पिटल डे केयर प्रोसीजर के रूप में हम इसको करते हैं
1: जी
0: और पेशेंट चाहे तो एक दिन रुक सकता है अदरवाइज वो आराम से जा सकता है, प्रोसेस पूरा एम्बुलेटरी है। ठीक है हमारे इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, होता कई बार जैसे जितना बड़ा फिस्टुला होगा उतना ही इसमें टाइम ज्यादा लगेगा
1: जी।
0: तो हर वीकली एक बार हम थ्रेड चेंज करते हैं, छार सूत्र को क्या आज डाल दिया
1: जी।
0: तो उसको ठीक 7 दिन बाद उसको हम वापस से रीथ्रेडिंग करते हैं
1: जी।
0: तो उसमें कोई पेन नहीं होता, रेल एंड ट्रेल मेथड से उसको हम कर देते हैं, दोबारा इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती
1: जी।
0: जो धागा छार सूत्र बंधा होता है उसके पास में दूसरा नया थ्रेड बांध के उसको उस वापस खींच लेते हैं
1: जी।
0: और पेशेंट को हम घर भेज देते हैं, वो सारा अपना जो भी रूटीन काम है जॉब है वो सारे काम कर सकता है, वीकली उसको एक बार आना पड़ेगा। मतलब हमारा छार सूत्र प्रोसेस है पूर्ण रूप से एम्बुलेटरी प्रोसेस है, उसमें बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है
1: जी। मतलब कि शुरुआती लक्षणों में अगर कोई मरीज आ जाता है तो उसको रिलीफ मिलने की जो प्रक्रिया है वो भी कम समय लेने वाली होगी।
0: पेशेंट जितनी जल्दी आएगा, बीमारी जितनी जल्दी पकड़ में आएगी उतनी जल्दी पेशेंट स्वस्थ होगा ठीक होगा।
1: एलोपैथी में जैसे सर्जरी होती है तो उसमें फिस्टुला के दोबारा होने की जैसे आपने भी बात कही वो परसेंटेज ज्यादा है, आयुर्वेद में कितना अंतर आ जाता है छार सूत्र से अगर इसका इलाज किया जाए?
0: देखो मैं कहूं कि छार सूत्र से रिकरेंस नहीं होगी ये तो बिल्कुल गलत होगा
1: जी।
0: रिकरेंस रेट छार सूत्र में भी है क्योंकि ये डिजीज अपने आप में नोटोरियस है, हमारे आयुर्वेद में इसको महागत माना है और आज भी एलोपैथी में भी इसको नोटोरियस डिजीज नाम दिया हुआ है, बेली एंड लव है उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये डिजीज नोटोरियस है, मतलब इसका नेचर पता नहीं चलता। कारण क्या है, एक ट्रैक जो होता है ना ऐसा सीधा नहीं हो कि ब्रांचिंग होती है, जैसे पेड़ का वृक्ष होता है वृक्ष की टहनी अलग अलग घूमी होती है तो कितने के एरिया में ऑपरेशन करेंगे तो कितना काट सकते हैं, जितना ज्यादा काटेंगे उतना ही टिश्यू डैमेज होंगे पेशेंट का, हमेशा के लिए बैठने में समस्या आ गई और जितना ज्यादा कटिंग होगी तो हमारी जो गुद नलिका है उसके दोनों तरफ चारों तरफ क्या होता है स्पिंक्टर मसल्स होती हैं जो कि स्टूल को कंट्रोल करती हैं, अगर ज्यादा कटिंग हो गई तो स्पिंक्टर डैमेज होगा तो पार्शियल इनकॉन्टिनेंस होगा, मतलब पेशेंट अगर गैस भी पास कर रहा है तो उसको स्टूल निकल सकता है। छार सूत्र में ऐसी कोई समस्याएं बिल्कुल भी नहीं आएंगी,
1: मतलब रीअकरेंस तो है लेकिन ये कुछ और मामलों में ज्यादा सुरक्षित उपाय है।
0: बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है कि हम इसमें कोई कटिंग करते नहीं है तो स्पिंक्टर जो मसल्स हैं उसके डैमेज होने के चांस कम से कम है। हाँ रिकरेंस रेट 5-10% तक आयुर्वेद में हो सकता है, वो डिजीज क्योंकि बहुत बड़ी है तो 5-10% चांसेस है कि रिकरेंस हो जाए,
1: ये इस बीमारी का नेचर है कि वो वापस आएगी,
0: वापस आ सकती है
1: जी। आयुर्वेद हमेशा डाइट पर जोर देता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो फिस्टुला के मरीजों के लिए खान पान के मामले में क्या आप परहेज बताना चाहेंगे?
0: फिस्टुला हो या गुदरोग जो बवासीर फिस्टुला पाइल्स हेमरॉइड्स फीसर जो भी है गुदरोग उसके अंदर मेरे हिसाब से सुबोड़ते मैं भी कह रहा हूँ और आयुर्वेद भी शाश्वत है जीवनचर्या का विज्ञान है वो भी ये कहता है कि सुबोड़ते ही 2 गिलास गुनगुना पानी पिए और आधा घंटा गोमे इच्छा होने पर फ्रेश होने जाए, ऐसा नहीं कि बिना प्रेशर बना नहीं और आप जाके बैठ रहे हैं और साथ में डाइट जो भी हो उसमें फाइबर रिच डाइट है वो लें, ग्रीन वेजिटेबल जो है सीजन में आती हैं लौकी है तुरई है पालक है चंदलिया है टिंडा है पत्ता गोभी है कद्दू है मूंग दाल है इनका जितना मैक्सिमम यूज करेंगे उतना ही बाउल आपकी अच्छी रहेगी, बाउल अच्छी रहेगी तो वहां प्रेशर पड़ेगा नहीं तो फिस्टुला और पाइल्स होने की संभावना नगण्य रह जाएंगी।
1: और पेट साफ नहीं होने पर जो कब्ज की बीमारी है तो पेट साफ रखने के लिए आप कौन से घरेलू उपाय जो है हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे?
0: सर सबसे अच्छा तो यही है कि रात में सोते हुए हल्दी वाला दूध पिए तो उससे एक तो अपने आप फ्रेश होंगे और दूसरा जो अगर देखी जाए तो त्रिफला तो एक कॉमन है हर जगह हर घर में और हर पंसारी को मिलता है, 3 आइटम होते हैं इनको घर में मिक्सिंग पीस के रख ले रात में सोते समय 1 से लेकर 2 चम्मच जितनी उसको नीड हो क्योंकि ऐसा मैं कह दूं कि 1 चम्मच से पेट साफ हो जाएगा, हर किसी की प्रकृति अलग अलग होती है, किसी का 1 चम्मच में होगा किसी का 2 चम्मच में होगा, जितना नीड लगे 1 से 2 चम्मच रात में सोते समय गुनगुने पानी ले ले तो उसको किसी प्रकार का कोई हैबिट फॉर्म नहीं होगा और कोई भी दुष्प्रभाव किसी प्रकार

0: का नहीं होगा।
1: जो लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन उनके दिमाग में भी ये आता है कि कुछ आदतों की वजह से उन्हें भविष्य में फिस्टुला हो सकता है, तो उनको कौन सी आदतें विकसित करनी चाहिए जिससे उनको फिस्टुला या पाइल्स जैसी बीमारियां हो ही नहीं?
0: सबसे ज्यादा तो है कि वो डाइट हेल्दी लें, जो अभी मैंने बताया, ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा लें, छाछ का सेवन खूब करें, और लाइफ स्टाइल में सेडेंटरी नहीं रहें, बैठक नहीं, थोड़ा एक्टिव रहें, व्यायाम करें, आधा घंटा सुबह नहीं टाइम मिले तो मान लो शाम को करें। व्यायाम एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, तो शरीर अगर फिट रहेगा तो ऐसी कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं आएंगी। और मान लो त्रिफला बहुत माइल्ड लग्जेटिव है, किसी को त्रिफला नहीं सूट कर रहा तो पंचसकार है, वो पंचसारिक मिल सकता है। साथ में हर्डर पाउडर होता है जो कि बच्चों को देते हैं, निरापद है, पेट के लिए अमृत है, उसको पाउडर बना के मिक्सी में और कैस्टर ऑयल में फ्राई कर लें और रात में 1 से 2 चम्मच ले सकते हैं, तो कोई किसी प्रकार का न तो हैबिट होगी और पेट भी बहुत स्मूथली साफ हो जाएगा।
1: जैसा आपने बताया कि ये जो सामान्य लक्षण है फिस्टुला के, तो कोई व्यक्ति है जो इन लक्षणों का सामना तो कर रहा है लेकिन वो डॉक्टर के पास जाने से कतरा रहा है, या उसको लगता है कि इस बीमारी का किसी को पता चलेगा तो कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो ऐसे संकोची प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो एक बार डॉक्टर के पास जाके कम से कम इसके बारे में बात करें?
0: ठीक करें कि इस बीमारी को मैं भी पिछले 17 साल से इस मरुभूमि में ये काम कर रहा हूं। तो जब हम शुरू में हॉस्पिटल में आए थे तो पेशेंट नहीं के बराबर थे, लेकिन आज जैसे हम पेशेंट ठीक भी करते हैं डील, तो उसको यही कहते हैं कि गांव में शहर में जो मिले उसको बताना कि टाइम पे इसका इलाज हो जाएगा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, कोई किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन कोई उपद्रव नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा तो यह है कि ज्यादा देर वो टॉयलेट में नहीं बैठे, फर्स्ट सुरक्षा तो यही है कि वो 5 से 7 मिनट का टाइम सफिशियंट है, इसमें अगर फ्रेश हो रहे हो तो ठीक है, नहीं तो बाद में आपको जब भी प्रेशर बने तब आप जाएं, बिना मतलब जोर लगा के जिसको बोलते हैं स्टैंडिंग कुंथन बोलते हैं वो काम नहीं करें।
1: मतलब हम हमारे मोशन खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, वो स्वाभाविक रूप से जिस तरह से चलते हैं उनको उनके साथ साथ वैसे चलना चाहिए,
0: क्योंकि अगर प्रेशर को रोक रहे हैं तो भी ठीक नहीं है, और प्रेशर नहीं आ रहा और फोर्सफुली अगर अपन उसको निकाल रहे हैं तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल बवासीर या फिस्टुला ये डिजीज वापस होनी है।
1: डॉक्टर साहब, आप फिस्टुला के प्रति जो काम कर रहे हैं वो सराहनीय है, तो हम उसके लिए आपको विशेष बधाई देते हैं, और साथ ही आप हमारे इस स्टूडियो में पधारे और आपने बहुत सारी काम की बातें हमारे श्रोताओं के लिए कही, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वर्ल्ड फिस्टुला दिवस पर भेंटवार्ता जो की करी गई थी डॉक्टर विष्णुदत्त शर्मा से, कल्याण विश्नोई ने।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, देश भर में लाखों मेडिकल छात्रों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। नीट UGC 2026 की नई परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है और री एग्जाम की नई तिथि है 21 जून 2026। इससे पहले 3 मई 2026 को आयोजित हुई परीक्षा को पेपर लीक विवाद के बाद रद्द कर दिया गया, तो इसी के चलते सरकार ने नए नियम और छात्रों के लिए एक नया मौका निकाला है।
4: बिल्कुल, और री एग्जामिनेशन के बाद में ना, जो एक बहुत अच्छी चीज़ जो सारे स्टूडेंट्स के लिए होने वाली वो ये है कि इनको 15 मिनट्स यानी कि 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। जो भी टाइम आपका होगा उसके अलावा आपको अतिरिक्त 15 मिनट भी मिलने वाले हैं, और पहले जो भी आपने फ़ीस सबमिट करवाई थी वो फ़ीस भी आपको रिफ़ंड हो जाएगी। और इस वापस री एग्ज़ामिनेशन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की फ़ीस का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, यानी कि ये 100% फ्री रहेगी, टोटली निःशुल्क रहेगी, इसकी फ़ीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। और पहले जो भी आपने फ़ीस सबमिट करी थी वो भी आपके जो भी अकाउंट से आपके पैसे कटे हैं उस अकाउंट में वापस आ जाएंगे। तो 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, प्लस फ्री जो है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आप इस बार ही सबमिट करवा सकते हैं।
3: तो दोस्तों, ऐसे समय में छात्रों को अपनी अफवाहों से दूर रहना चाहिए और केवल सिर्फ वेबसाइट पर भरोसा करें। दोस्तों, ये जो समय है ये समय घबराने का नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत से और जी जान से एग्ज़ाम को पास करने का है।

0: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एसआई यानी सब इंस्पेक्टर परीक्षा बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। साल 2026 की एसआई भर्ती परीक्षाओं को लेकर अलग अलग राज्यों और विभागों ने परीक्षा तिथियां जारी कर दी है और उम्मीदवार अपनी तैयारी में जुट गए हैं।
1: बिल्कुल, और राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से जो 20 सितंबर को एसआई की परीक्षा होने वाली है, उसमें जो गवर्नमेंट ने 16 तारीख यानी पिछले शनिवार से संशोधन के लिए जो है वो

ओपन कर दिए हैं, तो अगर आपको भी कुछ कलेक्शन करने हैं तो आप कर सकते हैं। और ये वही लोग कर सकते हैं जो पूर्व में आयोजित लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में उपस्थित रहे थे और भर्ती से संबंधित आयु, आरक्षण, शैक्षणिक योग्यता और अन्य सभी शर्तें 3 फरवरी 2021 को जारी मूल विज्ञापन तथा 7 जून 2021 को जारी शुद्धि पत्र के अनुसार ही लागू रहेगी। और आयोग के अनुसार अभ्यर्थी शनिवार से लेकर के मतलब 16 तारीख से लेकर के 30 मई तक आवेदन पत्रों में जो है संशोधन कर सकते हैं। इस दौरान आप अभ्यर्थी अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पत्राचार का पता अपडेट कर पाएंगे। यदि किसी ने SSO आईडी भी बदल दी है तो वो भी फेच एप्लीकेशन वाले मोड को यूज़ करके, उसे यूज़ करके सारी जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है वो नई वाली SSO आईडी पर भी लेकर आ सकते हैं, उस पर भी अपडेट इजीली हो सकती है।

और आयोग के अनुसार अभ्यर्थी शनिवार से लेकर के मतलब 16 तारीख से लेकर के 30 मई तक आवेदन पत्रों में जो है संशोधन कर सकते हैं। इस दौरान आप अभ्यर्थी अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पत्राचार का पता अपडेट कर पाएंगे। यदि किसी ने SSO आईडी भी बदल दी है तो वो भी फेच एप्लीकेशन वाले मोड को यूज़ करके उसे यूज़ करके सारी जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है वो नई वाली SSO आईडी पर भी लेकर आ सकते हैं, उस पर भी अपडेट ईजिली हो सकती है। और अगर आपको किसी भी चीज़ में संशोधन नहीं करना है फिर भी आपको KYC जो है वो करवाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। उसमें उसके लिए आपको अपना लाइव फ़ोटो, अपने सिग्नेचर और अपने फिंगरप्रिंट्स यानी कि अपने अंगूठे के जो निशान है वो सबमिट करवाने पड़ेंगे। अगर आपको संशोधन नहीं भी करवाना है फिर भी KYC करवाना सबसे इम्पॉर्टेंट यानी कि सबसे ज़रूरी ये चीज़ रहेगी। और अगेन जो है ये परीक्षा 20 सितंबर को होने वाली इसकी डेट आ चुकी है, तो आप जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं और जितने लोग भी अभी तक एप्लीकेशन में संशोधन नहीं करवा पाए हैं और उनको अगर लग रहा है कि करवाना बहुत ज़रूरी है तो दिस इज़ योर टाइम, अभी आप करवा सकते हैं। 30 मई तक ये जो है वेबसाइट, ये जो ऑप्शन है खुला रहेगा। और इसके अलावा अगर आपको संशोधन नहीं भी करवाना है फिर भी KYC करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।

0: मोबाइल बदला, लैपटॉप बदला, लेकिन क्या कभी सोचा कि आखिर ये पुराने गैजेट आखिर जाते कहाँ हैं? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उसी कचरे की जो दिखता तो आधुनिक है लेकिन हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती बन चुका है। जी हाँ, वो है ई वेस्ट। आज के इस इलेक्ट्रॉनिक ज़माने में जहाँ हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं वहाँ ई वेस्ट का भी खतरा बढ़ जाता है। रोज़ के जीवन में काम आने वाले डिवाइस, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, मेडिकल मशीनरी, ये सब ई वेस्ट ही तो हैं। आज के टाइम में जब हम ई वेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहीं आज के टाइम में रीसाइक्लिंग प्लांट भी हैं।
1: बिल्कुल, और इन सब के ना आसान उपाय ये है कि जो पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं उन्हें हम अपने नज़दीकी ई वेस्ट संग्रह केंद्र में जमा करवा सकते हैं, या फिर जो सामान हमारे यूज़ नहीं आ रहा है, जो लग रहा है कि घर में ऐसे ही पड़ा है, वो किसी ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं जिसके वो काम आ जाए। या फिर जो है बहुत सारी ड्राइव्स होती है ई वेस्ट को लेकर के, है ना, जो तो हम उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। वहाँ से भी अपने जो पुराने घर में जो ख़राब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो उस ड्राइव में जाकर के हम सबमिट करवा सकते हैं। या फिर जो है ई वेस्ट को कई लोग, है ना प्रज्ञा, जला देते हैं, सोचते हैं कि ठीक है इनको जला देते हैं, इसके अंदर से जो कॉपर निकलेगा वो हम कबाड़ी में बेच देंगे, ऐसा कुछ कर लेंगे। लेकिन ये चीज़ हमें बिल्कुल खुद से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बारी कुछ ऐसे केमिकल्स उनके अंदर होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जहरीली गैस जो है वो छोड़ते हैं और एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए वो बहुत हार्मफुल होती है।
0: तो दोस्तों, जो आज का टाइम है वो तकनीक का टाइम है। ये हमारी ज़िंदगी को आसान तो बनाता है लेकिन इसका सही निपटान भी हमारी जिम्मेदारी है। तो आज का युवा क्या कर सकता है? आज का युवा जो है वो पढ़ा लिखा है, तो ऐसे में ई वेस्ट के प्रति जागरूक होना उसकी जिम्मेदारी बन जाती है।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा पसंद कार्यक्रम युवाणी, और समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। उम्मीद करते हैं कि आज की जो भी चर्चा हमारे बीच हुई कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। फिलहाल आपके साथ मैं था, आपका रेडियो रागी रोहित, और मेरे साथ थी
1: आपके रेडियो साथी प्रज्ञा
0: और
1: अग्रवाल।
0: आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति करी थी राजेश लाम रोड ने।
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। 6 बजने वाले हैं। अब समाचार दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
3: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया और मदर टेरेसा की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
3: रोजगार मेले में आज 51,000 से भी अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। श्री गोयल ने कहा कि 33,600 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन वाली भारत औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घनमीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर हो गई है,

0: Rustan Serkulov 3-2 to book his place in the final. He will now take on Aybek Atbekov of Kazakhstan in the gold medal clash. In the 67-kilogram category, Sagar Singh registered a commanding 4-0 victory over Saudi Arabia's Munteer Abdullah Ejandu in the semi-final. And with that, we end this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में पहले सुनिए हमारी आज के सभा के शेष रहे कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। आज रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। दिल्ली से ही रात 9:30 बजे हम रिले करेंगे राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती। फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत कार्यक्रम में आज रात 8 बजे। ग्रामीण श्रोताओं के लिए चौपाल सजेगी हमेशा की तरह आज शाम 7 बजे। सीमाड़ी रिगूंज कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 7:30 बजे। पंकज उदास की गाई गजलें सुनिएगा सुगम संगीत कार्यक्रम में आज रात 9:15 बजे।

फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत कार्यक्रम में। फिल्म संगीत कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे। कल हमारी सभा के प्रारंभ में सवेरे 6:45 पर, उसके बाद में सवेरे 11 बजे, और फिल्म संगीत कार्यक्रम आप दोपहर 2:30 बजे भी सुन सकते हैं, और शाम की सभा में हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत रात 8 बजे। हमारा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार आप सुना करते हैं रोज सवेरे 8:30 बजे से। कल इस कार्यक्रम में सुनिएगा इतिहास में आज का दिन, सप्ताह विशेष, मेहमान का रविवार। इसमें जोधपुर की एक कोई खास शख्सियत से वीकेंड दिनचर्या पर हम बातचीत करते हैं, उसके अलावा खास बात और काम की बात के साथ में सांस्कृतिक समाचार और खेल खबरें। बच्चों के लिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम चुनमुन हम प्रसारित करेंगे कल सवेरे 10 बजे।

सुगम संगीत कार्यक्रम में गजल सुनिएगा सवेरे 10:30 बजे। सुगम संगीत कार्यक्रम हम आपको दिन में 12:30 बजे भी सुनाएंगे। किसान भाइयों के लिए कृषि संबंधी सुझावों का कार्यक्रम कृषि जगत होगा कल दिन में 1:05 पर। नारी वाटिका कार्यक्रम हम आपके लिए

लेकर आएंगे कल दिन में 1:15 बजे। युवा श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी हम लेकर आते हैं रोज शाम 5 बजे। चौपाल शस्ती है रोज शाम 7 बजे और सीमाडेरी गूंज कार्यक्रम भी हम रोज शाम 7:30 बजे आपके लिए प्रसारित करते हैं। ये था कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है देशगान।

0: देशगान अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है। 6:20 होने वाले हैं। अब संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21वें आजीविका मेल के अद्य प्रशासनस्य विभिन्न विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तेभ्य 150,000 युवकेभ्य नवनियुक्तिपत्राणि प्रदत्तानि। बिहार प्रशासनेन घोषितं यत् आगामिषु पञ्चवर्षेषु राज्ये 100,000 शिक्षकाणां नियुक्तिः भविष्यति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद इत्यनेन द्वादशी कक्षायाः वार्षिक परीक्षायाः उत्तर पुस्तिकानां प्रतिलिपिं प्राप्तुम् आवेदनस्य अन्तिमा तिथि एकदिवस पर्यन्तं वर्धिता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा अमेरिका देशस्य विदेश मंत्री मार्को रूबियो च भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक संधिं सुदृढ़ीतुं चर्चां कृतवन्तौ। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो देशे इबोला संक्रमणस्य बुंदीबुग्यो प्रभेदस्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटं राष्ट्रीय स्तरे उच्चतः अतीव उच्चस्तरे वर्धितम्। अपि च आईपीएल 20-20 क्रिकेट क्रीडा स्पर्धायां अद्य लखनऊ सुपर जायंट्स पंजाब किंग्स दलयो मध्ये लखनऊ नगरे स्पर्धा भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21वें आजीविका मेल के अद्य प्रशासनस्य विभिन्न विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तेभ्य 150,000 युवकेभ्य नियुक्तिपत्राणि प्रदत्तानि। एतत् आजीविका मेलकं सम्पूर्णे देशे 47 विभिन्न स्थानेषु आयोजितः आसीत्। संपूर्ण देशात् चयनिताः एते नूतन कर्मचारिणः रेल मंत्रालये, गृह मंत्रालये, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालये, उच्च शिक्षा विभागे च इत्यादिषु विभिन्न मंत्रालयेषु विभागेषु च स्वसेवाः प्रदास्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् प्रशासनिक नियुक्तयः नागरिकाणां जीवनं श्रेष्ठतरं सुलभतरं च कर्तुं महत्वपूर्णं साधनम् अस्ति। प्रधानमंत्री अवदत् यत् राष्ट्रेण स्वीय कर्मयोगिषु विश्वासः प्रदर्शितः अस्ति। अधुना तेषां दायित्वमस्ति यत् ते स्वीयया निष्ठया सदाचारेण दैनिक कार्येण च तस्य विश्वासस्य मानं रक्षेयुः।
2: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: श्री मोदी अवदत् यत् सम्पूर्णः विश्वः भारतस्य विकास यात्रायां सम्मिलितुं भवितुम् उत्सुकः अस्ति। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् प्रत्येकः भारतीयः विकसित भारतस्य निर्माणाय संकल्पेन सह कार्यं करोति। अस्य लक्ष्यस्य प्राप्तये राष्ट्रं बहुषु क्षेत्रेषु निवेशं करोति। प्रधानमन्त्री यूनां कृते नूतन वृत्त्यावसाराणां सृजनं क्रियमाणम् इति विशेषरूपेण अवदत्।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: श्री मोदी अग्रे उक्तवान् यत् प्रत्येकः भारतीयः 47-20,000 भारतं विकसित भारतं कर्तुं दृढ़ संकल्पेन कार्यं करोति।
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश

0: यतः प्रायः पञ्चाशदधिकसप्तशतसन्दिग्धप्रकरणानि सप्तसप्त्यधिकैकशतसन्दिग्धमृत्यवः च पञ्जीकृताः सन्ति। आईपीएल विंशतिः प्रतिविंशति क्रिकेट क्रीडा स्पर्धायाम् अद्य लखनऊ सुपर जायंट्स पंजाब किंग्स दलयो मध्ये लखनऊ नगरे स्पर्धा भविष्यति। स्पर्धेयं सार्धसप्तवादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। 6:30 हुए। अब हिंदी में प्रादेशिक समाचार, फिर जिले की चिट्ठी और 6:50 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम। तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जैसलमेर के दांडेवाला फील्ड में नए गैस भंडार का पता लगाया। प्रदेश में पानी बचाने की मुहिम को लेकर सोमवार से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू होगा और राज्य के पूर्वी हिस्सों में आंधी के साथ हल्की बारिश से गर्मी से मामूली राहत। कल से तापमान में फिर से बढ़ोतरी के आसार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे इस भरोसे को और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। भारत विश्व के कई देशों के साथ साझेदारी कर रहा है, जिसका मकसद देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाना है।
3: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: उन्होंने नवनियुक्त कर्मचारियों को आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि इससे उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को आसानी से समझने में मदद मिलेगी। देश में 47 स्थानों पर इस मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी विभागों और संगठनों के नियुक्ति पत्र सौंपे गए। पूरे देश से चुने गए ये नए कर्मचारी रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा उच्च शिक्षा विभाग जैसे कई अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में अपनी रेल सेवाएं देंगे। प्रदेश में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर में रोजगार मेले आयोजित किए गए। इनमें 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में शिरकत की। सभा को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने नव नियुक्त युवाओं से राष्ट्र निर्माण में पूरे मन से योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। रेलवे में 1,60,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है, जिसमें 4 करोड़ से अधिक उम्मीदवार भाग ले रहे हैं। जोधपुर में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने युवाओं से सरकारी सेवा को राष्ट्र सेवा का माध्यम मानते हुए अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की भावना से काम करने को कहा।
4: हमारी ऊर्जा का हर एक कण राष्ट्र विकसित हो, इसके लिए समर्पित होना चाहिए, क्योंकि हम सौभाग्यशाली हैं।

0: मित्रों, जब कोई देश, कोई समाज इस तरह के परिवर्तन के दौर से गुजरता है तब उसका हर घटक की अपनी एक उत्तरदायित्व होता है, लेकिन जो लोग सक्षम होते हैं उनका दायित्व उतना ही बड़ा होता है। और क्योंकि आज से आप सब लोग सरकार का हिस्सा बनकर के सक्षम हो रहे हैं, ये मानते हुए कि ये शक्ति जो मिली है ये शक्ति ट्रांसफॉर्मेशन का एक टूल है, इस दृष्टिकोण से हम सबको काम करने की आवश्यकता है।
1: अजमेर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने 258 और बीकानेर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 281 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जैसलमेर के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथले सानू फॉर्मेशन से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में मदद मिलेगी और भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने में गति मिलेगी। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और पेट्रोल तथा डीजल की आपूर्ति स्थिर है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने से अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले कुछ दुकानों तक ही सीमित हैं। 1 मई से 22 मई के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। पेट्रोल बिक्री में 14%, वहीं डीजल बिक्री में करीब 18% की बढ़ोतरी हुई है। इस बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी की गई है। पिछले 10 दिन में तेल के दाम तीसरी बार बढ़ाए गए हैं। केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। नए अधिनियम का उद्देश्य वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करना है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में सोमवार से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू होगा। 5 जून तक चलने वाले इस अभियान के दौरान जल संरक्षण से संबंधित कार्य किए जाएंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने अभियान की तैयारियों को लेकर आज सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने जल संरक्षण को जन भागीदारी से जोड़ते हुए इसे जन आंदोलन बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अभियान की ग्राम पंचायत स्तर तक गतिविधियों की मॉनिटरिंग मोबाइल ऐप और रियल टाइम रिपोर्टिंग से की जाएगी। इस अभियान को लेकर विभिन्न जिलों में भी तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज सवाई माधोपुर में जिला कलेक्टर कानाराम ने ग्रामीण विकास, डांग और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने जल संरक्षण, आवास, स्वच्छता और विकास कार्यों को तय समय में और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे करने के निर्देश दिए। प्रदेश में जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के लिए विलायती बबूल का उन्मूलन किया जाएगा। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को इसके लिए योजना बनाकर काम करने को कहा है। आज जयपुर में विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि विलायती बबूल के उन्मूलन से पौधों की स्थानीय प्रजातियों को संरक्षण मिलेगा और पर्यावरण संतुलन मजबूत होगा। श्री दिलावर ने बबूल की लकड़ी से कोयला बनाने के लिए योजना बनाने को भी कहा। गौरतलब है कि विलायती बबूल अन्य वनस्पतियों को पनपने नहीं देता है। इसकी जड़ें 10 मीटर तक फैली होती हैं और यह अत्यधिक पानी सोखता है। 21 जून को फिर से आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा 2026 को पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रदेश में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज परीक्षा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को मिलकर परीक्षा प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से कराने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने संवेदनशील परीक्षा केंद्रों और जिलों को विशेष

0: निगरानी रखने, पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने तथा परीक्षा केंद्रों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने को कहा। ये परीक्षा राज्य में 611 परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। इसमें 2 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। इस बीच मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रस्तावित बीकानेर यात्रा की तैयारियों को लेकर भी समीक्षा की। मुख्य सचिव ने सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। और अब मौसम। प्रदेश में आज मौसम में आए बदलाव से पूर्वी इलाकों के कुछ स्थानों पर आंधी के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से मामूली राहत मिली है। आज दोपहर बाद राजधानी जयपुर सहित सवाईमाधोपुर, जयपुर, टोंक, दौसा, करौली और भरतपुर, कोटा, बूंदी जिलों में बादल छाए रहे और धूल भरी आंधी चली। कुछ जगहों पर बूंदाबांदी तो कहीं कहीं हल्की बरसात हुई। दूसरी ओर राज्य के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में तेज गर्मी का असर रहा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है। इसके साथ ही इस दौरान कई जिलों में लू चलने के भी आसार हैं। महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर डीग पुलिस की कालिका पेट्रोलिंग यूनिट सड़कों, बाजारों और कोचिंग सेंटरों के आसपास मंचलों पर शिकंजा कस रही हैं। पुलिस अधीक्षक कामले शरण गोपीनाथ ने बताया कि ऑपरेशन डिकॉय के तहत महिला पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में रहकर लड़कियों को परेशान करने वाले मंचलों पर नजर रख रही हैं। कॉलेज छात्रा पूजा ने बताया कि कॉलेज जाते हुए वे अब अधिक सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम। तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जैसलमेर के दांडेवाला फील्ड में नए गैस भंडार का पता लगाया। प्रदेश में पानी बचाने की मुहिम को लेकर सोमवार से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू होगा और राज्य के पूर्वी हिस्सों में आंधी के साथ हल्की बारिश से गर्मी से मामूली राहत। कल से तापमान में फिर से बढ़ोतरी के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से धौलपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख गौरव शर्मा ने तैयार किया है। धौलपुर जिले की चिट्ठी में बात करेंगे हालिया खबरों, गतिविधियों और जागरूकता कार्यक्रमों के साथ वन्य जीवों की। इन सब का ब्यौरा आप तक चिट्ठी में पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बालिकाओं की एक उपलब्धि की। जिले की विष्णोदा और मनिया की महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों की बालिकाओं ने छत्तीसगढ़ में हुई राष्ट्रीय जंबूरी में धौलपुर का नाम रोशन किया है। उन्होंने रंगोली प्रतियोगिता में देश में पहला स्थान प्राप्त किया, साथ ही स्टेट गेट प्रतियोगिता में भी पहले नंबर पर रही। इन बालिकाओं ने राष्ट्रीय एकता और महिला सशक्तिकरण का संदेश देती हुई शानदार रंगोलियां बनाकर ये उपलब्धियां हासिल की। जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी की अध्यक्षता में बीते दिनों जनसुनवाई की गई। इस दौरान जमाबंदी में नाम सही करवाने, अतिक्रमण हटवाने और पीएम सम्मान किसान निधि की राशि दिलवाने तथा राजस्व सहित कई प्रकरण प्राप्त हुए। इनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। वहीं जिला जन अभाव अभियोग सतर्कता समिति में दर्ज 2 प्रकरणों का मौके पर ही निपटारा किया गया। जिले में भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए नगर परिषद की ओर से 7 स्थानों पर विश्राम स्थल बनाए गए हैं। इनमें पीने के ठंडे पानी की व्यवस्था भी की गई है। ये सभी आश्रय स्थल भीड़भाड़ वाले इलाकों में बनाए गए हैं, जिससे राहगीर, बुजुर्ग और महिलाएं जरूरत पड़ने पर राहत हासिल कर सके। वहीं बढ़ती गर्मी के कारण जिला चिकित्सालय में भी मौसमी बीमारियों के मरीजों की तादाद में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में लू और तापघात के रोगियों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। जिले में आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर पिछले दिनों स्वैच्छिक ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान प्रशासन की अपील पर लोगों ने 15 मिनट के लिए बिजली बंद रखी। इससे पहले प्रशासन की ओर से सभी लोगों से मॉक ड्रिल के दौरान घरों में रहने को कहा गया। मॉक ड्रिल से पहले संबंधित थानों को इस प्रक्रिया की जानकारी दी गई। पुलिस

0: स्थापना दिवस के मौके पर धौलपुर में रिजर्व पुलिस लाइन में कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने परेड की सलामी ली और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। इस दौरान शहीद वीरांगनाओं को भी नवाजा गया। जिला पुलिस और आरएसी धौलपुर छठी बटालियन की ओर से संडे ऑन साइकिल अभियान रखा गया है। इसके जरिए पुलिस सेहत और सुरक्षा का संदेश देगी। इस दौरान योग सत्र भी होगा। पुलिस ने इस विशेष कार्यक्रम में आमजन और इच्छुक नागरिकों के साथ ही विद्यार्थियों से ज्यादा भागीदारी की अपील की है। जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में अब महिला प्रताड़ना और पोक्सो के झूठे मुकदमे दर्ज करवाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि इस साल अप्रैल महीने तक जिले में महिला अत्याचार के करीब 250 प्रकरण प्राप्त हुए। इनमें से 86 मामले जांच में झूठे पाए गए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि झूठी एफआईआर और फर्जी आरोप लगाने के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जिले के सीएमएचओ डॉ धर्म सिंह मीणा ने निजी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान नियमों की अनदेखी पाए जाने पर 12 अस्पतालों का पंजीकरण 5 दिन के लिए निलंबित किया गया। वहीं 2 चिकित्सालयों का पंजीकरण स्थायी रूप से निरस्त कर दिया गया। सीएमएचओ ने बताया कि निजी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं को पारदर्शी, जवाबदेह और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से ये कार्रवाई की गई है। जयपुर विद्युत वितरण निगम की ओर से धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में बिजली चोरी और बकाया बिलों की वसूली के लिए खास अभियान चलाया गया। इसके तहत राजाखेड़ा और मरीना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध बिजली उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इस दौरान 15 ट्रांसफार्मर जब्त किए गए। जिले में जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लोगों से यातायात नियमों की पालना की अपील की जा रही है। इसी कड़ी में जन सहयोग से हेलमेट वितरित किए गए। वहीं बाइक रैली निकालकर लोगों को सड़क सुरक्षा का संदेश दिया गया। जिले में अवैध खनन की रोकथाम के लिए तकनीक का सहारा लिया जाएगा। खनन विभाग ने धौलपुर जिले में 16 संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। धौलपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो सरकारी नौकरियां जनता री जिंदगी बेहतर और आसान बनावन रो खास जरियो। तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसलमेर जिला रा दांडेवाला फील्ड माए गैस रा नुआ भंडार रो पतो लगायो। प्रदेश माए पानी बचावन री मुहिम रा तेज सोमवार ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू करियो जावेला। और राज्य रा उगनी हल्का माए आंधी और हल्की बारिश हूँ गर्मियों थोड़ी साता मिली। कालू पारो ओजू चढ़वारा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि सरकारी नौकरियां लोगों की जिंदगी बेहतर और आसान बनावन रो खास जरियो है। वह आज राखी जिया 19वां रोजगार मेला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बोल रहा है। प्रधानमंत्री कहो कि देश कर्म योगिया माथे भरोसो जतायो है और इनने मजबूत बनावन री जिम्मेदारी कर्म योगिया री है। श्री मोदी कहो कि पूरी दुनिया भारत री विकास यात्रा रो हिस्सो बनबारी मर्जी रखे है। प्रधानमंत्री कहो कि भारत दुनिया रा कई देशा सागे साझेदारी कर रियो है जिन रो मकसद नौजवाना ने नौकरी धंधा रा मौका और दुनिया रो अनुभव दिलावनो है।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री नवी नौकरी लागिया कर्मचारियों ने आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म

बत्तो इस्तेमाल करण सारू कहो। आखा देश माए 47 ठोड़ा रोजगार मेला लगाईचिया। इन दौरान 51,000 बत्ता मोटियारा ने सरकारी महकमा और संगठन माए नौकरी लगन रा कागजात सौंपीचिया। प्रदेश माई जयपुर जोधपुर बीकानेर और अजमेर माए रोजगार मेला लगार 1,100 बत्ता नौजवाना ने नौकरी लगन रा

0: तादाद में पुलिस रा जवान तैनात करण बाबती कहो। आ परीक्षा राज्य में 611 परीक्षा केन्द्र में थे। दोपहर पाछे दो सिंजा 5 बजा ताई ली जावेला। नीट री ई परीक्षा में 2 लाख बत्ता विद्यार्थियों रा शामिल फेवन रा आसार है। मुख्य सचिव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रा बीकानेर रा प्रस्तावित दौरा री तैयारियां रो जायजो लेवन सारू ही अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। वे सरहदी जिला में हिफाजत और निगरानी री व्यवस्था और असरदार बनावन रा हुकम दीना। डीग माए महिलावां और टाबरियां री हिफाजत सारू पुलिस री कालिका पेट्रोलिंग यूनिट सड़कां बाजारां और कोचिंग सेंटर कने खास निगरानी राख रही है। एसपी कांबले शरण गोपीनाथ बतायो के लड़कियां ने परेशान करन वाला रे खिलाफ ऑपरेशन डिकॉय रातेत महिला पुलिस सादा कपड़ा पहर कार्रवाई कर रही है। वे बतायो के बीएनएसएस री धारा 170 रातेत बिना वारंट गिरफ्तारियां ही करी जा रही है।
1: जिले में जो कालिका पेट्रोलिंग जो टीम है वो अलग अलग तरीके से कार्रवाई कर रही है। जैसे बेसिक हेल्पलाइन जो होती है 1090 या 1098 1930 इस तरह से अलग अलग जो हेल्पलाइन है उसका अवेयरनेस जो है वो लोगों तक पहुंचा देना। साथ में जो सेल्फ डिफेंस है आत्मरक्षा का जो ट्रेनिंग है उसको भी अलग अलग स्टूडेंट्स को स्कूल्स में या कॉलेजेस में जाकर उनको देना, ये भी काम उनके द्वारा किया जाता है। राष्ट्र का ऑब्वियस सिटीजन ऐप है जैसे लगभग हर महीने अगर आप देखोगे तो एवरेजन जो है वो 600 जो राजकोप एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करने का जो टारगेट है वो कालिका पेट्रोलिंग टीम ले रही है और उसको पूरा भी कर रही है।
0: कॉलेज छात्रा पूजा बतायो के पुलिस री ओर खुदरी हिफाजत री सिखावन देवनु कॉलेज जाते वगत व बत्ती हिफाजत महसूस कर रहे है।
2: यहाँ पर काल का यूनिट है वो हमको गाइड करती है कि हमको जैसे घर से बाहर निकलते टाइम या जो कमेंटबाजी करते हैं छेड़खानी करते हैं उनको कैसे पुलिस तक उनकी सूचना देनी है उसके लिए हमको एक ऐप भी बताया गया है राजकोप ऐप, उसके थ्रू हम उनकी शिकायत कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर दे रखा है 1090 जिससे हम बाहर निकलते हैं तो अगर कोई भी दिक्कत होती तो हम उसके थ्रू पुलिस को शिकायत कर सकते हैं।
0: अरे मौसम प्रदेश रा उगनी हल्का माए आज आंधी सागे भी हल्की बारिश हूं गर्मियों थोड़ी सत्ता मिली। दोपहर पाछे सवाई माधोपुर जयपुर टोंक दौसा करौली भरतपुर कोटा और बूंदी समेत कई जिला माए बादला मंडिया रहा और आंधी चली। कठे कठे छांटो छिड़को भी हो तो कठे कठे हल्की बारिश हुई। दूजी कानी राज्य रा आतूणी और उत्तराध हल्का माए तेज गर्मी रही। मौसम विभाग रे मुजब आवता 2-3 दिन पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई और चढ़वा रा आसार है जदक कई छोड़ा लू बाजन री शंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित कराया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय 31 मई दीतवार ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। इसारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 29 मई ताई राय दे सको हो। नंबर जो सुन ले रहा सा 1800117800। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक कर फेरू सुन ले रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो सरकारी नौकरियां जनतारी जिंदगी बेहतर और आसान बनावन रो खास जरियो। तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसलमेर जिला रा दांडेवाला फील्ड माए गैस रा नुआ भंडार रो पतो लगायो। प्रदेश माए पानी बचावन री मुहिम रा तेत सोमवार ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू करियो चावेला। और राज्य उगनी हल्का माए आंधी और हल्की बारिश हूँ गर्मियों थोड़ी सत्ता मिली। काल पारो ओजू चढ़वारा आसार। ऐसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। नमस्कार।
3: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चौपाल।

0: चौपाल कार्यक्रम सुनने वाला सगला हेतालु श्रोताओं ने घने मान सो गुरविंदर बिश्नोई
1: और किरण रा राम राम।
0: किरण जी देखो छुट्टियों रो टाइम है, कई परीक्षाओं और जगह परिणाम भी आ गया है, कई आरी आउंडी तैयारी है। खास तौर माते अगर आप देखा दसवीं और बारहवीं जगह ने आप बोर्ड री परीक्षा के मा तो बोर्ड री परीक्षाओं में चूंकि गांव ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां है वे अच्छा नंबर लावे बने वास्ते सरकार कई तरह की योजना में की आगे री पढ़ाई जकी है वह बाधित नहीं होवे और आज की वह बच्ची पढ़ाई करी है अच्छा नंबर लाई है तो उन्हें भी प्रोत्साहन मिले।

0: बिल्कुल सा गुरविंदर जी, अपने चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, एक तो है कृषि और एक है बालिका शिक्षा। इरे मायने बहुत तरह री और बहुत ज्यादा योजना वहां जो किसान सारू भी है और बालिकाओं वाले सारू भी है। और वो कारण नहीं वेणो चाहिए कि भाई कोई बालिका के इन कारण से पढ़ नहीं पा रही है कि फीस नहीं दे पा रहा है, चाहे वह छोटा स्तर में प्राथमिक स्तर या पढ़ाई कर रहा हो, चाहे माध्यमिक में कर रहा हो या कोई प्रोफेशनल डिग्री कर रहा हो, उच्चतम लेवल तक तरह तरह री सरकारी योजना वहां है जो आप में आप सहयोग कर सके।
1: देखो कि राज्य सरकार चाहे आपानी और चाहे पड़ोसी राज्य हो, बच्ची रे जन्म रे टेमी जन्म लेन सरकार।

0: उए में मदद करें कि भाई 25 जन्म की तो हर सरकार री आप री अलग अलग योजना है। कटई 7,500 रुपया है, कटई पहले साल में 12,500 है और जो 18 साल री हुए तो 1,25,000 है। ऐ तो देखो सामाजिक सहायता तो सरकार करे ही करे, लेकिन उन बच्ची ने आगे बढ़न में कटई बाधा नहीं हुए। वह पढ़ाई लिखाई करनी चाहे उए माता करने मान लो रुपया की कमी है तो वह कटई रुक नहीं चाहे। इन वास्ते हर कदम में आर्थिक सहायता उपलब्ध है, चाहे वह किणी वर्ग भी आ नहीं है कि भाई अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग री छात्राओं नहीं खाली प्रोत्साहन है। हर जो बीपीएल है, गरीब है, ईडब्ल्यूएस है, हर वर्ग री बालिका ने आगे बढ़न रा पूर्ण अवसर है। उन्हें कठी कोई एक रुपये री भी जरूरत नहीं है, चाहे 12वीं तक री पढ़ाई हो, स्कूल हो, किताब हो, कॉपी हो, ड्रेस हो। और तो और किरण जी हमें देखो स्कूल ने साइकिल भी वितरित हुए, प्रत्येक लड़की जी स्कूल आवे भाई साइकिल दो। अगर मान लो 75% ज्यादा नंबर लावे तो उन्हें अलग तरह प्रोत्साहन इनाम दिए जावे। तो सरकार लगातार प्रयास ओ करे कि बच्चियां पढ़े लिखे। पढ़ी लिखी लड़की रोशनी है घर की, अगर थानी लड़की नहीं पढ़ी तो हम लोग थारे घर में है अंधेरो। अब भाई जिस घर में लाइट रो कनेक्शन है, एक घर है वे में लाइट रो कनेक्शन नहीं है, चिमनी देखे चिमनी काम चलावे, इतो फर्क थारे घर में थारे परिवार में बढ़ जाला। इन वास्ते हाल भी टेम है, सावधान रहो, सचेत रहो और आपरी बच्चिया ने पढ़ाओ लिखाओ और पगा माते खड़ी कर कामयाब बनाओ।
1: बिल्कुल सा गुरविंदर जी, बच्चिया ने पढ़ाओ लिखाओ और बच्चिया ने आगे बढ़ाओ सारू। सरकार भी जो है कई तरह की योजना वा चलावे है। इमें एक जो महत्वपूर्ण योजना है वह है कालीबाई भील मेगावी छात्रा स्कूटी योजना। 12वीं में यदि कोई छात्रा अच्छा अंक लावे तो 30,000 छात्राओं ने जो मुफ्त स्कूटी रिया योजना है। राजस्थान सरकार जो है कालीबाई भील मेगावी छात्रा स्कूटी योजना बालिका शिक्षा ने प्रोत्साहन रेसारू आ जो है योजना शुरू करी है। आ योजना 2019 में शुरू करी है। इनमें 12वीं कक्षा में यदि अच्छा अंक जो बालिका लावेला तो 30,000 छात्रा ने मुफ्त में स्कूटी दी जावेला, ताकि वह आसानी से कॉलेज आ जा सके और आपरी पढ़ाई ने जारी रख सके।

0: देखो डूंगरपुरी एक वीरांगना हा कालीबाई भील उहां रे सम्मान में आज जो योजना है शुरू करी और इनो उद्देश्य खासकर जो बालिका है वहां ने प्रेरित करनो आगे बढ़न रे सारू उच्च शिक्षा लेवन रे सारू और आत्मनिर्भर बढ़न रे सारू। पात्रता शर्तारी अगर आप बात करा गुरविंदर जी तो योजना रो लाभ जो है वो राजस्थान रे निवासी जो छात्रा वेला उन्हें मिलेला जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करी वे और चयन रे सारू RBSE बोर्ड री छात्रा ने करीब कम से कम जो है 65% और CBSE यदि बोर्ड है तो 75% अंक आपने प्राप्त करना जरूरी है। साथ ही जो छात्रा कॉलेज में नियमित जो आप प्रवेश लोला वो लेना आप रो जरूरी है और इरे मायने इन योजना रे तहत जो है छात्रा ने फ्री स्कूटी दी जावेला जीरो रजिस्ट्रेशन उरे खुद रे नाम होवेला एक साल रो जो इरो बीमो वेला 5 साल रो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हेलमेट और एक बार पेट्रोल री सुविधा भी सरकार देवेला स्कूटी बिलन रे बाद 5 साल तक आप इन्हें बेच नहीं सको। अगर कोई छात्रा इन मुझे आवेदन करना चाहे तो ऑनलाइन आवेदन करना पड़े इरे सारू शिक्षा या अल्पसंख्यक विभाग री वेबसाइट माते आप फॉर्म भर और जो दस्तावेज में लिखोड़ा वे आपने अपलोड करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल देखो कि भाई समाज कल्याण जो को है वो चहुमुखी होनो चीज है और हर क्षेत्र में सरकार जो को है वो सहायता प्रदान करे। अब देखो किरण जी पहला मान लो कोई ट्यूबवेल खोदा वे बिजली रे कनेक्शन उड़ीक रखे तो 5-5, 10-10 साल तक उड़ीक रखे। अब कई जगह ऐडा क्षेत्र है जटे वो जो कहीं वेटिंग लिस्ट इतनी बनी हुई है कि 10 साल में ही ट्यूबवेल रे माते बिजली रो कनेक्शन रो नंबर नहीं आवे जितने पानी नीचे जा रो। तो अब सरकार एक ऐडी सुविधा करी है कि भाई वो ने कुसुम योजना रे अंतर्गत जोड़ दी। कुसुम योजना किसान वास्ते छोटा सोलर प्लांट लगाउन री योजना ही तो वह ऑनलाइन उरा फार्म भरीजिया रहा मैं कुसुम योजना रे अंतर्गत सोलर जका छोटा पार्क है वह लाग रिया है। उरे साथे साथे सरकार एक छोटो सो बदलाव ओ करियो है कि भाई जो को किसान है और वो बिजली रो कनेक्शन लेनी चाहे तो वो कुसुम योजना रे अंतर्गत आप रो खुद रो सोलर रो प्लांट लगा दे। खुद रे वास्ते बिजली बने जकी तो है ही है बाकी जकी ज्यादा बिजली है तो वो सरकार खरीद ले। क्यों रो मतलब है कि इन तरह रा समरसीबल पंप और कुसुम जको जकी सोलर री प्लेटा इन सब रे मायने सब्सिडी है लगभग 90%। तो अगर आज आप ट्यूबवेल खोदार बिजली रो कनेक्शन लेनी चाहो तो उहेरी बजाय आप सोलर प्लेट वालो कनेक्शन लियो जिहु आपने फायदो है।
0: बिल्कुल सा गुरविंदर जी पीएम कुसुम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान केंद्र सरकारी एक योजना है। इरो उद्देश्य है किसाना ने सोलर पंप देनो खेती में बिजली और डीजल माते जो है निर्भरता कम करनी और अगर आप रे अतिरिक्त बिजली वे तो उनमें आप जो है आपने आयरो मौको भी मिले सोलर माध्यम से। इरे सारू जो किसान है

0: नीरज जी यूं है कि 60% तो मिले सेंट्रल गवर्नमेंट और 30% देवे स्टेट गवर्नमेंट।
1: अच्छा,
0: जो को किसान है वे ने तो खाली 10% ही देना पड़े।
1: बिल्कुल सर। और इरे सारू किसान जो है, किसान या उरी कोई संस्था है तो आपरी जमीन रे माते 500 किलोवाट या 2 मेगावाट तक सोलर प्लांट जो है लगा सके। अतिरिक्त बिजली वे तो राज्य सरकार डिस्कॉम में वे बेच सके। किसाना ने 3 BHP

0: योजना सोलर पंप विकल्प आप चुनो और आधार और रजिस्ट्रेशन कर दस्तावेज आपने जो भी मांगे वे अपलोड करना है। पंप क्षमता के अनुसार आपने खुद ने आवेदन करना है और सत्यापन और मंजूरी के बाद जो है कंपनी सोलर पंप आप रहते इंस्टॉल करेला।
1: बिल्कुल देखो कि हमें आप जरिए आप ट्यूबवेल में बिजली रे कनेक्शन री बाढ़ नहीं जो आप खुद आप सोलर प्लांट लगा लो। देखो किरण जी के लाल 20-30 साल में हर क्षेत्र में बदलाव आयो है, बदलाव आयो है अपनी धरा में, प्रकृति में, अपने जीवन में, चाल चलन में, पेड़ पौधा में है नी।
0: हाँ सर।
1: और जीव जंतु में, जीव जंतु रे महीने भी कई तरह की भ्रांतियां आएगी, कई तरह रा लोग हो चे के मैं राती मछली अगर पाल लू तो मैं लखपति हो जाऊं, कोई कहते नहीं मैं तो घर में और राख लू तो शांति आ जाऊं। इन तरह री वैचारिक जो की है बुराइया मानव सभ्यता रे शुरुआत लागी है और आज तक चल रही है। अरे भाई कोई जीव रे कोई जंतु रे पालन कोई भाग्य थोड़ी बदले, भाग्य तो बदले कर्म। अब देखो के लाला टाइम हो गया कछुआ है नी वे घर घर रे मायने ला होता। अरे भाई कछुओ तो देखो बड़ो उबेचर है, वे ने दो दो तरह री प्रकृति चाहिए, वो घर में पालन नालो थोड़ी है।
0: बिल्कुल
1: वो तो जंगला में विचरण करने नालो है, तालाबा रे किनारे आप भाई जीवन व्यापन करने नालो है, वे ने ते पकड़न घर में लिया और पच जांच हुए तो दिक्कत में आवे। इन वास्ते इन तरह की कोई धारणा उदाहरणा की कोई जीव जो है जंगली जीव पालना है तो पाल तो जीव पालो।
0: सही बात
1: भाई कुत्तो पालो, गाय पालो, बकरी पालो, भेड़ पालो, मिनी पालो, ऊंट पालो है, लेकिन जंगली जानवर थे घर में लार पालो या जंगली जीव ने घर में लिया सिर्फ इन वास्ते कि नहीं मारती हूँ पे आए तो भाई वे कठे नहीं आवे, वो एक अपराध है और इन तरह के आपराधिक गतिविधियों आपने रुकनो चाहिए।
0: बिल्कुल सर गुरविंदर जी बात आप कछुआरी करी तो आज विश्व कछुआ दिवस भी है और सिर्फ कछुआ ही नहीं बल्कि कोई भी यदि जो है जानवर है जो प्रजातियां है प्रकृति रे मायने है उन्हारे सबरी संरक्षण की जरूरत है। आप उन्हारे आवास ने नहीं छेड़ा, उन्हें शांति जीवन देवा, जिन प्रकार से आपने जीवन प्यारो है यारी भी एक जीवन जीवन की दिनचर्या है, एक माहौल है, एक पर्यावरण है, उन्हें बनाए रखा और शांति से यहाँ जीवन जीवन दा ताकि जो एक इको सिस्टम है वो सही ढंग से चलतो रहे और आपा भी सब जना सही ढंग से जो है रह सके।

0: कारण गुरविंदर जी घड़ी
1: बिल्कुल घड़ी इशारो कर रही है। किरण जी देखो प्रकृति और इवोल्यूशन रो कारनामो के कछुए रो जो कवच है एक कड़क कवच रे मायने एक जीव है जो को पानी में भी रहे जंगल में ही रहे समुद्र में भी रहे और आनो जो को समुद्री कछुआ है बाणो अगर जीवन चक्र रो विश्लेषण करे तो एड़ा आश्चर्यजनक आपने तथ्य हामे आवे है कि मिनक हो ची नहीं सके। मिनख ज्यादा बुद्धि वे हजारों किलोमीटर समुद्री यात्रा रो सफर तय कर एक निश्चित टापू माते आन बटे अंडा देवे और अंडा देन बे पाछा समुद्र में जा आपरा और जो अंडा जो कछुआ निकले बाने ने तो मार ने बाप की परिवार रो सारो नहीं वे सिर्फ एक चांदनी रात है उन चांदनी रात रे कने दौड़ है कि वो जितो जल्दी समुद्र मायने गयो उरो बचन रो जका चांस है वे बढ़ जावे। जो ही कछुआ रा बच्चा निकलन समुद्र हामे दौड़े तो भात भात रा जीव जका है बना वे भोजन बने उरे बावजूद भी करोड़ों री तादाद रहे कछुआ लाखों री तादाद में समुद्र में पुगे तो कौन रो मतलब है हर जीव रो आप रो एक इको सिस्टम है और ये सिस्टम ने अगर आप छेड़ा तो आप खुद हो वहाँ परेशान
0: बिल्कुल।
1: और हमें अतई गणी उगी इन कार्यक्रम रो भगत हो रही है पूरो तो चौपाल कार्यक्रम संपन्न करने सर्व आप रे साथी गुरविंदर विश्नोई
0: और किरण नदी राव सिख
1: राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 7:30 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज।

0: अरे हटो खोलो नवला बा, ओ नवला बा, अरे हड़के खोलो, अरे ओ डाचो भरे, अरे ओ डाचो भर ले हड़के करो,
1: अरे फाटे खुली है, बच गो आडो खोलो, आडो खोलो,
0: अरे ओ खाजी खाजी मन ते आडो तो खोलो
1: भाई, खाजी
0: अरे तो देखो सरी बारे आने
1: बारे आए, मैं आवे ना आवरो, मैं आवरो,
0: हेलो राम राम सा, राम राम सा,
1: राम राम, वो कौन ले नहीं
0: लो लो हड़के उतारो थे,
1: अरे वो बड़ा कौन उतारो, वो कौन गांव मार ले नहीं हो कहीं है,
0: अरे मैं गयो बहन पानी पहुने तालाब में थे, पानी हो कौन तालाब में उकड़ो और उल्टो पड़ियो उठे तालाब में,
1: ओ कहीं पड़ियो,
0: ओ कछुओ दिखे वो ना आपने
1: काच भी हो,
0: हाँ वो काच भी है ना
1: काश भी नेट कर ले नहीं हो भाई, ए हे हे हे भाई देखे हो तो इन पड़को घनो पड़े रे
0: पड़े ना बुला बा हाँ
1: तो के कौन हम लिए ये तो बात है यूं कर अटे नहीं आ कुंडी है
0: हाँ
1: इन कुंडी में छोड़ दे देखो तो अटे के कौन छोड़ घनो रह जाए
0: सर
1: पर इन खाड़म बदले के खाड़म दाने वाली बात भी गड़बड़ हो जी अरे भाई कमल देख तो एड़ा जीव ने नी लानो रे
0: अरे नवलाबा में लायो को नी और उठे पड़ी हो तावड़ा में आज कही है विश्व कछुआ दिवस है
1: ओ कछुआ दिवस को कछुआ पकड़ दी
0: हाँ ओ कही हर साल 23 महीने मनावे
1: इन मात दारे जज की जी को तो लिए अरे थे कहना हो रहे क्या

0: जन्मदिन मैंने लाया बात करे धक्को दे दे तो पाछो आगे नेक दे दो
1: तो
0: अरे मैं हिरका दे दो भाई तो आप ठंड मत लाली बात हमें ठा पड़ी यू कान जान कर तो है जी को बात बिल मैंने कस वक्ति को ले ना हो मार कर अरे भाई इन्हें आगे सोडिया देखता मारी बात
1: होने
0: हमारे कोई नहीं कोई कोई खबर पड़गी नहीं तो बस पुलिस आई फसे है जी को कह नहीं की थारी बंदोली काटी
1: आई बात सही है क्योंकि लुप्त होने वाली प्रजाति है ना
0: अरे भाई देखे कच्छ भी हो गए वो कच्छ भी हो गई है के जटे गहरो पानी वे हेलो पानी वे उठ रहे
1: रहे
0: और ओ खावे कहीं बताओ मने आके कम चीज खावे
1: ओ मैं घरे रखे जी का कहीं है काकड़िया अपने जी का सब्जियां होन सा टमाटर बीजी है खावे नवे
0: खावे ए भाई वो शाकाहारी है
1: शाकाहारी
0: ठीक है मछलियां दूजी को खा रही और देखे जटे जटे कस भी रह के तो उठे कहू है कि नदी आगू आवे कटी बैठी जी को हजार चीजा नदी में गुड़ती गुड़ती आवे
1: आवे
0: है
1: आवे
0: माटी हाथ पच कहू है कि एकदम एक बढ़िया चीज बने है जो कई कह लीली लीली वे लील को नहीं बा लीली चीज वे कोई कुदरत रा खेल है बा वो खावे ने है उम्र मोटी काश
1: बने ना मतलब
0: है क्या है भाई और तो कह भाई हो डेढ़ सौ साल जिए
1: जीवे ना मतलब
0: पर तो मिनक इन्हें मार दे तो टक्के है मिनक कह तो कर जीव है जी को कि नहीं छोड़े को
1: कि नहीं नहीं छोड़े
0: और पानी में वो पड़ी रहे एड़ो चमके चमके जित कोई कह जो कह नहीं के कोई जिनौरिया दूजा दे के कर जित बे कहीं भिड़क जा
1: भिड़क जा
0: रात रो मान लो कोई एड़ो कह के भाई जिनौर है खरगोयो है कोई इनियो है के कोई रोज रो है बे कोई पानी पीने गया और वो पड़कन ढूक जा तेरा पाचा
1: ना जा सा पाचा
0: हाँ कहो है कि जीव जीव रे लागू है रे खैर की कोई सरकार है जिसको कह भाई है जीव ने बचाऊनो कानून बनायेड़ो है और जे मुतको कीड़ी मार दे तो थारे कानूनी कार्रवाई होगी कुत्ता कूट दो जो थारे कानूनी कार्रवाई होगी दूजो कोई डंडे ने दूजो जे ठोक दियो कह उन्हें कोई नुकसान पुगा दियो तो भाई है जो कह नहीं कानून आप हाथ लंबो करी
1: करी
0: और उन्हें है जो आगले ने कह नहीं भाई कोटड़ी में गाली
1: गाली
0: है
1: हाँ ना मतलब
0: अब बात है वाकई कोल लिए तो बढ़िया है पर पानी में सिलके जोर है जब ही मैं कहो कह पानी से निकले पानी कम पानी से निकले तो हमें मारी मैंने हम ठा पड़ी हो थे कैडी कैडी है जी को कह नहीं करतूत ना करो
1: सही बात है
0: पर देखो मैं तो चाहे कोई जीव हो उन जीव ने मारनो नहीं उन्हें तारनो हमें तावड़ो पड़े ही तो भाई देखे के मारो तो ही है जो कहो माननो है क्या भाई चिड़ी मुठी बिरी चिड़ी है धोबो बिरी हो जे मान लो कबूतर है और है जो कहीं है जो मोरिया ढेलड़िया तितरिया बाट बड़ कई जीव है जगह रिंद रोई रही है कह नहीं के मिन थोड़ा कह नहीं है तल भी है पानी है कह नहीं भाई रिक्शा करो ठीक है नी
1: हाँ ना
0: और रिक्शा जद हो भाई अपने अटे रूकड़ा होई अपने अटे कह नहीं भाई सिया होई अपने अटे कह नहीं की मैं तो एक खेड़ी है तो खेड़ी रे डाला जे ऊंचा नीचे ही है और कटी दो कह नहीं पानी रा कूंडी ही कोई लटकान भर दिया तो ही वही कह नहीं काम थोड़ो कह नहीं मिनक बने रहो
1: है ना
0: है कौन
1: है
0: भाई देखे मान लो हमें जेठ साठ रहा कह दिन है पानी कटी कटी कह नहीं के आंखे मरी हो
1: आंखे मरी
0: तो भाई कोई है कह तिर मिटाने बात है आज हम मान लो हाँप ने तिर लागे क्या कोई गो ने तिर लागे चंदन गो ने तिर लागे भाई कितो पेंडो दोरो करे कित भाई पानी है जटी है पर भाई क्या नहीं हिरता हिरता जान वो कह थोड़ो घड़ो घूटियो भरे तो कुंद्रितरा खेल कह नहीं अजूब है और अजूबा ने कह नहीं भाई देखो बचाऊनो मिनक रो धर्म है ठीक है नहीं जीव जीव ने कह भाई क्या क्या देखो बचाई जो है बात हो और कोई जीव नहीं कमल हमें चेत आयो मैंने था नाम हमने याद आयो
1: अच्छा हमें याद आयो
0: हाँ हमें याद आयो तो जीव ने जीव बचाई तो हो ही नहीं यू कुदरत रो खेल है के जीव जीव रे माते लागू है कुदरत रा खेल मोटा है खैर के कोनी पानी में चमक नालो हो कर नालो हो मुकड़ो गीत हुन तो आयो तो मनी होना भाई हो गीत रो
1: होना सा

0: वाह भाई रे वाह, को न्याल कर दिया थे को जरा करो जी कोई सो कही है मैं तो कहूँ हम क्या बह पाऊने है जी को गए पाऊने जा तो आग हो रही जो
1: आग हो रही
0: है पाँच छोड़ दीजिए उठे और की कौन बाकी तो क्या देखा जटर जीव है उठे ही राजी रहे
1: राजी रहे
0: और कल देखो कोई भड़े कह नहीं के इन जीव लार कोई दूसरी जीव आई तो ये वहाँ से कही है की आपने हाउ से मती ठीक है तावड़े में आना जाना करना सब है हिसाब है तावड़ा पड़े तो कई जीव कटे न कटे जाओ पड़ा खैर कोई बात नहीं हमें यू करो क्या विगतवार बताओ क्या कहीं हम चार है कुण जन्मिया कुण फोतोया।
1: हाँ सर विगतवार जानकारी दो उन्होंने पहली आज प्रसूति फिस्टुला उन्मूलन रो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और हर साल आज तारीख ने मनावे नवला बा
0: मनावे नी होली दिवाली मनावे जी मनावे
1: होली दिवाली मनावे जी मनावे नवला बा अपने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2012 बनाव लागे है
0: नवा त्यौहार है भाई
1: इनमें कही है प्रसव दौरान जिकी उन वाली गंभीर शारीरिक छोटा है नवलबा बिन वास्ते आपने
0: ठीक भारी पकड़ लुगे यार जाप हो गया के
1: हाँ
0: ठीक है चल तो भाई देखो कई है जो कह नहीं के अंदरूनी कई क्या रोग हुए
1: हाँ नवलबा
0: खून ही हल्लो पड़न रुक जाना दूसरी आंत लुगई हुए उन्हें कई है तो उन बचाव लो है नहीं
1: हाँ नवलबा
0: हाँ वो तो दिन रो ठीक ही है क्या भाई हाजत ताजा है क्या नहीं के वह जिद हैंग बाता है
1: हाँ नवलबा
0: और कह दे भाई कोई जापो दापो जच्चा बच्चा दो ही है आजकल कहने के अस्पताल में जापा तापा है तो बे आप रखा ही है के सुरक्षित आत्म है
1: हाँ नवलबा
0: खैर कोई बात नहीं बढ़िया सा सरकार जी को कह नहीं मनाऊन वाली बात करे भाई मोटी है
1: हाँ
0: के करिए ही है जी मैंने जाग जान जागरूकता

0: तो ठीक रहे।
1: हाँ नवलाल
0: नाम है
1: हाँ जी का जन्मिया वाम पहले नाम है अपने अन्ना राम सुदामा जी। 23 मई 1923 बीकानेर में जन्मिया हसा। अपने राजस्थानी भाषा रा साहित्यकार अनानी प्रमुख रचना मेवेर रूक इन वास 1978 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित
0: भाई मेवेर रूक है। हाँ अन्ना राम जी सुदामा है बहु मिलियो रूं।
1: अच्छा
0: सबका लिखा रहा।
1: हाँ सर।
0: और मेवेर रूंग तो कहीं है धोरा धरती में खेल रही है पर लिख नाला आपने हिसाब लिखे के भाई बिना पानी की करे जो तो और रूंग डोटे हुए है कई कारण है कई कई दे है कई कई हुए है।
1: हाँ सर।
0: ए बाता है जो आपरा बखाण नहीं आपरी पोती हमें अन्ना राम जी सुदमा करिया
1: करिए
0: और धोरा धरती क्या नहीं बात लिखी और बे कोई पोतिया थारी कटी ध्यान में आवे लाल पांचो।
1: हाँ
0: और जो आने कोई भूल नहीं सके कोटि कोटि नमन है मन रेरा फूल चढ़ाओ बड़े
1: आगे ऐसा गायत्री देवी आना जन्म 23 मई 1919 लंदन में हो अपने कूच बिहार साई परिवार आसा जयपुरी महारानी ही नवलबा।
0: हाँ हाँ भाई
1: हाँ सवाई मानसिंह द्वितीय यहाँ विवाह हो बाद में राजनीति में शामिल होया पे सांसद चुनी दिया पर्दा प्रचार के खिलाफ आपकी आवाज उठाई।
0: अरे भाई देश आजाद हो उन पचे की बात है।
1: हाँ नवलबा
0: और गायत्री देवी जी बड़ा नहीं के भाई फूट रहा।
1: हाँ सर।
0: है
1: हाँ।
0: क्या के बे जिको फूट रहा पे होते हुए राजघराने होते हुए भी बे क्या नहीं गुंगट है पर्दा है एक सब हटवाया।
1: हाँ सर।
0: तो लुगई जात ने इनकी क्या नहीं आजादी मिली
1: मिली नवलबा
0: ठीक है नहीं तो अने कोई नहीं भूल सके जग चावा काम करी उड़ा है।
1: हाँ सर।
0: तो अने कोटि कोटि नमन है मंदरेरा फूल चढ़ावा
1: बड़े ऐसा पीसी वैद्य पूरा नाम पहला चुन्नीलाल जी वैद्य है। 23 मई 1918 जूनागढ़ गुजरात में जन्मे आसा अपने विख्यात भौतिक विज्ञानी गणितज्ञ और एल्बर्ट आइंस्टाइन जो सामान्य सापेक्षता सिद्धांत है निशा बामे भी यानो महत्वपूर्ण योगदान रियो है और सब बड़ा वैज्ञानिक योगदान यानो वैद्य मेट्रिक री खोज वास्ते रियो सा।
0: अच्छी बात है देखो जूनागढ़ में जन्मिया और नवा काम करिया ठीक है और कह नहीं के भाई ज्ञान री नवी बात वैज्ञानिक बतावे तो ये बते ही तो आनी है जो कोई नहीं भूल सके आनी कोटी कोटी नमन है मन रेरा फूल चढ़ाऊ बड़े
1: है तो जन्मिया जी का सा।
0: अरे भाई है हूँ एक बात पूछू।
1: हाँ नवलबा
0: के थे बीन भी इतना लड़ो क्यूँ।
1: अरे मैं कहो कहीं काम कर लो थोड़ो जो क्या तावड़ो पड़े।
0: अरे तो काम करना तुम तावड़े में कोई काम है थारो मगज काम करेगा
1: बाजार जाओ न
0: बाजार जावे बाजार बाजार में तावड़े में कोई गया
1: तो मैं क्यों गाड़ी में करा दूं टैक्सी में भेज दूं तावड़े भाड़ा कौन भेजाओ तो क्या तावड़े पड़े
0: टैक्सी आर मैं थार तो हो लिया तो तावड़े में क्यों है जो बार काटे क्यों है जिको कोई अड़ो है जिको कुए बेड़ो काम करे
1: भाई हमें काम पड़े करना पड़े नवला बतावड़ो
0: नहीं है जिको
1: खेता में तो भेजे को नहीं सर।
0: अरे खेता में जाना पड़े खड़ा में जाना पड़े हैंगे पण की कोन भाई देखे बिंदन की कई कहे जिको मन पहले हुन दे।
1: हाँ हुनो देने।

0: बात आती है, देखे भाई सब आप आपरे हिसाब मनी हिसाब तो राखो हिसाब थर्मा तो कह नाराज है कहीं टक बेराज है कहीं टक
1: कावड़ हम जाओ तो क्या काली पड़ जाओ
0: की खोली है आप बात करिए।
1: हाँ सर
0: ले हम फोत थोड़ा बता।
1: हाँ सर फोत है हम पहले नाम है अपने राकल दास बंदोपाध्याय जी है। 23 मई 1930 ने फोत होया हासा अपने प्रसिद्ध पुरातत्वविद इतिहासकार रहा अने मुख्य रूप 1922 में सिंधु घाटी सभ्यता निशा अने प्रमुख मोहन जोदाड़ो स्थल री खोज करी।
0: ओ हो ठीक ठीक ठीक है तो कही देखो भाई अपनी पुरानी सभ्यता ही सिंधु घाटी मोहन जोदड़ो
1: हाँ
0: पीली बंगा काली बंगा
1: हाँ मतलब
0: अरे पुरानी कहे के भाई सभ्यता ही जट कह के भाई है जो खुदाई उदई कराई और खुदाई करा लूटू है जो कह के दुनिया ने बताया।
1: हाँ सर
0: के भाई देखो के टाइम ने नमस्कार है और जिका बढ़िया में है जो दुड़ेला तो एड़ी है जो सभ्यता ही बात जमी जोत होगी
1: होगी सर
0: और हमें है जो मारा कहन कहनी घर बार और कहनी दूजा कई कहनी भाई के बर्तन भांडा और हड़का दूजी सब उठ खोदान बताई
1: बताई ना
0: भाई पुरानी है जुगा सभ्यता एड़ी तो ये तो घना जग चावा मिन खान ने कोई कह नहीं झाको पड़तो ठा पड़तो के जग जा नहीं तो कह मोटो काम करियो
1: करियो
0: तो आज इतिहास की बात कहनी जमी मुकार नी कम बात को है।
1: हाँ नौला
0: तो आने कोई नहीं भूल सके कोटी कोटी नमन है और मंदिरे रा भूल जनावा है कोई नहीं।
1: हाँ नौला
0: बाकी तुम कहे है भाई थे तुम की खोजिया कोई करिया थे जे है जो जे खोजबीन कर रुका वो तो जरूर थे कि इनकी है जो ले पड़ो पर थार तो कहे मगज तो हाल है कह फिर बार थार है जो मगज जा को
1: मैं तो नौला बारी ढाणी खोजी खाली
0: अरे मारी ढाणी कहे है भाई की कोनी हटे तो

0: से को तो न्यारा न्यारा बारा रंग रूप
1: है सर,
0: बारी बोली चाली दानो में एक ही सुगे
1: एक ही सुगे
0: है।
1: हाँ सर,
0: अब जीव जिंदा ने देखो तो गा नारी भैन नारी लड़ी नारी बकरी नारी है नारा नारा पर बेचारो एक ही जरूरी चल।
1: हाँ
0: है तो मिन्नत जात है जिकने हम दिनों सही जे क्या भाई ए जिनावर हो ने है जिको मिनक मिनक पता समझदार है
1: सर,
0: और मिनक है जिको जिनावर है जो कह नहीं की गियो पी तो होगो
1: होगो नवला
0: तो आ बात नहीं होनी चाहिए। आज मैं कई छोड़ माता जी हुना देखा कई बात हो नहीं उन मुझे तो है जिको भाई देखो घनो विचार करना पड़े
1: करना
0: संसार नी ओ किकर बनियो है कुन बनायो है अन कई है जो कह नहीं जीवरी है बातड़ी है किकर है ये सब बता बहुत क्या जी है भाई
1: है सर।
0: और हमारे संत महात्मा बोलिया फकीर सब कह दिया और वे बता दे ये मैं मांडियोड़ी रा कान सो का काम करा तो बढ़िया नहीं तो फिर पेट रो कह नहीं बम्पाल करनो दुनिया में थे करता है यार खोजिया कोई करिया।
1: हाँ सर,
0: तो बस वे बता है देखे अपने तो कर्म जो बात है क्या है बात है जिसको कहने की एक ही धरती बात है कोई
1: है ना उल्लाह
0: एक हूँ हर्जिस सुनो
1: हुनाओ सर
0: पहला हूँ हर्जिस कहो कई कह
1: हाँ
0: ठीक है
1: हुनाओ सर।

0: समझ में आई क्या क्या है?
1: आई नौ लगा
0: क्या ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु और चाहे भले की कहो तो वो नाम एक है की बात है। तो वाह भाई हरजी छो कोई होना हो और कमल रे मारे जी हो रोगो नैंग बात भली है ना बड़ा और मारी इतनी है क्या तावड़े में कटी थे है जो बहुत मत फिर
1: को नहीं पीरा नौ लगा
0: और क्या नहीं जंजर के कोई काम कर लो नी वह तो दिन उगिया हुर्ज घो क्या तपे नहीं उन पहला काम कर लो और नहीं है तो छिया में बैठा रहो ठंडी चिम जा जिमो और जीव जिका है अपने आड़े पाड़े कोई वो उनको जे टिलोड़ी है उन्हें हो चो चाहे भली बिसुंदरी है उन्हें हो चो जीव जिता बनियोड़ा है बाले की करता रहो
1: सही बात है
0: तो कह के धरती माते जीव रही तो है जिको कह नहीं भगवान रो मालिक रो बस हो रही और नहीं जित भाई देखो खुदरो पेट भरने हो जियो तो उन्होंने उसकी उड़ान कोई करना
1: ठीक है बात।
0: हर इंसान ने वही कहना क्या भाई देखो के हाथ बराबर तपनी और पाप बराबर क्यों कह दुख और जिकी बात है भाई कर पाप करियो दुख ही दुख आवे दुख मत आऊं दो हमें थे रसोड़े में तैयारी करा दो और हूँ है जिको फेर दू माड़ा माले रे गिड़का फेरिया पर कमल मारो कहीं एक थड़ो कह भाई जीवड़ो कह भाई साई तो जा और चित ठाने आ जा मारो मन रो घोड़ो है जो डब जावे और नहीं तो भाई देख है एक दिन मोह माया तृष्णा में हुई है जो कह नहीं उड़ जीड़ो
1: सही बात है
0: तो माला फेर बैठो हूँ जीते ठेक कर दो मन रसोड़े तैयारी
1: हाँ
0: अरे तारा ही खासा ऊंचा आएगा आनंदारी पड़गो है प्रोग्राम रो टाइम ही होगो पूरो तो भाई से ना ले मैं ले आई
1: राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर।

आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। इस फिल्म संगीत कार्यक्रम में ये पहला गीत मुद्दत फिल्म से हमने लिया है। आशा भोंसले और मोहम्मद अजीज की आवाजें, इंदी वर के बोल बप्पी लहरी का संगीत।

दिल है कि मानता नहीं फिल्म का गीत है अनुराधा पौडवाल की आवाज में। समीर ने इस गीत को लिखा है, संगीत नदीम श्रवण का है।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से। प्यार झुकता नहीं फिल्म का गीत है ये श्रोताओं। शब्बीर कुमार की आवाज, एसएच बिहारी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से। अनुराधा पौडवाल, अमित कुमार और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है तेजाब। जावेद अख्तर के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। माफ कीजिएगा श्रोताओं, बेताब फिल्म का एक गीत है, अनुराधा पौडवाल और शब्बीर कुमार की आवाजों में। लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में बेताब फिल्म का एक गीत है श्रोताओं, जिसे आनंद बख्शी ने लिखा और राहुल देव बर्मन ने संगीतबद्ध किया।

अगला गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं उसे हमने लिया है ईमानदार फिल्म से। आशा भोंसले और सुरेश वाडकर ने इस गीत को गाया है। प्रकाश मेहरा के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

और श्रोताओं, इस फिल्म संगीत कार्यक्रम का ये अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है बीवी हो तो ऐसी। आवाज़ें मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल की है। इस गीत के गीतकार समीर हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: बीवी हो तो ऐसी फिल्म के अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है। रात के 8:45 होने वाले हैं। अब समाचार संध्या और फिर रात 9 न्यूज एट 9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता।

0: और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमरीका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमरीका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को

0: निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: हमने यह समझा सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे। हम दुनिया के किसी देश से उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे।
0: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30 से 35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया

0: से 35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
2: विकसित भारत 2047 जब उस गोल उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
0: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: विकसित भारत जी रामजी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल कियुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानाऊ से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's consistent support for peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy. U.S. Secretary of State Marco Rubio terms India as cornerstone of United States approach towards Indo-Pacific region. Defense Minister Rajnath Singh asserts the country is becoming self-reliant in defense manufacturing, inaugurates artillery shell manufacturing plant at Shirdi in Maharashtra. Centre asks Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by 5th of next month for strengthening defence infrastructure. 90 people killed in a coal mine explosion in China. And Indian grapplers Suraj Vashishth and Sagar Singh clinch silver medals at Asian Under 23 Wrestling Championships in Vietnam. Prime Minister Narendra Modi and U.S. Secretary of State Marco Rubio today discussed sustained progress in the India-U.S. Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Tirth in New Delhi this afternoon. Mr. Modi said in a social media post that India and the U.S. will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jaishankar and NSA Ajit Dobhal were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio briefed Mr. Modi on the sustained progress in bilateral cooperation.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की

सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से। पंकज उधास की गाई गजलें इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं। आइए अब सुनते हैं पंकज उधास की ही गाई जफर गोरखपुरी की लिखी ये गजल।

0: सुगम संगीत कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। अब राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अल्पी कुमारी।
2: और मैं संजय किशोर।
1: विज्ञान भारती में हम विज्ञान, तकनीक, शोध, नवाचार और समाज पर उनके प्रभाव से जुड़े विषयों को आप तक पहुंचाते हैं।
2: आज के अंक में हम चर्चा करेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, विज्ञान और तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका पर।
1: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और सुपर कम्प्यूटर,
2: दुर्लभ खनिजों के निष्कर्षण की नई तकनीक,
1: विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और बिहार में प्रवासी पक्षियों की गणना, खरीफ फसलों के नई किस्में एवं जैविक उर्वरक,
2: साथ ही सुनेंगे विज्ञान जगत की बातें, मई माह में जन्मे और दिवंगत महान वैज्ञानिकों के योगदान तथा मई माह के प्रमुख विज्ञान दिवस।

0: गौरवशाली 90 वर्षों की यात्रा। इन 9 दशकों में आकाशवाणी ने केवल समाचार और मनोरंजन ही नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक के जन जागरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत होती है वर्ष 1927 से, किंतु वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई। बाद में 1957 में से आकाशवाणी नाम मिला। स्वतंत्रता के समय देश में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे और इनकी पहुंच लगभग 11% आबादी तक थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। वर्तमान में आकाशवाणी के 470 से भी अधिक केंद्र कार्यरत हैं, जो देश के लगभग 92% भौगोलिक सीमा और 99% जनसंख्या तक पहुंच रखते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक है। यह आंकड़ा केवल प्रसारण क्षमता का संकेत नहीं देता बल्कि यह दर्शाता है कि आकाशवाणी ने भारत के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक विज्ञान और तकनीक की जानकारी पहुंचाने में कितनी प्रभावी भूमिका निभाई है। आज FM, डिजिटल रेडियो और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से विज्ञान आधारित कार्यक्रम नई पीढ़ी तक पहुंच रहे हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष केवल प्रसारण की यात्रा नहीं बल्कि ज्ञान, शिक्षा और वैज्ञानिक चेतना के प्रसार की गौरव गाथा है। स्वतंत्रता के बाद देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। कम उत्पादन, पारंपरिक खेती और वैज्ञानिक जानकारी के अभाव के कारण किसान आर्थिक कठिनाइयों में थे। ऐसे समय में आकाशवाणी किसानों का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मार्गदर्शक बनकर सामने आया। कोविड-19 महामारी के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैल रही थी। वहीं लोग वैक्सीन से डर भी रहे थे। कहीं घरेलू उपचारों को वैज्ञानिक सत्य मान लिया गया था। ऐसे समय में आकाशवाणी ने डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के माध्यम से प्रामाणिक जानकारियां प्रसारित की। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इंटरनेट की पहुंच सीमित थी, वहां रेडियो सबसे विश्वसनीय माध्यम बना। बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा और समुद्री तूफान जैसे आपदाएं हर वर्ष लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं। ओडिशा चक्रवात, बिहार बाढ़, असम की बाढ़ और सुनामी जैसी आपदाओं के दौरान रेडियो जीवन रक्षक माध्यम के रूप में सामने आया। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में आकाशवाणी ने स्वयं को तकनीकी रूप से आधुनिक भी बनाया है। विज्ञान एवं तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका के बारे में आइए जानते हैं ICMR के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर VK श्रीवास्तव से।
1: 1990-92 के बीच में ICMR ने आकाशवाणी के साथ मिलकर के एक रेडियो डेट प्रोग्राम किया। डेट मतलब ड्रग, अल्कोहल, टोबैको, एजुकेशन। ये ऑल इंडिया रेडियो के 84 स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हुआ प्रोग्राम 30 एपिसोड का 16 लैंग्वेजेस में। तो ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। सबसे ज्यादा इसका फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। इसका इवेल्युएशन हम सिर्फ 2 जगह कर पाए, कर्नाटक और गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों में। उससे पता चलता था 4-6% लोगों में, कहीं 4%, कहीं 6% लोगों ने इस प्रोग्राम को सुनने के बाद में इन बुरी आदतों से छुटकारा पाया। एक सबसे और अच्छी बात थी, ये अपने से छोटे बच्चों को सिखाते थे, उनमें बुराइयां बताते थे, उनको शिक्षित करते थे। दो तरह फायदा हुआ इस प्रोग्राम से। तो हम तो चाहते इस तरह के प्रोग्राम और होते रहने चाहिए। 1986 के आसपास भारतवर्ष में HIV का दौर शुरू हुआ। 1988 में फिर मैंने HIV पर एक नेशनल फीचर, आधे घंटे का फीचर किया। उसमें हिंदुस्तान भर में जा जाकर जो उस समय के अपने एक्सपर्ट थे, मुंबई में डॉक्टर गिलाडा थे, तो चेन्नई में डॉक्टर सोलोमन थे, और यहाँ के उनकी पेशेंट्स के इंटरव्यू किए, यहाँ होम्योपैथिक एक्सपर्ट्स, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स, एलोपैथिक एक्सपर्ट्स, WHO, इन सबके से इंटरव्यू करके इनकी रिकॉर्डिंग करके 30 मिनट का प्रोग्राम एक फीचर किया।
0: विज्ञान जगत में किए गए अपने योगदान को याद करते हुए आकाशवाणी में कार्यरत पूर्व ADG मनोज पटारिया ने अपने अनुभव इस तरह साझा किए।
2: मैंने नाटक भी लिखे विज्ञान पर जो ब्रॉडकास्ट हुए। समय नाम का नाटक था जो टाइम मशीन के ऊपर था, एक प्रदूषण के ऊपर था, जिसमें ये था कि किस प्रकार से प्रदूषण आने वाले समय में मुश्किलात पैदा कर सकता है।
3: अब बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और नवीन अनुसंधानों की। संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एनर्जी और बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। IIT पटना के निदेशक डॉक्टर TN सिंह,
4: यहाँ पर 3 शोध के एक नए आयाम खुले हैं जिनको हम इनक्यूबेशन सेंटर कहते हैं। TBI, TIE NIH, इन तीनों का मैंडेट अलग अलग है और इसमें एक नए नवाचार और नए तरह की शोध करने वाले विद्यार्थियों न केवल IIT पटना के लेकिन बिहार और सुदूर राज्यों से भी आए हुए विद्यार्थी इसमें काम करते हैं। नई एक शोध हमारे यहाँ के एक शिक्षक और विद्यार्थियों ने मिलकर किया है कि डिमेंशिया की बीमारी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है और उसके तहत उनका पेटेंट भी ग्रांट हुआ है। इस तरह से हमारे यहाँ 100 से ऊपर के पेटेंट फाइल हुए हैं और बहुत सारे ग्रांट भी हुए हैं। अभी वासिनी प्रोजेक्ट चल रहा है जो अंतर इंस्टीट्यूशनल कार्यक्रम है जिसमें कि कुछ IIT कुछ NIT कुछ यूनिवर्सिटी सभी

0: मिलकर के ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें एक भाषा में यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है तो सुनने वाला अपनी लोकल भाषा में उसको समझ सके और उसको सुन सके और प्रश्न भी कर सके अपनी भाषा में, तो वक्ता के पास उसकी भाषा में जिसमें वो बोल रहा है उसको वो प्रश्न का उत्तर देगा। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही सफल प्रयोग है यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए, और पहली बार IIT पटना से विदेश में बैटरी गई है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। बिहार में पहला सुपर कंप्यूटर IIT पटना के प्रांगण में स्थित है। हमारे यहाँ जो सुपर कंप्यूटर है ये ब्रह्मास्त्र हम बोलते हैं, ये सुपर कंप्यूटर की 13 बाइट में इसकी स्पीड हो, 13 बाइट बहुत ही फास्ट स्पीड, त्वरित काम को निष्पादित करने का इसके अंदर जो है काम है। AI के क्षेत्र में काफी यहाँ काम हो रहा है, केवल हम भाषा तक ही नहीं, हम AI के क्षेत्र में फॉर्मेशन तक के अंदर किस तरह से 5G, 6G को स्पीडअप किया जाए उसके लिए भी, और क्वांटम में भी यहाँ का फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विभाग जो है वो राष्ट्रीय स्तर के जो मिशन है क्वांटम का उसके साथ जुड़े हुए हैं।
1: दुर्लभ खनिज यानी रेयर मिनरल्स या क्रिटिकल मिनरल्स, ये ऐसे खनिज हैं जो स्वच्छ ऊर्जा, विद्युत, वाहन, रक्षा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उन्नत विनिर्माण उद्योगों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर 17 खनिजों को दुर्लभ खनिज का दर्जा दिया गया है, जिनकी मांग तेजी से बढ़ रही है क्योंकि विश्व ऊर्जा परिवर्तन यानी एनर्जी ट्रांजिशन और हरित प्रौद्योगिकी की ओर अग्रसर है। भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन या ANRF देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए धन देने, बढ़ावा देने और रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए अनिवार्य सर्वोच्च निकाय है। ANRF ने IIT पटना के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रत हती के परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबक से दुर्लभ खनिज के निष्कर्षण के अनुसंधान को ग्रांट दिया है।
2: जो आपका दुर्लभ खनिज है और हम लोग बोलते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स है, ये है कि आपका जो हम लोगों का डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होता है, तो वो सब चीजों में ये दुर्लभ खनिज इस्तेमाल होता है। हर देश में किसी किसी जगह में आपका ये दुर्लभ खनिज के जो डिपॉजिट्स होता है, तो ये डिपॉजिट से अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते जो हम लोग उनको बोलते हैं कि प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी रिसोर्स, तो वो उसके जियोलॉजिकल हैजर्ड्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो होता है हमारे पास सेकेंडरी रिसोर्स होता है। सेकेंडरी रिसोर्स ये होता है कि जैसे ई वर्ज्य होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है आपका, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो भी हम लोग डे टू डे यूज करते हैं, तो सारा चीज एक यूजुअल लाइफ पीरियड के बाद वो ऑब्सोलीट हो जाता है, और ऑब्सोलीट हो जाने के बाद क्या है कि उसमें उससे हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से उसको हम लोग निष्कासित करते हैं। निष्कासित करने के लिए आपके पास तरीका जो होता है, टेक्निकल तरीका, वो बोलते हैं कि पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी एंड बायोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी में हम लोग क्या करते हैं कि आपको हीट ट्रीटमेंट देते हैं, और उससे क्या है कि अगर आप मेटेरियल प्राइमरी सोर्स पे अगर कोई मेटेरियल है, प्लास्टिक है, तो उसको जलाया जाता है, तो उससे प्रदूषण हो सकता है। तो इसलिए दूसरा तरीका क्या होता है कि आपके पास हाइड्रोमेटलर्जी होता है। हाइड्रोमेटलर्जी में जनरली लोग क्या करते हैं कि एसिड और एल्काली यूज करते हैं, तो वो जो एसिड और एल्काली होता है वो जनरली कन्वेंशनली लोग उसका स्ट्रांग एसिड और एल्काली यूज करते हैं। तो उसके बदले में अगर कुछ ऑल्टरनेटिव ये है कि अगर आप कुछ नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड यूज करें, और नाउडेज क्या है कि नोबेल जो टेक्निक आया है उसको बोलते हैं कि हम लोग डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट, उससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो हमें NRF से जो रिसर्च ग्रांट मिला है, इससे हम लोग करें सेकेंडरी रिसोर्स परमानेंट मैग्नेट। उससे परमानेंट मैग्नेट जनरली आप देखेंगे व्हीकल्स में यूज होता है, जनरली देखेंगे विंड मिल में यूज होता है। सो परमानेंट मैग्नेट जब वो ऑब्सोलीट हो जाता है, उस परमानेंट मैग्नेट से, और मेजोरिटी ऑफ द सोर्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट आपका चाइना है, तो वो सब आप एक्सपोर्ट सब बंद कर दे। जो डेवलप कंट्रीज है जिनके पास क्रिटिकल मिनरल का मेजोरिटी ऑफ द रिजर्व्स है, वो लोग इसका दुर्लभ खनिज का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। जो अगर स्वावलंबी बनना है भारत को, तो इसलिए क्या है कि हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से ये सब पदार्थ और दुर्लभ खनिज निष्कासित करना है। तो इसी संदर्भ में ये जो परमानेंट मैग्नेट से क्रिटिकल मिनरल निष्कासित करना डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट लेके, ये एक हमारा पहल है जिसमें हम लोग काफी शोध कर चुके हैं और आगे शोध को हम लोग स्केल अप करेंगे।
3: और अब हम जानेंगे प्रवासी पक्षी के बारे में। प्रत्येक वर्ष हजारों लाखों किलोमीटर का सफर तय करके हमारे देश, हमारे शहर और हमारे इर्द गिर्द पहुंचते हैं, और इन्हीं पक्षियों के लिए 9 मई 2026 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम था हर पक्षी महत्वपूर्ण है, आपका नजरिया मायने रखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पक्षी दो प्रमुख वजहों से प्रवास करते हैं, भोजन और घोंसले की तलाश में ये पूरी दुनिया में प्रवास करते हैं। वर्ल्ड लाइफ के अनुसार विश्व के पक्षियों की 40% प्रजातियां अब घट

0: निपट रही हैं। प्रवासी पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनकी घटती संख्या जल की गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति कमजोर सहनशीलता का कारण बन रही है। भारत में हर साल 370 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। बिहार में 70 से अधिक प्रवासी पक्षियों सहित कुल 260 से ज्यादा प्रजातियों के 10,000 से अधिक पक्षियों की गणना की गई है। आप ई बर्ड बिहार पर जाकर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पटना, भागलपुर या और भी जो क्षेत्र हैं, उनमें हाल ही में देखे गए पक्षियों की सूची और चेकलिस्ट को देख सकते हैं। बिहार में प्रवासी पक्षियों के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर देव नारायण चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी डिपार्टमेंट, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर।
1: पिछले कई सालों से बिहार का जो वन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो और बॉम्बे की संस्था है बीएनएचएस, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इन दोनों के प्रयास से पक्षियों की गणना शुरू हुई है। 2022 से इसकी शुरुआत हुई और ये 26 लगभग 5 गणना हो चुकी और इससे काफी अच्छे परिणाम आए हैं। हम लोगों ने बिहार के 3800 जिलों में जितने भी इम्पोर्टेंट वेटलैंड है जहाँ पर इन पक्षियों का वास होता है, ये प्रवासी पक्षी जहाँ से आकर के पनाह लेते हैं, वहाँ पर इसकी गिनती शुरू हुई और इसमें जो भी पक्षी विशेषज्ञ थे, जो बर्डर थे, जो ट्रेनर थे, उन लोगों को इसमें लगाया गया और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑर्डिनेटर की बहाली हुई जो एक्सपर्ट के रूप में काम करते हैं। इससे अच्छे परिणाम आए तो धीरे धीरे हर साल कुछ कुछ वेटलैंड की संख्या भी बढ़ती चली गई, उसको भी हम लोग कवर करते हैं। तो इसमें देखा गया कि एक अच्छा डाटा तैयार हो गया और आने वाले दिनों में बिहार के पक्षियों पर एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। जो इसके पहले 2012 में ही एक बुक पब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा, बर्ड्स ऑफ बिहार, उसका जो इन्फॉर्मेशन था उससे कहीं ज्यादा इस रिपोर्ट के बाद जो ये छपेगा, तो आने वाले दिनों में जो एकेडमिक्स के फील्ड में ये एक अच्छी जानकारी साबित होगी।
0: और अब जानते हैं विज्ञान जगत की नवीनतम घटनाओं के बारे में। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाला सुपर एल नीनो 1950 के बाद सबसे शक्तिशाली में से एक हो सकता है, जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है। यह कई क्षेत्रों में बाढ़, सूखा, हीट वेव और जंगलों में आग जैसी घटनाओं को बढ़ा सकता है। जलवायु परिवर्तन इसकी प्रकृति को और अधिक अनिश्चित बना रहा है। सुपर एल नीनो का मतलब समुद्र के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की असामान्य बढ़ोतरी से है, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है। खासकर दक्षिण एशिया पर इसका अधिक असर पड़ता है।
2: भारत के असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली बार सैटेलाइट ट्रैक की गई गंगा सॉफ्ट शेल कछुए को छोड़कर संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। यह संवेदनशील मीठे पानी की प्रजाति का कछुआ है जो नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके व्यवहार, प्रवास और पर्यावरणीय खतरों के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए ट्रैक की जा रही है। यह पहल वैज्ञानिकों को इस जलीय सरीसृप प्रजाति के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने में मदद करेगी। इस प्रजाति को असंरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है। और अब स्वाद और सेहत से भरपूर बिहार की पहचान मखाना के बारे में जानते हैं। सुपर फूड बन चुका मखाना अब वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। मखाना अनुसंधान केंद्र में मखाना की नई प्रजातियों और उत्पादन तकनीकों पर कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में ICAR राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार।
3: कोरोना काल के बाद से जब स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता काफी तेजी से बढ़ी है, तो मखाना में पाए जाने वाले जितने औषधीय गुण है, इसमें पाई जाने वाली जितनी पौष्टिकताएं हैं, तो इन गुणों के प्रति, इन स्वास्थ्य लाभों के प्रति बहुत तेजी से दुनिया भर में जागरूकता हुई है। इसमें मिनरल्स काफी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, वो सब तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे न्यूट्रिशन के लिए, जैसे आयरन, जिंक इत्यादि बहुत अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। इसके अलावा ये जीरो फैट फूड इसे मानते हैं, इसमें फैट की मात्रा बहुत ही कम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें बहुत कम होता है, मधुमेह के जो मरीज हैं वो भी बहुत से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, मोटापे की समस्या से जो ग्रसित है वो भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं क्योंकि फैट इसमें बहुत कम है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के माध्यम से भी एक नई प्रजाति अभी विकसित की जा रही है और मेरा मानना है कि अगले एक वर्ष में ये वेरायटी आ जाएगी, जिसकी उत्पादन क्षमता यहाँ से करीब 15-20% और ज्यादा होगी। और इसके अतिरिक्त कांटे रहित मखाना के प्रभेदों के विकास पर भी अभी चर्चा हो रही है।
0: हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को सीमित करने की बात कही है ताकि खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा को प्राप्त किया जा सके। बिहार के 13 जिलों में जैविक खेती की जा रही है। कृषि विज्ञान में खरीफ खाद्य

0: उद्यान की नई प्रजाति के विकास एवं ब्लू अल्गी जैविक उर्वरकों के उपयोग के संबंध में बता रहे हैं डॉक्टर दिव्यांशु शेखर, कृषि विज्ञान केंद्र जाली दरभंगा।
1: जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को प्राथमिकता में रखा है कि हम रासायनिक उर्वरकों से हटकर प्राकृतिक या जैविक उर्वरकों की तरफ बढ़े, जिससे कि न कि हमारा फसल की उत्पादकता बनी रहे, साथ में ही उसकी गुणवत्ता में भी कोई ह्रास न हो। खासतौर पर धान की फसल में जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी या जिसको हम अजोला कहते हैं, उसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है या आवश्यकता है वो 10-20% तक हम उसके द्वारा कम कर सकते हैं। साथ में ही इसके प्रयोग करने से हमारे भूमि में कार्बनिक तत्वों की भी मात्रा बढ़ती है और साथ साथ जो खरपतवार होते हैं उनकी भी संख्या कम होती है।
2: और अब अंतरिक्ष की बात। हाल ही में विश्व का पहला ऑप्टो SAR सैटेलाइट मिशन दृष्टि लॉन्च किया गया। यह एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट है। अंतरिक्ष क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों के बारे में हमसे बात की भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुअनंतपुरम के कुलपति प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी ने।
3: दो चीज होता है, देखिए आप जो 100 साल से हम लोग कोडाइकनाल से सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं, ये जरूरी इसीलिए है कि वो हमारे सबसे नजदीकी तारे है, उसका चुंबक क्षेत्र का कुछ परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन का एक 11 साल का एक हम बोलते हैं सोलर साइकिल जैसा है, तो कभी कभी उसमें चुंबक क्षेत्र थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी कभी थोड़ा कम होता है। एंड ये जो बढ़ना और कमना का जो ऑसिलेटन पैटर्न जो है, उसको स्टडी करने के लिए एक डायनामो मैकेनिज्म को हम लोग मैथमेटिकली हम इस्तेमाल करते हैं। सोलर डायनामो एक थ्योरी है जो हमको समझने के लिए ये करते हैं कि क्यों ऐसा सूर्य में चुंबक क्षेत्र 11 साल का एक पीरियोडिसिटी क्यों रहता है। बट ये तो एक थ्योरी हो गया, थ्योरी को तो मैच करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए। ऑब्जर्वेशन जितना लंबा होगा तभी इतना अच्छा है, इसीलिए ये कोडाइकनाल में ऑब्जर्वेशन हम लोग 1904 साल से चालू किया। उसी जमाना में तो फोटोग्राफिक प्लेट होता था, फिल्म होता था, हमने वो पूरा जो आर्काइव है उसको पूरा डिजिटाइज किया। आजकल के जमाना में तो कोई हाथ से तो कुछ करते नहीं, आपको इमेज होना चाहिए जो डिजिटल मोड एक्चुअली पुराना आर्काइव है, उसको डिजिटाइजेशन करना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। तो ये 100 साल का पूरा डेटा डिजिटाइज करने के बाद हमने अभी उद्यान किया कि ये 11 ईयर साइकिल कैसा होता है। कभी कभी एक साइकिल थोड़ा बड़ा होता है, कभी थोड़ा छोटा होता है। जब बड़ा होगा उसमें सोलर जो तूफान वो और ज्यादा होगा, जब थोड़ा चुंबक क्षेत्र थोड़ा कम होगा तो वो भी जानकारी होना चाहिए। एक तो है कि अभी हाल ही में ये तूफान आने वाला है या नहीं आने वाला, ये जानकारी, और एक है कि पहले ऐसा तूफान होता था कि नहीं होता था। अभी सन जो स्टार वो मिडिल एज में है, वो जब बड़ा हो जाएगा, वो रेड जायंट हो जाएगा, हम तो बच नहीं पाएंगे। अभी मिलियनेयर में नहीं होने वाला है, तो अभी सोचने का नहीं है, बट ये सब जानकारी होना चाहिए।
0: मई का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद खास है। कई महानतम वैज्ञानिकों का जन्म हुआ जिन्होंने भौतिकी, चिकित्सा और रसायन विज्ञान की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इस महीने देश के कुछ ऐसे महान वैज्ञानिक और गणितज्ञों का जन्म हुआ जिन्होंने न केवल भारत में आधुनिक विज्ञान और परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी बल्कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया। डॉक्टर राजा रमन्ना, आप भारत के परमाणु कार्यक्रम के शिल्पकार कहे जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1925 को तुमकुर कर्नाटक में हुआ। के आर रामनाथन, आप भारत के मौसम विज्ञान और ओजोन अनुसंधान के जनक माने जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1893 को पलक्कड़ केरल में हुआ। हरीश चंद्र, जो कि गणित और भौतिकी के महान सेतु कहे जाते हैं, आपका जन्म हुआ 11 मई 1923 को कानपुर उत्तर प्रदेश में। आप महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के सहायक भी रहे। आपने लाइट ग्रुप्स और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में क्रांतिकारी सिद्धांत दिए जिन पर आज भी क्वांटम मैकेनिक्स और आधुनिक गणित टिकी हुई है। हमारे अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विजय भटकर, आप भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। आपका जन्म 11 मई 1946 को मोरंबा महाराष्ट्र में हुआ। आपके नेतृत्व में सीडेक ने साल 1991 में भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया। आगे नाम आता है प्रोफेसर डॉक्टर बलराम भार्गव का, जिनका जन्म 3 मई 1961 को हुआ था। आप भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे। पूरी दुनिया जब सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रही थी, तब भारत की

वैज्ञानिक लड़ाई का नेतृत्व करने वाले मुख्य चेहरों में डॉक्टर भार्गव का नाम सबसे आगे था। और अब हम जानेंगे मई महीने में दुनिया ने विज्ञान जगत के कुछ बेहद प्रतिष्ठित चेहरों को खोया है। डॉक्टर मोनिका मोंटेफाल्कोन, आपका निधन 14 मई 2026 को हुआ। आपने समुद्री पारिस्थितिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्र में

0: वर्षों की गौरवशाली यात्रा को याद करते हुए हमारे सुधी श्रोताओं ने अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। बिहार विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार।
1: शब्द ब्रह्म के मूलमंत्र को चर्चार्थ करते हुए देश के जन जन की आवाज एवं सुचना क्रांति के उद्घोष के प्रतीक आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के गौरवमयी प्रसित्व के 90 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण आकाशवाणी परिवार और इसे करोड़ों श्रोताओं को मैं प्रेम कुमार अध्यक्ष बिहार विधानसभा हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। 8 जून 1936 को अपनी औपचारिक यात्रा शुरू करने वाला आकाशवाणी आज केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के सामाजिक सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विकास का जीवन साक्षी। स्वाधीनता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत का निर्माण तक आकाशवाणी राष्ट्र के सूत्र में तिरोड़े का भूतपूर्व कार्य किया है। संकट और आपदा के समय इसकी प्रमाणिक खबरों ने हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है, जिससे इसकी विश्वसनीयता आज भी शून्य है। जन जागृति और राष्ट्र निर्माण सुदूर गांव, खेतों, खलिहानों और सीमावर्ती क्षेत्रों तक ज्ञान और चेतना का प्रकाश फैलाने में इस माध्यम की भूमिका रहती है। कृषि सुधारों से लेकर मन की बात जैसे संवादों के माध्यम से इसने जन जागृति को एक नई दिशा दी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति तक सरल भाषा में पहुंचाकर आकाशवाणी ने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के संकल्प को सिद्ध किया है। मैं इस अवसर पर आकाशवाणी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं कि अद्वितीय संस्थान आगे की अपनी स्पष्टता, राजभक्ति और सेवा से देश को आलोकित करता रहेगा। रेडियो की वह मधुर पुकार आज भी दिलों में बसती है। आकाशवाणी की हर धुन भारत की आत्मा से लगती है।
2: पंचायती राज्य मंत्री बिहार सरकार दीपक प्रकाश।
3: मैं दीपक प्रकाश, मंत्री पंचायती राज विभाग, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हम सबों के सामाजिक जीवन में, देश के राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में और साथ ही साथ जो हमारा देश का इतिहास है, उन सबों में आकाशवाणी का एक विशेष रोल रहा है। आजादी की लड़ाई हो या विभिन्न कालखंडों में जन आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने का काम हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने कमेंडेबल काम किया है। हम सबों के बचपन की यादें भी आकाशवाणी से जुड़ी है। क्रिकेट की कमेंट्री आकाशवाणी पे सुननी हो, पुराने गाने आकाशवाणी पे सुनने हो, या सभी विद्यार्थियों के लिए टॉक शोज के माध्यम से ज्ञानवर्धन करने की बात हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने काम किया है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ आकाशवाणी ने अपने को बदलने का भी काम किया है। एनालॉग से डिजिटल तक का सफर आकाशवाणी का विशेष रूप से कमेंडेबल है। आज के इस चकाचौंध और दिखावटी मीडिया के दौर में आकाशवाणी का एक विशेष स्थान है, जो कि हमें अपने जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। आकाशवाणी का विशेष रूप से हम धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहेंगे कि आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबों के बीच किया जाने वाला मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होता है। एक बार पुनः आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे करने के लिए बधाई देते हुए और आकाशवाणी हम लोगों के बीच जीवन का और हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, आज के युवा आकाशवाणी से जुड़े, इस बात की शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।
4: मेरा नाम नीलम चौधरी है, मैं एक्स IAS ऑफिसर हूं और एक कथक डांसर भी हूं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आकाशवाणी का नाम आते ही एक स्पंदन सा होने लगता है और याद आता है अपने स्टूडेंट लाइफ का वो स्टडी टेबल जहां हमेशा एक ट्रांजिस्टर रखा रहता था। चूंकि मैं म्यूजिक की फील्ड से हूँ, इसीलिए म्यूजिक के लगभग सब कार्यक्रम में आकाशवाणी का सुना करती थी, चाहे वो शास्त्रीय संगीत का हो या फिल्मी गानों का हो, गैर फिल्मी गानों का हो, भजन हो, लोक संगीत हो, मैं सब कार्यक्रम सुनती थी और वो सारे गाने मुझे कॉन्सेंट्रेशन देते थे और मुझे पढ़ाई अच्छी मेरी होती थी। मैंने महसूस किया है कि आकाशवाणी ने समाज के हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों को अपने कार्यक्रम में इनकॉर्पोरेट किया है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र से हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र से हो, तकनीकी क्षेत्र से हो, नारी सशक्तिकरण की बात हो, लगभग सभी क्षेत्र के लोगों के लिए इसने कार्यक्रम बनाया है। बच्चों के लिए हो, शाम में 7:30 बजे अनंत सिंह का न्यूज होता था, वो तो बहुत ही लोकप्रिय था और बहुत स्पष्ट और बहुत अनबायस्ड कार्यक्रम हुआ करता था। उसके अलावा नाटक में हवा महल और लोहा सिंह का नाटक हम लोग बहुत इंतजार करते थे और सुनना करते थे। तो ये रिचनेस आकाशवाणी में शुरू से रहा है। आज भी हर वर्ग के लिए कार्यक्रम बनाना, उसे सक्सेसफुली प्रसारित करना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है आकाशवाणी की और मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी इच्छा है। मैं चाहती हूं कि जिस तरह से 90 वर्षों का सफर तय हुआ, उससे भी और आगे बढ़कर आकाशवाणी अपना कार्यक्रम करे, लोगों में प्रिय रहे और हर वर्ग के लोग इसमें जुड़े रहें।
5: प्रोफेसर दिनेश सिंह, पद्मश्री, उपाध्यक्ष जम्मू एवं कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद और पूर्व कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय।
6: पूर्ण रूप से अपने हृदय से बधाई दे रहा हूं आकाशवाणी से जुड़े सारे जो हमारे सहयोगी हैं, और मैं चाहता हूं कि इसको एक त्योहार के रूप में भारत में मनाया जाए, त्योहार के रूप में कि आकाशवाणी ने भारत के लिए क्या किया। मैं आकाशवाणी

आकाशवाणी से बचपन से जुड़ा हूं और आकाशवाणी से अमृत बरसता है पूरे देश में, विश्व में। मैंने यहां से इतनी रचनात्मक युक्तियों को ग्रहण किया है, इसने भारत की आत्मा को आकाशवाणी ने सींचा है। अब इसके जो एनिवर्सरी आ रही है, इसके 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हम सबको इसमें भागीदारी लेनी है और इस उत्सव को पूर्ण रूप से अपने अपनी जगह मनाना है। आकाशवाणी ने भारत का बहुत भला किया है।

0: ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे नई जानकारियों, नवीन शोध परक बातों एवं विज्ञान जगत की हलचलों के साथ।
1: तो सीखें कुछ नया, सोचें कुछ अलग। आज की विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती को तैयार करने में स्वर सहयोग रहा अल्पी कुमारी और संजय किशोर का। संयोजक थे दिलीप झा और प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार। आकाशवाणी पटना।
0: नमस्कार।

0: अभी राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती का कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया गया। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। रात के 10 बजने वाले हैं। अब संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: आकाशवाणी समाचार के

0: Krishnam Raja Rao and Sri Mannarkudi Ishwaran. His performances have also reached audiences abroad, including concerts in the United States, Paris, Southeast Asia and Gulf countries. Born at Changanasheri in Kerala, Madhavan Nambudiri began his musical training under his first guru, Sri P.G. Padmakumar. He later became a disciple of late T.V. Shankara Narayanan and also received advanced guidance from renowned musicians Sri P.R. Kumara Kerala Varma and Sri Kalanyur Chandrasekharan, a former music lecturer at the R.L.V. College of Music and Fine Arts, Tripunathra. He is also a recipient of the Junior Fellowship from the Ministry of Culture, Government of India, and has been honored with the Best Musician Award from the Madras Music Academy.
1: The contribution of Akashavani to the growth of artists like me is truly immeasurable. Akashavani has provided a dignified platform that nurtures talent and strengthens the cultural fabric of our nation. Best wishes to Akashavani for completing successful 90 years.
2: आज रात के प्रसारण में इनके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर विद्वान तिरुविरा विजु एस आनंद मृदंगम पर विद्वान कोटयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार
0: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही विल बी अकंपनीड बाय विद्वान तिरुविरा विजु एस आनंद ऑन वायलिन विद्वान कोटयम जी संतोष कुमार ऑन द मृदंगम एंड श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार ऑन द घटम
2: श्री चंगनाश्री माधवन नंबूदरी अपने गायन की शुरुआत स्वाति तिरुनाल की रचना परम पुरुषम से कर रहे हैं जो राग ललित पंचम पर आधारित है और खंड चापू ताल में निबद्ध है
0: श्री सीपी माधवन नंबूदरी बिगिंस हिज वोकल रिसाइटल विद परम पुरुषम अ कंपोजिशन ऑफ स्वाति तिरुनाल इन द राग ललित पंचम सेट टू खंड चापू ताल

0: प्रस्तुत है केसी केशव पिल्ले की एक कृति श्री बालकृष्ण पाहिमाम, जो राग पूर्वी कल्याणी पर आधारित है और रूपक ताल में निबद्ध है.
1: यू विल नाउ लिसन टू श्री बालकृष्ण पाहिमाम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ केसी केशव पिल्ले इन द राग पूर्वी कल्याणी सेट टू रूपक ताल.

0: अपने गायन को जारी रखते हुए श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अब प्रस्तुत कर रहे हैं श्यामा शास्त्री द्वारा रचित रावे हिमगिरी कुमारी, जो राग तोड़ी पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: द नेक्स्ट आइटम इज रावे हिमगिरी कुमारी इन द राग तोड़ी सेट टू आदि ताल, कंपोज्ड बाय श्यामा शास्त्री।

0: ये था तनियावर्तनम। मृदंगम पर थे विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।
1: दैट वॉज तनियावर्तनम प्लेड ऑन द मृदंगम बाय विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार एंड ऑन द घटम बाय श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।
0: श्री चंगनाश्री माधवन नंबूदरी अपने गायन का समापन पुदुकोड कृष्णमूर्ति की एक रचना श्री हरे से कर रहे हैं, जो कि राग रेवती पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री सीपी माधवन नंबूदरी कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद श्री हरे कंपोज्ड बाय पुदुकोड कृष्णमूर्ति इन द राग रेवती सेट टू आदि ताल।

0: अना श्री माधवन नंबूदरी का गायन समाप्त होता है। इनके साथ वायलन पर विद्वान तिरुविजा विजु एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार ने संगति की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: With that, we conclude the vocal recital by Sri C.P. Madhavan Nambudiri in the broadcast of National Program of Music. He was accompanied by Vidwan Tiruvida Viju S. Anand on the violin, Vidwan Kottayam G. Santosh Kumar on the mridangam, and Sri Vaadapalli R. Krishna Kumar on the ghatam. This broadcast was recorded at Akashwani Tiruvananthapuram and came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: अभी संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया गया। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर। रात के 11 बजने वाले हैं। समाचार दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। समाचार पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में होंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत बाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
4: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
3: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
4: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
3: भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का

निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांचकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतुगोब से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान कालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।